सुप्रभात, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज दिन मंगलवार है। शक संवत 1947 के श्रावण मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 अगस्त 2026। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 7 बजे हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: जीवन सौरभ।
1: जिंदगी के रास्ते हमेशा रोशन नहीं होते, कभी कभी अंधेरा इतना घना होता है कि अपने ही कदम दिखाई नहीं देते। एक छोटे से गांव में रवि नाम का लड़का रहता था। घर की हालत अच्छी नहीं थी। पिता मेहनत मजदूरी करते थे और माँ सिलाई का काम। कई बार रवि को लगा कि पढ़ाई छोड़कर काम करने लगना ही ठीक रहेगा। एक दिन स्कूल जाते समय उसने सड़क किनारे एक बुजुर्ग को गिरते देखा। सब लोग आगे बढ़ गए पर रवि वहीं रुक गया। उसने बुजुर्ग को उठाया, पानी पिलाया और घर तक छोड़ आया। जाते जाते बुजुर्ग ने बस इतना कहा, बेटा तू बहुत आगे जाएगा क्योंकि तू रुकना जानता है। ये शब्द रवि के मन में बस गए। उस दिन के बाद रवि ने तय कर लिया, हालात चाहे जैसे हों वो हार नहीं मानेगा। दिन में स्कूल, शाम को माँ की मदद, रात को पढ़ाई। कई बार थक गया, कई बार रोया लेकिन रुका नहीं। सालों बाद वही रवि अपने गांव का पहला शिक्षक बना। जिस स्कूल में कभी फीस के लिए शर्मिंदा होता था, आज वही बच्चों को सपने देखना सिखाता है। जब कोई उससे सफलता का राज पूछता है तो वो मुस्कुराकर कहता है, मैंने बस अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी जलाए रखी। बड़े चमत्कार अचानक नहीं होते, वे छोटे छोटे प्रयासों से जन्म लेते हैं। आज वही रवि बच्चों को पढ़ाता है, उन्हें बताता है अंधेरा कितना भी हो एक छोटी सी रोशनी काफी होती है। और शायद आज वो रोशनी आपके अंदर भी जल रही है। सपने देखना मत छोड़िए क्योंकि एक दिन आप ही किसी और की रोशनी बनेंगे।
0: जीवन सौरभ।

तो सपने देखना मत छोड़िए। आइए अब आपको बताते हैं आज की सभा में प्रसारित किए जाने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से ठीक बात सुनेगा कार्यक्रम अक्षय निधि और उसके बाद आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। रोजाना की तरह सुबह 8 बजे का समय होगा कार्यक्रम वतन के राग का। खुदीराम बोस की शहादत पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा सुधा अनुपम जी का। पहाड़, इस विषय पर बातचीत होगी आज कार्यक्रम प्रकृति की पुकार में, जो हम आपको सुनवाएंगे सुबह 8:30 पर। कार्यक्रम में स्वर होंगे वर्षा सिंह दीपक नेमा के। सुबह 9 बजे सुनिए जगत की भ्रम रूपता का निरूपण, डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी जी से सुनीता सिंह की बातचीत इस विषय पर, कार्यक्रम युग संवाद के अंतर्गत। सुबह 9:30 पर सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम गायन और जुगलबंदी आस्था गोस्वामी और रुचिरा केदार। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की फराज फैयाज ने।

सुबह 10 बजे का समय होगा परिक्रमा का। याद करो कुर्बानी, हमारा ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 पर वासुदेव बलवंत सिंह गोगटी की जयंती पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सिंह का। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, इस विषय पर सुनिए चर्चा सुबह 11 बजे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी पर विषय विशेषज्ञ तर्षा कौशिक से रत्नेश सोनिया ने मेरी चर्चा आज आपको सुनवाएंगे। युग प्रवर्तक विवेकानंद, ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 11:30 पर। तो ये थी आज की सुबह में की सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की सूची। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि, छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुनते रहिए ये ज्ञानवर्धक कार्यक्रम।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 186 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं अश्विनी कुमार और छंद है त्रिष्टुप।
1: आन इडाभिर विदथे सुशस्ति विश्वानरह सविता देव एतु अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्वं जगदभित्वे मनीषा। सबके कल्याणकारी सविता देव भली भांति प्रशंसित होकर अन्न से युक्त होकर हमारे यज्ञ में पधारें। हे वरुण देव, आप जिस तरह आनंदित हैं उसी तरह हमारे यज्ञ में पधारकर अपनी अनुकंपा से हमें तथा संपूर्ण विश्व को भी हर्षित करें। आनो विश्व आस्क्रा गमन्तु देवा मित्रो अर्यमा वरुणः सजोषाः भुवन्यथा नो विश्वे वृधासः करन्सु साहा विथुरं नशवः। सभी शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले, परस्पर प्रीति करने वाले मित्र वरुण और अर्यमा देव हमारे समीप आए तथा यथा संभव हमारी प्रगति में सहायक हों। ये देव शत्रुओं को परास्त करने की सामर्थ्य से युक्त होकर हमारी शक्तियों को क्षीण न करें। प्रेष्ठम वो अतिथिम गृणीशेग्निम शस्तिभिस्तुर्वणि सजोषाः असद्यथा नो वरुणः सुकीर्ति ऋषश्च परशदरि गूर्तः सूरिः। जो अग्निदेव शत्रु संहारक और सबके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने के कारण अतिथि के समान पूज्य हैं, उनकी हम स्तोत्रों द्वारा स्तुतियां करते हैं। शत्रुओं के आक्रांता और ज्ञानवान ये वरुण देव हमें अन्न तथा यथोचित कीर्ति प्रदान करें। उप व एशे नमसा जगीशोषा सानक्ता सुदुघेव धेनुः समाने अहन विमिमानो अर्कम विशुरूपे पयसि सस्मिन् नूधन। हे संपूर्ण विश्व की संचालक देव शक्तियों, गौ अर्थात सूर्य किरणों से उत्पादित होने वाले दुग्ध रूपी प्राण में संपूर्ण तेजस्विता की अनुभूति करते हुए हम साधक मनोविकार रूपी शत्रुओं पर विजय पाने की कामना से प्रातः और सायं उसी प्रकार आपके समीप जाते हैं जिस प्रकार श्रेष्ठ दुधारू गौएं गोपाल के पास जाती हैं। उत नोहिर बुधन्यो मयस्कः शिशुम न पिप्युषीव वेति सिंधुः येन न पातमपाम जुनाम मनोजुवो वृषणो यम वहन्ति। अहिर्बुधन्य विद्युत रूप अग्नि अंतरक्षीय मेघों से जल बरसाकर हमें सुखी करें। शिशु का पोषण करने वाली माता के समान नदियां जल से परिपूर्ण होकर हमारे समीप आए। जल को न गिरने देने वाले अग्निदेव की हम वंदना करते हैं। मन की तरह वेगवान अश्व किरणें उन्हें ले जाते हैं। उत न ईम त्वष्टा गंत्वच्छा समत सूरी भीर भिपित्वे सजोषाः आ वृत्र हेन्द्रश्चर्ष निप्रास्तु विष्टमो नराम न इह गम्याः। ज्ञानियों से स्नेह पूर्ण व्यवहार करने वाले ये त्वष्टा देव तथा मनुष्यों के तृप्ति कारक और वृत्रासुर के वध द्वारा सबके द्वारा प्रशंसनीय इंद्रदेव हमारे इस यज्ञ में पधारकर हमारे सत्कर्मों में सहायक बने।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 186 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पत्रपाठी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षनिधि 90.8 MHz पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
2: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सबके मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही है।

0: मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो,

0: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन करा के श्रोताओं को नमस्कार। फरवरी 1906 बंगाल में एक विशाल प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी को देखने बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। उस प्रदर्शनी में एक 16 वर्षीय युवक लोगों को पर्चा बांटते हुए दिखाई दिया। उस पर्चे का शीर्षक था सोनार बांग्ला। उसमें वंदे मातरम का नारा था, साथ ही साथ उस प्रदर्शनी के आयोजक अंग्रेजों के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किया गया था। अंग्रेजों द्वारा किए गए अन्याय तथा क्रूरता का भी उस पर्चे में उल्लेख था। प्रदर्शनी देखने वाले लोगों में कुछ लोग इंग्लैंड के राजा के प्रति निष्ठा रखते थे। अंग्रेजों के

और लड़के को डराया धमकाया, पर उनकी उपेक्षा कर उस लड़के ने शांति से पर्चे बांटना जारी रखा। जब कुछ लोग उसे पकड़ने लगे तो वो चालाकी से भाग निकला। अंत में एक पुलिस के सिपाही ने उस लड़के का हाथ पकड़ा, उसके हाथ से पर्चे छीन लिए, परंतु उस लड़के को पकड़ना आसान नहीं था। उसने झटका देकर अपना हाथ छुड़ाया और हाथ घुमाकर सिपाही की नाक पर जमकर घूंसा मारा। उसने पर्चे फिर उठा लिए और कहा कि ध्यान रखो, मुझे स्पर्श मत करो, मैं देखूंगा कि मुझे वारंट के बगैर पुलिस कैसे पकड़ सकती है। जिस पुलिस सिपाही को घूंसा मारा गया था वो पुनः आगे बढ़ा, किंतु वो लड़का वहां नहीं था, वो जनसमूह में अदृश्य हो गया। जब लोग वंदे मातरम के नारे लगाने लगे तो पुलिस और राजनिष्ठ लोगों को आश्चर्य हुआ, उन्हें ये अपने लिए अपमानजनक प्रतीत हुआ। बाद में उस लड़के के विरुद्ध एक मुकदमा चलाया गया, लेकिन छोटी उम्र के आधार पर न्यायालय ने उसे मुक्त कर दिया। जिस वीर लड़के ने मेदिनीपुर की प्रदर्शनी में बहादुरी से पर्चे बांटकर अंग्रेजों की योजनाओं को विफल किया था, उस लड़के का नाम था खुदीराम बोस। कुछ इतिहासकारों ने देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का देशभक्त मानते हैं। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में त्रैलोक्यनाथ बोस के घर हुआ था। खुदीराम बोस जब बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। खुदीराम की बड़ी बहन अनुरूपा देवी और बहनोई अमृतलाल को खुदीराम के पालन पोषण का उत्तरदायित्व निभाना पड़ा। आनंदमठ उपन्यास पढ़ते ही खुदीराम को अपने जीवन के उद्देश्य की दृष्टि मिली। मातृभूमि की सेवा में उन्होंने अपने जीवन समर्पण का निश्चय किया। वे रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम पंफलेट वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चले आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनके क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते 28 फरवरी 1906 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वे कैद से भाग निकले। लगभग 2 महीनों के बाद अप्रैल में वे फिर पकड़े गए। 16 मई 1906 को उन्हें रिहा कर दिया गया। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु गवर्नर बच गया। सन 1908 में खुदीराम ने 2 अंग्रेज अधिकारियों वॉटसन और फुलर पर बम से हमला किया, लेकिन वे भी बच निकले। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के सेशन जज किंग्सफोर्ड से बेहद खफा था, जिसने बंगाल के कई देशभक्तों को कड़ी सजा दी थी। वो कई तरह से अत्याचार करता था, क्रांतिकारियों ने उसे मार डालने की

युगांतर क्रांतिकारी दल के नेता वीरेंद्र कुमार घोष ने घोषणा की कि किंग्सफोर्ड को मुजफ्फरपुर में ही मारा जाएगा। इस काम के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाको को चुना गया। ये दोनों क्रांतिकारी बहुत सूझबूझ वाले थे। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा क्योंकि देशभक्तों को तंग करने वालों को मार डालने का काम उन्हें सौंपा गया था। एक दिन भी दोनों मुजफ्फरपुर पहुंच गए। एक धर्मशाला में वे 8 दिन तक रुके। इस दौरान उन्होंने किंग्सफोर्ड की दिनचर्या और गतिविधियों पर पूरी नजर रखी। उनके बंगले के पास ही क्लब था। अंग्रेजी अधिकारी और उनके परिवार अक्सर सायंकाल क्लब जाते थे। 30 अप्रैल 1908 की शाम किंग्सफोर्ड और उसकी पत्नी क्लब में पहुंचे। रात्रि के 8:30 बजे मिसेस कैनेडी और उनकी बेटी अपनी बग्घी में बैठकर क्लब से घर की तरफ आ रहे थे। उनकी बग्घी का रंग लाल था और वो बिल्कुल किंग्सफोर्ड की बग्घी से मिलती जुलती थी। खुदीराम बोस और उनके साथी ने किंग्सफोर्ड की बग्घी समझकर उस पर बम फेंक दिया। देखते ही देखते बग्घी के परखचे उड़ गए। उसमें सवार माँ बेटी दोनों की मौत हो गई। क्रांतिकारी इस विश्वास से भाग निकले कि किंग्सफोर्ड को मारने में वे सफल हो गए हैं। खुदीराम बोस और घोष 25 मील भागने के बाद एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। इस समय तक मुजफ्फरपुर की घटना की खबर चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। जहां खुदीराम बैठे थे, लोगों की चर्चा इसी विषय पर हो रही थी। उत्सुकता से उन्होंने उस चर्चा को सुना। केवल 2 महिलाओं की मौत हुई, ये सुनकर वे अपने आप को भूल गए और उन्होंने पूछा, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? खुदीराम के इन शब्दों से दुकान में बैठे लोगों की दृष्टि उन पर गई। वो लड़का वहां नया दिख रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी। दुकान का मालिक उसके प्रति सशंकित हो उठा। उसने विचार किया कि अपराधी को पकड़ने में सहायता करने पर उसे पुरस्कार मिलेगा। उसने खुदीराम को पानी दिया और सामने जा रहे सिपाही को खबर कर दी। पानी पीने के लिए ग्लास उठाते समय ही पुलिस सिपाही ने उसे पकड़ लिया। खुदीराम अपनी जेब से पिस्तौल नहीं निकाल सका। दोनों पिस्तौलें पुलिस के सिपाहियों ने छीन ली, किंतु खुदीराम नहीं घबराए। प्रफुल्ल भी खुदीराम की तरह भागे थे। उन्होंने 2 दिन तक पुलिस सिपाहियों को चकमा दिया, किंतु 3रे दिन भटकते समय पकड़ लिए गए। पुलिस सिपाहियों को चकमा देकर वो फिर भाग निकले, किंतु चारों ओर पुलिस का जाल फैला था। कुछ भी हो, मैं जीवित होते हुए उन्हें मेरे शरीर को स्पर्श नहीं करने दूंगा, कहते हुए प्रफुल्ल ने अपनी पिस्तौल निकालकर स्वयं पर चला दी और वीरगति को प्राप्त हुए।

पुलिस प्रफुल्ल चाकू का सिर काटकर मुजफ्फरपुर ले गई। खुदीराम को पुलिस की निगरानी में रेलगाड़ी से मुजफ्फरपुर लाया गया। जिस भारतीय लड़के ने अंग्रेजों पर पहला बम फेंका था, उसे देखने हजारों लोग एकत्रित हुए। पुलिस स्टेशन जाने के लिए पुलिस की गाड़ी में बैठते समय खुदीराम चिल्लाए, वंदे मातरम। गर्व से आंसुओं की धारा लोगों की आंखों से झरने लगी। खुदीराम के विरुद्ध एक अभियोग चलाया गया। सरकार के पक्ष में दो वकील थे, मुजफ्फरपुर शहर में खुदीराम के पक्ष में कोई भी नहीं था। अंत में कालिदास बोस नामक वकील खुदीराम की सहायता के लिए आगे आए। ये मुकदमा 2 महीने तक चला। अंत में खुदीराम को मृत्युदंड मिला। मृत्युदंड का निर्णय सुनते ही खुदीराम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। न्यायाधीश को आश्चर्य हुआ कि मृत्युदंड होते ही ये 19 साल का लड़का शांत कैसे रह सकता है। जज ने पूछा, क्या तुम इस निर्णय का अर्थ जानते हो? खुदीराम ने हंसकर कहा, इसका अर्थ मैं आपसे अधिक अच्छी तरह जानता हूँ। जज ने पूछा, तुम्हें कुछ कहना है? खुदीराम ने कहा, बम किस प्रकार से बनता है ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। लेकिन न्यायाधीश को डर था कि कोर्ट में बैठे सारे लोगों को बम तैयार करने की जानकारी खुदीराम से मिल जाएगी, इसलिए उसने खुदीराम को बोलने की अनुमति नहीं दी। खुदीराम को अंग्रेजों के न्यायालय से न्याय की आशा थी ही नहीं, किंतु कालिदास बोस की खुदीराम को बचाने की इच्छा ने खुदीराम की ओर से कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करवा दी। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी खुदीराम के स्वभाव को जानते थे। निर्भय आंखों वाले दृढ़ निश्चयी खुदीराम को देखकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने भी खुदीराम को मृत्युदंड ही दिया। तुम्हें कुछ कहने की इच्छा है? उनसे पुनः पूछा गया। तब खुदीराम ने कहा कि राजपूत वीरों की तरह मेरे देश की स्वाधीनता के लिए मैं मरना चाहता हूँ। फांसी के विचार से मुझे जरा भी दुख नहीं है। मेरा एक ही दुख है कि किंग्सफोर्ड को उसके अपराध का दंड नहीं मिल सका। मृत्युदंड के निर्णय के अनुसार सुबह 6 बजे खुदीराम को फांसी के तख्ते के पास लाया गया। उस समय भी उनके चेहरे की मुस्कान कायम थी। शांति से वे उस स्थान पर गए। उनके हाथ में भगवद गीता थी। अंत में एक ही बार उन्होंने वंदे मातरम कहा और उन्हें फांसी लगा दी गई। देश के लिए जान देने की प्रसन्नता के कारण फांसी के दिन 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस का वजन 2 पाउंड बढ़ गया था। गंडक नदी के तट पर खुदीराम बोस के वकील कालिदास मुखर्जी ने उनकी चिता में आग लगाई। हजारों की संख्या में युवकों का समूह वहां एकत्रित हुआ। चिता की आग से निकली चिंगारियां संपूर्ण भारत में फैल गईं। चिता की भस्मी को लोगों ने अपने माथे पर लगाया, पुड़िया बांधकर घर ले गए। खुदीराम बोस ही प्रथम क्रांतिवीर हैं जिन्होंने 20वीं सदी में आजादी के लिए फांसी के तख्ते पर अपने प्राणों की आहुति दी थी। मुजफ्फरपुर जेल में जिस मजिस्ट्रेट ने उन्हें फांसी पर लटकाने का आदेश सुनाया था, उसने बाद में बताया कि खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते की ओर बढ़े थे। शहादत के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुलाहे उनके नाम की एक खास किस्म की धोती बुनने लगे। उनकी शहादत से समूचे देश में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी। उनके सम्मान में भावपूर्ण गीतों की रचना हुई जिन्हें बंगाल के लोक गायक आज भी गाते हैं। विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों ने शोक मनाया। स्कूल कॉलेज बंद रहे और नौजवान ऐसी धोती पहनने लगे जिसकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था। खुदीराम बोस को भारत की आजादी के लिए संगठित क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम शहीद माना जाता है। ये कैसे वीर की जीवन गाथा है जिसने भारत को रौंदने वाले अंग्रेजों पर पहला बम फेंका था। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: ये रेडियो आजाद हिंद है 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम वतन का राग।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: ख्वाजा अहमद का मिशन 1665 जब मुगल दूत डच राजधानी पहुंचा। 3 मार्च 1665 को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के समुद्री साम्राज्य के तांत्रिक केंद्र बटाविया कैसल के डक पर कदम रखा। उसका नाम ख्वाजा अहमद था और वो कोई व्यापारी नहीं था, बल्कि वो बंगाल के शक्तिशाली सूबेदार गवर्नर और मुगल शासक औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान का कूटनीतिक दूत था। जहां इतिहास एशियाई दरबारों में यात्रा करने वाले यूरोपीय राजदूतों के वृत्तांतों से भरा है, वहीं अहमद का मिशन इसके विपरीत था। ये एक मुगल दूत द्वारा यूरोपीय कंपनी राज्य की राजधानी की यात्रा का एक दुर्लभ उदाहरण था। ये मिशन प्रांतीय कूटनीति का एक सटीक उदाहरण था, जहां स्थानीय मुगल गवर्नर राजाओं की स्वायत्तता और वजन के साथ काम करते थे। ख्वाजा अहमद एक उच्च तनाव के क्षण में पहुंचा था। शाइस्ता खान चटगांव बंदरगाह को जीतने और अरकान खत्म करने के लिए एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा था। डच एक अनिश्चित स्थिति में थे। वे बंगाल में अपने व्यापार से भारी लाभ कमा रहे थे, लेकिन साथ ही वे शाइस्ता खान के दुश्मनों के क्षेत्रों में भी व्यापार कर रहे थे। अहमद ने डच सरकार के सामने एक पत्र और उपहार प्रस्तुत किए, जिसमें एक कड़ा अल्टीमेटम छिपा हुआ था। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, वीओसी को तुरंत अपनी अराकान फैक्ट्री बंद करनी होगी। चटगांव अभियान में जहाजों और तोपों के साथ मुगल सेना का समर्थन करना होगा। यदि डच इनकार करते तो शाइस्ता खान ने उन्हें न केवल बंगाल से निकालने की धमकी दी, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य में उनके संचालन को रोकने की चेतावनी दी। बटाविया में डच प्रशासक एक रणनीतिक दुविधा में फंस गए। हालांकि उन्होंने शुरुआत में व्यवहारिक कारणों की कमी का बहाना बनाकर देरी करने की कोशिश की, लेकिन वो समझ गए थे कि वो दिल्ली में मुगल शासक से अपील करके शाइस्ता खान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कंपनी के अधिकारियों का मानना था कि सूबेदार केंद्रीय दरबार से बहुत दूर रहता है और वो दिल्ली के किसी भी हस्तक्षेप से बहुत पहले ही प्रांतों में डचों को परिणाम भुगतने पर मजबूर कर सकता है। ख्वाजा अहमद की मिशन बंगाल के लिए एक बड़ी सफलता थी। पूर्ण व्यावसायिक विनाश के खतरे का सामना करते हुए वीओसी ने अंततः अराकान में अपना लॉज यानी व्यापारिक केंद्र बंद कर दिया। ये दुर्लभ मिशन दिखाता है कि शक्तिशाली दिखने वाले यूरोपीय कंपनियों को मौजूदा एशियाई सत्ता संरचनाओं के साथ आर्थिक और सैन्य रूप से तालमेल बिठाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बटाविया में ख्वाजा अहमद के आगमन ने साबित कर दिया था कि 17वीं शताब्दी में ओरिएंट की रानी यानी बटाविया को अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप के मालिकों को जवाब देना पड़ता था।
2: नमस्कार आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
3: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: तो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं वर्षा सिंह।
2: और मैं हूं दीपक नेमा। लीजिए प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।

0: मैं हूँ धरा।
1: मैं हूँ बादल। ये तो आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण और मानव के बीच का संबंध हमारे स्वास्थ्य, समृद्धि और अस्तित्व के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है।
0: और आज के समय में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है।
1: हाँ, हमारी आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए हमें अब अपने उन स्थायी चीजों को बनाए रखना बहुत जरूरी है।
0: और ये भी तो है कि पृथ्वी के संरक्षण में हमारी क्या भूमिका है, इसे भी पहचानना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग देना हम सभी का कर्तव्य है, तभी हम एक टिकाऊ दुनिया का निर्माण कर पाएंगे।
0: बादल, तो आज हम श्रोताओं को क्या जानकारी देने जा रहे हैं?
1: धरा, आज तो हम बात करने से पहले एक बहुत ही सुंदर पंक्तियों को सुनाना चाहेंगे, तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि चर्चा किसकी होगी। ये कविता हमने बचपन में सुनी थी।
0: ऐसी बात है तो सुनाओ भाई, हम भी सुनने को तैयार हैं।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। झबर झबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर जैसे तोंद फुलाए, कुछ हाथी जैसे सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रहकर शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहकर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर झर बरसाते हैं पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके चुपके उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल, प्यारे प्यारे मतवाले बादल, प्यारे प्यारे मतवाले बादल।
0: अब मैं भी बता दूं कि ये पहले तो सागर की लहरों पर होते हैं, फिर भाप बनकर आकाश की यात्रा करते हैं और फिर आसमान के राजा बन जाते हैं, है ना?
1: अरे वाह, आपने तो कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कह दी।
0: श्रोताओं, जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो खिड़की के बाहर देखने पर ऐसा लगता है जैसे हम बड़े बड़े रुई के गुच्छों के बीच से गुजर रहे हैं।
1: हाँ, और जब आसमान की ओर धरती पर खड़े होकर देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने फूल गोभी के टुकड़े कर आसमान में फैला दिए हों।
0: सही है, और कभी कभी ये बादल हमें विभिन्न आकृतियों के रूप में दिखाई देते हैं।
1: हाँ हाँ, बचपन में तो हम इन आकृतियों को देखकर भाई बहनों और मित्रों के साथ प्रश्नोत्तर भी करते थे।
0: तो आज हम बात करते हैं बादलों की। ये बादल क्यों है, क्या है, क्या अब पता चला आपको?
1: दरअसल बादल पानी की भाप से बनी बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल के समूह होते हैं।
0: हाँ, और जैसा आपने कही बचपन की बात, तो अक्सर आसमान को देखकर हम कल्पना करते हैं या कहानी कविताओं में भी हम पढ़ते हैं और कल्पना करने लगते हैं।
1: हाँ, ऐसा लगता है जैसे बादलों के पार भी कोई जादुई संसार है जहाँ शांति और खूबसूरती है, और वो जगह दुख और चिंता से परे है।
0: बिल्कुल सही कहा, बचपन में हमें कुछ ऐसा ही लगता था ना। पर विज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो बादल वायुमंडल का एक भाग है जो सूर्य की रोशनी के साथ मिलकर अद्भुत रंग और बनावट में दिखाई देते हैं।
1: सूरज की गर्मी की वजह से पृथ्वी की सतह पर पानी के स्रोतों, नदियों, जलाशय आदि में मौजूद पानी की बूंदें भाप में बदल जाती है।
0: हाँ, इसके साथ ही पेड़ पौधे भी भाप के रूप में कुछ मात्रा में पानी छोड़ते हैं।
1: ये भाप हवा से हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर जाने से ये धीरे धीरे ठंडी होती जाती है
0: और फिर ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाती है। ये बूंदें इतनी हल्की होती है कि ये हवा में तैरती रहती है। बस इन तैरती बूंदों के समूह को ही बादल कहते हैं।
1: यानी वायुमंडल में जब पानी की छोटी छोटी बूंदें और बर्फ के छोटे छोटे कण एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तब बादल बनते हैं।
0: और हाँ, जब बादल छाते हैं तो हमें कितनी ठंडक का एहसास कराते हैं, गर्मी से राहत देते हैं।
1: धरा, क्या तुम जानती हो कि ऐसा क्यों होता है?
0: आप बताइए ना।
1: ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है और पृथ्वी के नजदीक होने से ये हमें दिखाई भी देते हैं और अंतरिक्ष की तरफ से रोशनी को प्रतिबिंबित करते हैं, जिससे हमें ठंडक का एहसास होता है।
0: बादलों के बनने का एक तरीका ये भी है कि पृथ्वी की सतह जब गर्म हो जाती है, इस कारण हवा ऊपर की ओर उठती है, पानी की बूंद एकत्र होकर बादलों का निर्माण करती है।
1: जो हम पहले बात कर रहे थे फूल गोभी के आकार के बादलों की, इस तरह के बादल हमें तब दिखाई देते हैं जब मौसम बहुत अच्छा होता है।
0: और ये बादल सूर्य की रोशनी के कारण अधिक साफ, सफेद और चमकीले रूप में हमें दिखाई देते हैं, जबकि ये होते भी गहरे ही हैं।
1: इन बादलों को क्यूमुलस बादल कहते हैं और अगर मौसम और अधिक साफ होता है तो ये ऊंचाई और आकार में बड़े होते जाते हैं।
0: ऐसे बादल ज्यादातर तटीय क्षेत्रों में दिन के समय बनते हैं, क्योंकि समुद्री हवा नम होती है और फिर सतह गर्म हो जाती है।
1: बिल्कुल, ये बात रात में उलट जाती है, क्योंकि तब समुद्र भूमि के मुकाबले गर्म हो जाता है और समुद्र के ऊपर ऐसे बादल बनते हैं।
0: इस तरह के बादल हल्की वर्षा करने में भी सक्षम होते हैं। ये तो हुई साफ मौसम की बातें, लेकिन ठंड के दिनों में अक्सर हम देखते हैं कि धुंध छा जाती है, कुछ साफ दिखाई नहीं देता।
1: जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है और वो ऊपर इकट्ठे होकर पानी की छोटी छोटी बूंदें बनाती है।
0: हाँ, पर कभी कभी परिस्थिति वश ये हवा के बिना उठे ही भाप पानी की बूंदों में बदल कर कोहरे का रूप ले लेता है और वायुमंडल में जमीन की सतह से थोड़ा ही ऊपर फैलता रहता है।
1: हाँ हाँ, हमने सर्दी के दिनों में देखा है कि पेड़ पौधों की पत्तियों से पानी की छोटी छोटी बूंदें टपकती रहती हैं।
0: बिल्कुल सही है, पर इस कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है और हम अधिक लंबी दूरी पर नहीं देख पाते। ऐसे में हमें सड़क पर गाड़ी चलाते समय बहुत एहतियात रखना चाहिए, क्योंकि ये दृश्यता कभी कभी कुछ मीटर की ही रहती है।
1: हाँ धरा, ऐसा इसलिए होता है कि आर्द्रता 100% होने के कारण भाप की मात्रा स्थिर हो जाती है। इससे ज्यादा भाप के शामिल होने के कारण या तापमान से कम होने से मौजूद सघन पानी की जो बूंदें हैं वायुमंडल में कोहरे के रूप में फैल जाती हैं।
0: अपने आकार, आकृति और रंग के अनुसार बादल कई प्रकार के होते हैं, जैसे गोलाकार, बेलनाकार, घन के आकार के, कोमल रेशेदार, भूसे के ढेर के समान, काले, हल्के सुरमई, सफेद आदि। ये वायुमंडल के अलग अलग स्तरों पर पाए जाते हैं।
1: ये तो हम जान गए कि जब हवा नम होती है और उसके अंदर भाप होती है तब बादलों का निर्माण होता है। यदि हवा गर्म है तो उसमें अधिक मात्रा में भाप होती है।
0: हाँ, और जब हवा में मौजूद नमी थोड़ी ठंडी हो जाती है तब भाप और बर्फ एक साथ मिलकर बादल बन जाते हैं और तब बारिश, बर्फबारी, ओलों की वर्षा होती है।
1: हाँ धरा, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था।
0: कोई बात नहीं, इस विषय पर आगे और अधिक विस्तार से बात करेंगे, अभी तो बात सिर्फ बादलों की करते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: आपको पता है बादल बादलों को उनकी ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है?
1: हाँ हाँ, मैंने सुना है सबसे ऊंचे बादल लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये पतले और पूरी तरह से बर्फ से बने होते हैं।
0: हाँ, पर ये वर्षा वाले बादल नहीं होते, बल्कि जब ये आसमान में नजर आते हैं तो सही अनुमान होता है कि मौसम अच्छा और साफ रहेगा।
1: जो बादल लगभग 6,000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, पानी की बूंदें ठंडी होने के बाद जब जमने लगती हैं, तब उन ठंडी पानी की बूंदों के समूह से इन बादलों का निर्माण होता है।
0: और ऊंचाई पर ही पाए जाने वाले पतले और एक जैसी परत वाले बादल भी होते हैं, जिसके अंदर बर्फ के बहुत सारे टुकड़े होते हैं, परंतु इनको खोजना मुश्किल होता है।
1: और छोटे छोटे आकार के भी बादल होते हैं जो आकाश में हमें ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बह रहे हों। ये होते तो सफेद हैं, परंतु हमें ग्रे रंग के दिखाई देते हैं। कुछ बादलों की ऊंचाई 2,000 से 6,000 मीटर की होती है। जब ये आसमान में नजर आते हैं तब ये तूफान या भारी वर्षा होने का संकेत देते हैं।
0: इस तरह के बादल हमेशा समूह में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उन दो बादलों के बीच से सूर्य हल्का हल्का दिखाई देता है।
1: और जब तूफान आने वाला होता है या तेज बारिश या फिर बर्फ वाली बारिश होने वाली होती है, तब इस प्रकार के बादल हमें आकाश में दिखाई देते हैं। ये गहरे रंग के होते हैं।
0: बादल फट गया, ये भी आपने सुना होगा।
1: हाँ हाँ धरा, बिल्कुल सुना है, पर ये होता कैसे है ये हम नहीं जानते।
0: पर ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य की गर्मी के कारण झील, तालाब, समुद्र, नदी आदि का पानी सूखता है। पानी के ये छोटे छोटे कण आसमान में इकट्ठे होकर बादलों का रूप ले लेते हैं।
1: बिल्कुल जानते हैं ये।
0: तो ये बादल पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, और जब ये बादल आपस में टकराते हैं तो गर्जन के साथ ही इनमें प्रकाश होता है और बिजली चमकती है।
1: हाँ हाँ, ये तो अक्सर बारिश के दिनों में जब मूसलाधार बारिश होती है तब तो ऐसा होता ही है।
0: हाँ, जब ये बूंद बूंद करके

0: जाकर नीचे गिरेगा और इसे ही कहा जाता है बादल फटना या ये स्थिति बादल फटने जैसी होती है।
1: ये बादल हवाओं की दबाव और रास्ते में आने वाली बाधाओं से टकराकर एकदम फट जाते हैं और अपने अंदर भरा सारा पानी उंडेल देते हैं और बादल फटने से बारिश इतनी तेज होती है कि उसे मापना भी मुश्किल होता है।
0: बादल फटने को वैज्ञानिक जो वजह मानते हैं उसमें जब एक आवेग के बादल आसमान में किसी ऐसी जगह मिलते हैं जहां गर्म और ठंडी हवाएं दोनों एक तरफ से उन पर दबाव डालती हैं, या जब कोई गर्म हवा का झोंका नमी से भरे इन बादलों से टकराता है तो ये बादल फट जाते हैं।
1: और इसी के बीच बिजली चमकने और तेज आंधी के साथ बारिश होती है। ऐसे में एक सीमित इलाके में ही कई लाख लीटर पानी एक साथ धरती पर गिरता है जिसकी रफ्तार लगभग 36 किलोमीटर प्रति घंटा होती है।
0: हाँ, और कुछ ही मिनटों में 2 से 3 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है, यानी कुछ ही पलों में आसमान से नीचे उतरकर एक पूरी नदी धरती पर आ गिरती है।
1: इससे उस इलाके में तेज बहाव वाली बाढ़ आ जाती है जो अपने रास्ते में आने वाली हर वस्तु को नुकसान पहुंचाती है। ऐसा अक्सर पहाड़ों और नदी वाले इलाकों में ज्यादा होता है।
0: हाँ, क्योंकि उस इलाके में गर्म और ठंडी दोनों हवाएं चलती हैं और वहाँ से गुजरने वाले बादल इनकी चपेट में आ जाते हैं।
1: तब वहाँ भारी बारिश के कारण ग्लेशियर टूटकर गिरने लगते हैं, जमीन खिसकने लगती है और घर देखते ही देखते टूटकर जमीन पर आकर धंसने लगते हैं।
0: बादल फटने की एक वजह और भी है, वैज्ञानिक इसको बताते हैं। वे ये बताते हैं कि बादल काफी मात्रा में नमी या पानी लेकर आसमान में चलते हैं। जब उनके रास्ते में कोई बड़ी बाधा आती है तब उससे टकराकर ये फट जाते हैं।
1: वैज्ञानिक जो भी बादलों के लिए अनुमान लगाएं या शोध कर बताएं, पर बादलों को देखकर मौसम का पूर्वानुमान लगाना सदियों से प्रचलित है।
0: हाँ, ऋग्वेद में बादलों को वर्षा का अश्व माना गया है और मौसम का अनुमान पूरी दुनिया में बादलों के आधार पर ही लगाया जाता है।
1: हाँ धरा, और हिंदी साहित्य के कवि घाघ और भड्डरी ने क्या खूब ही कहा है, कारा बादल जीडर पावे, भूरा बादल पानी लावे, शुक्रवार की बदरी बिन बरसे ना जाए जैसी पंक्तियाँ बादलों को लेकर कही हैं।
0: हाँ, और महाकवि कालिदास ने तो अपनी एक पूरी कृति को ही इन्हीं बादलों को समर्पित कर दिया है। ये कृति है मेघदूतम।
1: वाह, हमारे पुराण सैकड़ों सालों से इन्हीं बादलों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें देखकर, इनकी टोह लेकर, इनकी तह तक पहुंचकर बादलों के रूप रंग और इनके ठौर ठिकानों के आधार पर ही अपने अनुभव को मौसम के अनुमान में ढाला है।
0: पता है बादल इसी आधार पर उन्हें वर्गीकृत भी किया गया है, जैसे बादलों में सफेद धागों के गुच्छे जैसे दिखाई देने वाले जिनमें रेशम सी चमक होती है, ऐसे बादलों को पक्षाभ मेघ कहा जाता है।
1: अच्छा, इसी तरह ये मेघ सफेद या भूरे रंग के भी होते हैं। हम जब इन्हें देखते हैं तो लगता है जैसे बादलों के छोटे छोटे ढेर इकट्ठा हो गए हैं। रुई के ढेर जैसे नजर आने वाले इन बादलों को कपासी मेघ कहते हैं।
0: बादल चाहे काले हो या सफेद, हमें ये सदा सम्मोहित करते हैं। जब तेज गर्मी से हम हलकान होने लगते हैं, तब आसमान में इन मेघों के आने की प्रतीक्षा करते हैं।
1: हाँ धरा, बिल्कुल सही कहा। और सबसे अधिक कौतूहल तो हमें बादलों के गरजने और बिजली के कड़कने पर होता है, और जब ये बहुत अधिक जोर से गरजते हैं या बिजली कड़कती है तो मन में अजीब सा भय भी पैदा हो जाता है।
0: आपकी बात सही है, एक लंबे समय तक तो बादलों का गरजना और बिजली का कड़कना सुनकर इसे दिव्य प्रकोप से भी जोड़ा गया।
1: हाँ धरा, जबकि सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग से सिद्ध किया था। उन्होंने बादलों से बिजली भी इकट्ठा की और बताया कि ज्यादातर बादलों में नेगेटिव चार्ज रहता है और पॉजिटिव चार्ज वाले बादलों की संख्या कम होती है।
0: पर बादलों से दोनों ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होते हैं, और दोनों तरह के बादल जब आमने सामने होते हैं तो उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है और उनके बीच की हवा में बिजली उत्पन्न होती है।
1: हाँ, और यही बिजली गर्जना पैदा करती है, तब हमें आसमान में बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और उसकी गर्जना बाद में सुनाई देती है।
0: और वो इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति और ध्वनि की गति में फर्क होता है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से ज्यादा होती है, इसीलिए हमें चमक पहले और बिजली के कड़कने की आवाज बाद में सुनाई देती है।
1: बादल हमारी जलवायु को भी प्रभावित करते हैं, वो भी दो तरीकों से। पहला तो ये कि बादल हमारे जल चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है।
0: ये बादल बारिश और बर्फ, महासागरों और झीलों तथा पौधों और जानवरों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान करते हैं। यानी बादल हमारी इस पृथ्वी पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: हाँ, और दूसरा तरीका ये है कि बादलों का पृथ्वी के तापमान पर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये पृथ्वी के तापमान को ठंडा और गर्म दोनों करने में सक्षम होते हैं।
0: वो इस तरह के बादल सूर्य से मिलने वाली किरणों की गर्मी और रोशनी दोनों को रोक सकते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान ठंडा हो जाता है। हम सभी जब बादल छा जाते हैं तो इस तरह की ठंडक को महसूस करते हैं।
1: रात में बादल इसी तरह अपना काम करते हैं, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये बादल पृथ्वी को एक बड़े कम्बल में लपेट कर उसके तापमान को प्रभावित करते हैं।
0: हाँ, इस तरह हम कह सकते हैं कि बादलों के द्वारा ठंडा और गर्म दोनों प्रभाव होता है। यानी ये भी साबित होता है कि बादल इस कार्य में शक्तिशाली कारक हैं, जो पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
1: हाँ धरा, हम ये भी कह सकते हैं कि बादल हमें धरती पर एक ठंडी जलवायु देते हैं, जिसका आनंद हम बादलों के बिना नहीं ले सकते।
0: जी हाँ, ये बादल जहाँ अकाल या सूखा पड़ता है वहाँ बरसते हैं, तो मानव नहीं समस्त प्राणियों और वनस्पतियों की रक्षा करते हैं।
1: जहाँ नदियाँ, तालाब, कुएं, जलाशय आदि पानी के स्रोत सूखने की कगार पर आ जाते हैं, तब ये बादल वहाँ बरस कर उनका भी जीर्णोद्धार करते हैं।
0: किसान तो आकाश में उमड़ते घुमड़ते मेघ देखकर खुश हो जाते हैं और बादल बरसने पर उनकी फसलें लहलहा उठती हैं, पृथ्वी हरी भरी दिखाई देने लगती है।
1: हाँ धरा, बिल्कुल, अच्छी फसलें पैदा होने से धन धान्य और संपन्नता आती है। इससे केवल हम मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु और पशु पक्षियों की प्यास मिट जाती है।
0: तो आज के कार्यक्रम में हमने बादलों के महत्व को जाना। अगले कार्यक्रम में हम फिर अपनी धरती को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली और जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम की परिकल्पना की थी अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, लेखन प्रमिला दिवाकर मुंशी,
0: और मैं थी धरा यानी वर्षा,
1: और मैं था आपका दोस्त बादल यानी दीपक।
0: तो इस कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अभी वक्त है आपसे इजाजत लेने का। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए।
2: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: जॉन अंडरहिल और 1644 का नरसंहार, जब भाड़े के सैनिकों ने लिखी साम्राज्य की पटका था। 1644 की कड़ाके की ठंड में डच वेस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसे व्यक्ति की ओर रुख किया जिसकी निर्दयी कार्य कुशलता की प्रतिष्ठा अटलांटिक सीमाओं के पार तक फैली हुई थी। कैप्टन जॉन अंडरहिल एक अमेरिकी मर्सिनरी यानी भाड़े का सैनिक थे जिनका विवाह एक डच महिला से हुआ था। अंडरहिल ने न्यू इंग्लैंड के पेकोट युद्ध के दौरान इतिहास में अपना नाम पहले ही खूनी अक्षरों में दर्ज कर लिया था। वह 1637 में मिस्टिक रिवर पर हुए उस कुख्यात नरसंहार के मुख्य सूत्रधार थे जहां उनके आदेश पर एक पूरे पेकोट गांव का विनाश कर दिया गया था। अब वे पूर्ण विनाश की वही भूख लेकर प्रथम डच मुंसी युद्ध के दौरान WIC की सेवा में आए। हडसन की घाटी में संघर्ष के ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां डच बसने वाले और मुंसी समूह हत्याओं और प्रतिशोध के अंतहीन चक्र में फंस गए थे। स्वदेशी प्रतिरोध को हमेशा के लिए कुचलने के इरादे से अंडरहिल ने फरवरी 1644 में WIC सैनिकों के एक दल का नेतृत्व करते हुए एक कुख्यात अभियान चलाया। उनका लक्ष्य आधुनिक न्यूयॉर्क के पाउंड रिज के पास स्थित एक किलाबंद टैंक टेकेस गांव था। अंडरहिल की रणनीति अधिकतम आतंक फैलाने के लिए सोची समझी थी। उन्होंने रात के अंधेरे में बस्ती के चारों ओर अपनी सेना तैनात की और उन पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। जब कोने में घिरे इंडियंस ने बाहर आकर लड़ने से इनकार कर दिया तो अंडरहिल ने भीषण अंत का रास्ता चुना। उन्होंने अपने आदमियों को पूरे गांव को आग लगाने का आदेश दिया, ये जानते हुए कि निवासी अपने ही लकड़ी के लॉन्ग हाउस के भीतर फंसे हुए थे। वह दृश्य अकल्पनीय भयावहता का था क्योंकि ग्रामीणों ने WIC सैनिकों के हाथों मारे जाने के बजाय आग की लपटों में जलकर मरना बेहतर समझा। जब तक आग शांत हुई 500 से अधिक इंडियंस लोग मारे जा चुके थे। ये घटना न्यू नीदरलैंड के इतिहास के सबसे क्रूर अत्याचारों में से एक थी जिसने 5 साल तक चले पूरे संघर्ष में खोए अनुमानित 1600 स्वदेशी जीवन का लगभग एक तिहाई हिस्सा ले लिया था। अंडरहिल की भाड़े की सेवा का प्रभाव केवल शवों की संख्या तक सीमित नहीं था। उनके अभियान के निचली हडसन घाटी में जनसांख्यिकी तबाही और स्वदेशी राजनीतिक संरचनाओं के पतन को तेज कर दिया। जीवित बचे मुंसी समूह के लिए डच कंपनी का वह दावा जो कभी यूरोपीय दस्तावेजों में केवल एक कानूनी कल्पना थी अब एक भयानक वास्तविकता बन गया। 1650 के दशक तक इंडियन समुदाय के नेता स्टेटन आइलैंड जैसी जगहों के लिए संपत्ति के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे थे और अपनी जमीन अभी और हमेशा के लिए सौंप रहे थे। अंडरहिल की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कंपनी राज्य का विस्तार केवल व्यापार और संधियों का मामला नहीं था बल्कि यह अक्सर हिंसा के पेशेवर एजेंटों की विशेषज्ञता पर बनाया गया था। 17वीं शताब्दी के सीमांत क्षेत्रों में एक भाड़े के सैनिक की मशाल किसी भी व्यापारी के बही खाते की तुलना में संप्रभुता के नक्शे को अधिक प्रभावी ढंग से फिर से लिख सकती थी। अंडरहिल जैसे क्रूर पुरुषों के माध्यम से WIC समुद्री घुसपैठियों के एक समूह से बदलकर देश के निर्विवाद मालिक में बदल गई।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन योगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, ये जगत जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, स्पर्श करते हैं, अपना मानते हैं, क्या वास्तव में वैसा ही है जैसा दिखाई देता है, या फिर ये चेतना के आकाश पर उभरती हुई एक ऐसी छवि है जो सत्य का आभास तो देती है पर स्वयं सत्य नहीं है। आदि शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन भी इसी सत्य की ओर संकेत करता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही परम सत्य है, ये जगत मिथ्या है और जीव का वास्तविक स्वरूप भी ब्रह्म ही है। योग वासिष्ठ पर चर्चा करते हुए आज हम उसी बिंदु पर खड़े हैं जहां जगत की भ्रामक सत्ता के पार उस शाश्वत सत्य का साक्षात्कार होता है जो न जन्मता है न मिटता है। और जब दृष्टि बदलती है तो बंधन भी बदल जाता है। देह रहते हुए भी मुक्ति संभव होती है और देह के पार भी मुक्ति का रहस्य उद्घाटित होता है। यानी तब ये बोध होने लगता है कि मुक्ति कहीं बाहर जाने का नाम नहीं बल्कि भीतर के जागने का नाम है। जब मन की भ्रांतियां शांत होती हैं तब वही संसार जो अब तक बंधन प्रतीत होता था आत्मज्ञान की दृष्टि से सत्य के दर्शन कराने लगता है। तो आइए इसी आत्मबोध की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। आज के योग संवाद में प्रवेश करें उस सूक्ष्म और अद्भुत ज्ञान भूमि में जहां चर्चा होगी जगत की भ्रम रूपता, सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति की, और उस आत्म तत्व की जो समस्त दृश्य जगत के पीछे मौन, अचल और शाश्वत रूप से विद्यमान है। बातचीत के लिए हमारे बीच हमेशा की तरह उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग संवाद कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है इन दिनों योग संवाद कार्यक्रम में। योग वासिष्ठ ग्रंथ खुला हुआ है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जगत की भ्रम रूपता के निरूपण की। हमने पिछले अंक में बात की थी कि विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा था कि वो भगवान श्री राम को उपदेश करें, और ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को जो उपदेश किया था वही उपदेश वो करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वही मैं कहता हूँ जो ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि संसार के भ्रम के निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा क्या था, क्या उपदेश किया था?
1: वशिष्ठ जी से ब्रह्मा जी ने कहा था कि यह जगत संकल्प के निर्माण से निर्मित होता है। आप देखें तो मन में असंख्य विचार आते हैं और जब वह विचार व्यक्ति संकल्प के साथ उस विचार को ग्राह्य कर लेता है तो संकल्प के अनुसार फिर उसके जगत का निर्माण हो जाता है।
0: अच्छा।
1: उदाहरण के तौर पर इस जगत में जहां जहां से आपका मैं और मेरेपन का भाव है तो देखें तो वो आपके संकल्प का परिणाम है। अगर अच्छा। विचार करें तो
0: जी,
1: वो संकल्प ने ही उसे आपका अपना कर दिया और आप अपनेपन की भाव से उससे जुड़ गए। अन्यथा वो स्थान, वस्तु, व्यक्ति उस संकल्प के पूर्व आपका नहीं था, संकल्प के बाद आपका हो गया।
0: जी, जी।
1: तो अंततः देखें तो संकल्प के कारण ही तो वो जगत निर्मित हुआ, वो संसार निर्मित हुआ।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: संसार मतलब संबंधों का एक जो जाल है जिसको हम समाज कहते हैं वो संकल्पों पर ही तो आधारित है।
0: जी।
1: तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि ये जो जगत है संकल्पों से निर्मित हुआ है और जैसे मन का राज्य, मनोराज्य का विलास है ये। यानी आप देखें तो इस जगत में मन ही जो है विलास करता है, और जैसे हम स्वप्न में देखे गए नगर का जो अस्तित्व है
0: जी जी।
1: ऐसे ही इस जगत का भी अस्तित्व है, लेकिन व्यक्ति इस तत्व पर विचार नहीं करता। मैं थोड़ा सा ध्यान अपने श्रोताओं का इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि हम तीन अवस्थाओं के साक्षी हैं। जागृत अवस्था अगर हमारे संकल्पों से निर्मित हुआ है यानी मनोराज्य का विलास है, तो जब हम स्वप्न देखते हैं
0: जी,
1: तो स्वप्न में जागृत अवस्था के तो दृश्य नहीं होते।
0: नहीं होते जी।
1: तो ऐसे में उस स्वप्न को भी हमने देखा, कोई और साक्षी नहीं है
0: जी, जी।
1: आपके स्वप्न का साक्षी आपको छोड़कर के दूसरा नहीं,
0: दूसरा
1: है।
0: नहीं है।
1: तो जब दूसरे से आप अपने स्वप्न के बारे में कहेंगे तो कहेगा अरे क्या बात करते हो, आप तो अपने बिस्तर पर मेरे सामने सोए हुए थे, तो ये सब नगर कहां से निर्मित हुआ?
0: जी जी।
1: तो आप कहेंगे कि आपके लिए नहीं हुआ, मैं तो खुद साक्षी रहा हूं, मैं कैसे नकार दूं। यही मिथ्या होने का अर्थ, चूंकि कई बार शब्दों के अर्थ अस्पष्ट होने से या शब्दों के अर्थ में स्पष्टता न होने से हम गलत अर्थ निकाल लेते हैं। मिथ्या का अर्थ नहीं होना नहीं है,
0: नहीं होना नहीं है जी।
1: कहते ना ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जगत को नकार दिया गया। जगत का अस्तित्व जैसे स्वप्नवत आपका उसका अस्तित्व आपको दिखता है,
0: आपके लिए उसका अस्तित्व है,
1: जागने के बाद उसका अस्तित्व मिटता है।
0: जी जी।
1: तो अगर आप स्वप्न के अस्तित्व को जागने के बाद नकार देते हैं तो सोते वक्त स्वप्न देखने के समय क्या जगत का अस्तित्व नकार नहीं दिया जाता? इस पर विचार क्यों नहीं करते? यानी जगत भी एक सपने की तरह ही है, हुआ कि नहीं? अगर जगत अपने अस्तित्व को बनाए रखता तो स्वप्न कैसे देखते? आप अपने बिस्तर पर बैठे बैठे और पूरी दुनिया घूम रहे हैं, या स्वप्न में समय की कोई सीमा नहीं होती?
0: जी, जी,
1: स्वप्न
0: जी।
1: में मरे हुए लोग भी बात करते हैं और उनके साथ जिया जाता
0: आप
1: है,
0: जीते हैं,
1: जीते हैं, और उस समय सच लगता है कि हाँ वो हमारे साथ मौजूद है।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरीके से देखेंगे तो वो भी एक मन का राज्य है। और एक अवस्था और है जिसको हम कहते हैं निद्रा की अवस्था।
0: जी।
1: निद्रा की अवस्था में किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर तक का ज्ञान नहीं होता। जब शरीर का ज्ञान नहीं होता तो शरीर से संबंधित किसी ज्ञान के होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
0: सवाल ही नहीं होता जी।
1: तो अब आप देखिए कि हम इन तीन अवस्थाओं का साक्षी होने के बाद भी जगत को ही सत्य मानते हैं और बाकी इन दो अवस्थाओं को जो हम लगातार जी रहे हैं लेकिन उस पर विचार नहीं करते। जबकि हमने एक कहते हैं ना कि सारे जगत का मिट जाना या कह सकते हैं अभाव की सत्ता निद्रा की अवस्था है, जिसमें देह का भी अभाव होता है। तो देह के अभाव को भी हम जानते हैं, स्वप्न को भी हम जानते हैं, जागृत अवस्था को भी हम जानते हैं, लेकिन मानते सिर्फ जागृत अवस्था के सत्य को। तो क्या ये सही ज्ञान है? ये देखें तो एक प्रकार का स्वप्न के नगर जैसा नहीं है। यही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वशिष्ठ जो ज्ञानी लोग होते हैं वो जैसे स्वप्न देखने के बाद स्वप्न का राज्य आपका चला जाए तनिक भी आपको क्षोभ नहीं होता, ऐसे ही जगत के मिटने का भी उन्हें क्षोभ नहीं होता, क्योंकि वो उसी की तरह जगत को भी देखते हैं।
0: तो एक दृष्टि है ये।
1: और एक न एक दिन जगत छूटता ही है, चाहे जगत में कितना बड़ा साम्राज्य किसी का हो, कितना बड़ा पद हो, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा हो, कितना नाम कमाया हो आपने, वो कहते नाम घूम जाए है ना, तो घूम जाता है नाम के नहीं घूम जाता है।
0: बिल्कुल,
1: तो अंततः एक सच तो ये है। तो आप कहते हैं जिस दिन घूमेगा उस दिन घूमेगा, आज हम क्यों इस पर विचार करें? आज क्या, मैं कहता हूं रोज घूमता है। जब आप सोते हैं तो आपके जगत का सत्ता कहां रहता है? आप जब नींद में जाते हैं तो स्वप्न और जागृत अवस्था दोनों समाप्त हो जाता है।
0: जी जी।
1: तो इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी होने के बाद सिर्फ एक ही अवस्था को सच मानना ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है कि आप समग्र ज्ञान पर विचार करें, मनन करें, उसका निधिध्यासन करें।
0: अच्छा, इसमें इहलोक और परलोक की बात भी आई है
1: जी।
0: तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि इहलोक और परलोक की जो अवधारणा है वो कहाँ प्रकाशित होती है और क्या है ये?
1: देखिए, इहलोक और परलोक की अवधारणा योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं कि वो हृदयाकाश में प्रकाशित होती है। और इहलोक मतलब इस लोक में जो आप देख रहे हैं, जो जागृत अवस्था में आप देख रहे हैं, वो इस लोक को ठीक करने का जो प्रयास करते हैं, जिसको गीता में भगवान ने कहा है अनन्यास चिंतयन्तो माम योजना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। कि मैं उसके योग और क्षेम का वहन करता हूँ। योग और क्षेम का मतलब क्या हो गया कि जो नहीं है उसको हम इस जगत में पाना चाहते हैं, ये लोक में, और जो है वो बना रहे, ये चाहते हैं, जो है वो बना रहे इसको क्षेम कहा गया, और जो नहीं है उसको पाने के लिए प्रयास करना और प्राप्त करना इसे योग कहा गया। तो इन दोनों का वहन मैं करता हूं, लेकिन जो अनन्य भाव से अन्य दूसरा कोई नहीं है, ये ब्रह्मज्ञान है। योग वासिष्ठ विशुद्ध रूप से ब्रह्म विद्या है, और भारत में जो योग है वो ब्रह्म विद्या ही है योग
0: जी।
1: तो वो कह रहे हैं कि जो अन्य भाव से, यानी जो परमात्मा, यानी उस साक्षी को जानने के अतिरिक्त और कुछ जानने योग्य नहीं है, यही गेय है। क्या? आपका स्वरूप, आपका आत्मतत्व। तो अगर जिसको आपने जाना और अन्य भाव से आप उसको जानते हैं तो उसके योग क्षेम का उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मैं ही वहन करता हूं, ऐसा भगवान ने कहा। तो जो आपने इहलोक की बात की तो इहलोक में योग और क्षेम की व्यक्ति चिंता करता है। परलोक की बात हम करें तो जब हम इस लोक में अपने आयु का पूरा भोग कर लेते हैं तो शेष जो हमारी वासनाएं रह जाती हैं, जिसको हम मतलब नहीं जी पाते या नहीं भोग कर पाते, तो उसको हम परलोक में उसकी कल्पना करते हैं, जिसके लिए हम स्वर्ग और नरक की संकल्पना की बात करते हैं। और इस लोक को अनुशासित करने के लिए नर्क की कल्पना की गई, या ऐसा सोचा गया कि नर्क एक ऐसी जगह है जहां अगर आपने शास्त्र विहित सिद्धांतों का पालन नहीं किया तो आप वहां जाएंगे।
0: दंडित
1: और अगर शास्त्रानुकूल आप कर्म किए तो स्वर्ग में जाने की बात नहीं, आप यहीं स्वर्ग जैसा सुख महसूस करेंगे।
0: जी, जी।
1: तो इहलोक परलोक दोनों को प्रकाशित करने वाला जो हृदय का आकाश है, क्योंकि हृदय भाव का जगत है
0: जी।
1: और आप देखें तो जगत में बिना भाव के आप जगत से जुड़ते नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी भूमि के टुकड़े का जब हिस्सा आप अपने नाम करवा लेते हैं तो वो आपकी भूमि हो जाती है। उसके पहले आप वहां से निकलते हैं, आते जाते हैं, उस भूमि पर कुछ भी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका वहां भावात्मक लगाव नहीं है।
0: वही बात देश का भी
1: वही कहा देश का है, वही बात व्यक्तियों का है कि जिनको आप अपना मानते हैं कि हमारे अपने लोग हैं, तो उनके साथ क्या है भावनात्मक संवाद है, भावनात्मक जुड़ाव है। और भाव का स्थान क्या है? हृदय। इसलिए कहा कि ये हृदय आकाश में प्रकाशित होते हैं, क्योंकि तभी आप जुड़ोगे किसी चीज से जब आपकी भावना जुड़ेगी।
0: भावना जुड़ेगी
1: जी, जी, जी। इसको समानुभूति कहा गया, जिसको एम्पैथी कहते हैं।
0: हाँ,
1: एम्पैथी
0: हाँ।
1: और सिंपैथी को लेकर के मैंने देखा है
0: जी, जी, जी।
1: अक्सर लोगों में द्वंद होता है। मैं एक बड़े अच्छे उदाहरण से आपको दूं, तो जैसे हम सभी ये जानते हैं कि हमारे श्वास लेने का जो साधन है वो वृक्ष है
0: जी।
1: लेकिन जब वृक्ष कटते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता
0: जी।
1: ये जानते तो आप हैं कि वृक्षों से श्वास मिल रहा है, वृक्ष के कटने पर फर्क नहीं पड़ता, तो इसको कह सकते हैं ये आपकी एक प्रकार की वृक्षों के प्रति सिंपैथी है। लेकिन जिस वृक्ष को आपने लगाया हो जब वो कटेगा तो उसके लिए आप अपना अथक प्रयास करेंगे कि इस तरीके से इसको बचा लें, क्योंकि उस वृक्ष के साथ एक अपनापन भाव का जुड़ा हुआ है जिसको एम्पैथी कहते हैं। तो सिंपैथी एम्पैथी ये व्यक्ति को ठीक से समझना चाहिए
0: जी। ये बताएं कि संसार का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है, क्या बताया गया है योग वासिष्ठ में?
1: योग वासिष्ठ में उन्होंने कहा कि संसार असार है, वासना के भीतर अन्य अनेक शरीर और उनके भीतर भी एक दूसरे शरीर, ये संसार एक केले के वृक्ष की त्वचा के समान है। जैसे आप उतारते जाइए त्वचा, जैसे प्याज के छिलके से भी कहा जाता है, तो आप एक एक छिलके को हटाएंगे तो अंत में प्याज
0: बचेगी
1: ही
0: नहीं, नहीं।
1: तो ऐसे ही ये संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्थाई है, क्योंकि आप देखें एक बच्चा जब समझदार होता है तो समझदार होने के साथ साथ उसके रिश्ते की परत दर परत उसके जीवन में चढ़ती चली जाती है। फिर वो माता पिता को समझता है, भाई बंधु को समझता है, मित्रों को समझता है, फिर वो योग्य होता है, योग्यता पद, फिर शादी होती है, बच्चे, तो ये सब एक आवरण, एक से एक उपाधियां आपके ऊपर चढ़ती चली जाती है। अगर इन उपाधियों को हटाया जाए तो अंत में आपकी निरुपाधिक सत्ता बचेगी, जिसकी कोई उपाधि ही नहीं है ना, उसका क्या उपाधि है जी।
0: अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि संसार का भ्रम किसे होता है?
1: संसार का भ्रम जीवित और मृत जीवों को संसार का भ्रम होता है।
0: जीवित और मृत जीवों को। अच्छा,
1: जैसे उदाहरण के तौर पर आपने जब कहा कि आचार्य शंकर की बात कही, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या की बात, तो आचार्य शंकर ने जब वेदांत का निरूपण किया या उन्होंने व्याख्या की
0: जी,
1: तो जीव कहा गया कि जब ब्रह्म अविद्या से युक्त हो जाए, यानी उस पर अविद्या का आवरण हो जाए, तो वो जीव बन जाता है।
0: जीव बन जाता
1: और अविद्या के आवरण से जीव और माया के आवरण से ईश्वर बन जाता है। देखिए तीन स्थिति हो गई, ब्रह्म है तो एक ही ब्रह्म, लेकिन जब ब्रह्म पर माया का आवरण आया तो ईश्वर बन गया। तो कहते हैं कि माया से ये पूरा संसार रचा हुआ है, ठीक है, ये माया का संसार रचने का सामर्थ्य ईश्वर में है। और जीव अविद्या के नाते ब्रह्म है लेकिन वो अपने को जीव मानता है। तो जीवित और मृत की बात यहाँ की गई, इसलिए की गई कि आपको ये शरीर जो मिला है, मतलब ऐसी इच्छाएं, ऐसी वासनाएं जिसकी आपने भोग नहीं की थी, उस वजह से आपको फिर से शरीर मिला भोग के लिए
0: जी।
1: और फिर आप मर गए, मोक्ष नहीं आपने पाया या उस सत्य का ज्ञान या तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो फिर मरने के बाद भी आप वासना के साथ मरे हैं, इसलिए फिर आपको एक शरीर की आवश्यकता पड़ेगी
0: जी।
1: तो इसलिए जो भ्रम होता है संसार में वो जीव मृत और जीवित जीवों को होता है, यानी ये जो अज्ञानता से युक्त जो ब्रह्म तत्व है जिस पर अज्ञानता का आवरण लगा हुआ है
0: जी, जी, जी।
1: उसे ही ये भ्रम होता है, अन्यथा अज्ञान ही भ्रम है। उदाहरण के तौर पर वेदांत ये कहता है कि अज्ञान के हटते ही आप जो हैं वो तो हैं ही, ऐसा नहीं कि आपको ब्रह्म होना है।
0: हाँ, हाँ,
1: आप ब्रह्म हैं,
0: आप हैं।
1: ठीक है, जैसे रस्सी में सर्प का उदाहरण ये खूब दिया जाता है
0: जी, जी।
1: आप विचार करिए कि एक व्यक्ति जो सर्प के भय से भयभीत है, वो तभी तक भयभीत है जब तक उसे रस्सी का ज्ञान नहीं है
0: जी, जी।
1: रस्सी का ज्ञान होते ही सर्प का भय तुरंत समाप्त होगा,
0: है ना।
1: तो ऐसे ही जैसे ही जीव की अज्ञानता मिटेगी वो अपने को ब्रह्म जानेगा। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि कोई पढ़ करके समझने का विषय नहीं है या पढ़ करके समझने और प्रवचन करने से आता भी नहीं है। ये जब अज्ञान ज्ञान का आवरण हटता है तो आप ब्रह्म है, ठीक वैसे ही जैसे बादल के हटते ही सूर्य उगता और डूबता नहीं है,
0: वो तो है,
1: वो है
0: जी,
1: ठीक है। लेकिन धरती का जो हिस्सा उसके सामने आ गया वहां पर आपने सूर्योदय कह दिया, और जो हिस्सा उससे दूर हो गया या उसके सामने नहीं है उसको आपने सूर्यास्त कह दिया, जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त होता नहीं है,
0: होता नहीं
1: जी। तो ऐसे ही है ये, क्योंकि सूर्य है, बस आवरण आ गया है बादल का, बादल हटेगा फिर से वो प्रकाशित है। तो ऐसे ही आप ब्रह्म है, ब्रह्म होने के लिए कुछ करना नहीं है, बस अज्ञान का जो आवरण
0: है
1: और यही आवरण आपको जीव बना रखा है, और इसी आवरण के नाते जन्म और मृत्यु होती है, इसलिए जीवित और मृत जीवों को भ्रम होता है।
0: बहुत ही सुंदर। अच्छा ये बताएं कि जगत का जो परम सत्य है वो क्या है?
1: परम सत्य परमात्मा है। वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम परमार्थ सत्य परमात्मा रूपी विशाल महासागर में बारम्बार वे पुरानी और नई सृष्टि रूप असंख्य तरंगे उठती और विलीन होती रहती है। यानी परमात्मा में ही असंख्य तरंगे, परमात्मा की यहां थोड़ा सा महासागर से उपमा उन्होंने दी है कि जैसे महासागर में तरंगे उठती हैं और विलीन होती हैं, ज्वार भाटा जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वो उठती विलीन होने से वो सागर नहीं है, ये नहीं कह सकते आप, है तो वो सागर ही, सागर का ही हिस्सा है, तरंगे सागर से अलग नहीं,
0: अलग
1: है,
0: नहीं है।
1: ऐसे ही जो परमार्थ सत्य परमात्मा है उससे अलग यहाँ कुछ भी नहीं है। मुझे कल ही कहीं ये बात आई तो किसी ने मुझसे पूछा कि आत्माएं अनंत हैं, कई लोग इस तरह की भी मान्यताओं के साथ हैं।
0: अच्छा।
1: आत्मा कभी भी अनंत नहीं है, जैसे सागर में जलराशि एक ही है चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन उसमें तरंगों के ऊंचा उठने नीचा गिरने को अगर आप देख रहे हैं तो तरंग के वजह से जलराशि नहीं बदल गई। जैसे सोने से बनाए गए आभूषण विभिन्न नाम और रूप के हो सकते हैं लेकिन उससे सोना नहीं बदला, ऐसे परमात्मा जो चैतन्य है, जो ब्रह्म है, वो एक ही है। इसलिए सर्वम खलविदम ब्रह्म, यही नाते ये भारत का जो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो ये मतलब ऋण है, ये पूरा दुनिया जो है इस बात को आज विज्ञान भी उसी के करीब पहुंच रहा है। क्वांटम फिजिक्स तो कहीं कहीं मतलब देखें तो वेदांत की ही बात करने लगा है कि ब्रह्म जो सत्य है वो एक ही है, वो नहीं अलग अलग है, लेकिन अलग अलग जो ये रूपों में दिखाई दे रहा है वो तरंगों के नाते दिखाई दे रहा है कि तरंगे बन रही हैं बिगड़ रही हैं, लेकिन परमार्थ जो सत्य है परमात्मा उस महासागर में तरंगे उठती और विलीन होती रहती हैं।
0: अच्छा मैं जब योग वासिष्ठ के पन्ने पलट रही थी तो एक बड़ी रोचक सी बात इसमें दिखी
1: जी,
0: मैं चाहती हूँ कि वो जरूर हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि जब वशिष्ठ जी उपदेश कर रहे थे भगवान श्री राम को उस समय कौन सा युग चल रहा था?
1: आपने ये सुंदर सवाल किया, ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है। योग वासिष्ठ का सौंदर्य ये है कि इसमें कहानियों पर कहानियां निकलती चली
0: जी,
1: जाती
0: जी,
1: हैं।
0: जी।
1: जिस रहस्य को अगर हम नहीं समझे तो बहुत भारी चूक कर देंगे, और मैं समझता हूँ इस नाते ये ग्रंथ जो है आम लोगों का ग्रंथ नहीं बन पाया। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, कह रहे थे जिस समय वशिष्ठ जी राम जी को जब उपदेश कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि इस समय ब्रह्म कल्प का अवयव भूत 72वां त्रेता युग चल रहा है।
0: 72वां त्रेता युग
1: उस समय जब वो कर रहे थे उपदेश, यह पहले भी अनेक बार हो चुका है और आगे भी अनेक बार होता रहेगा। यह वही आने वाला त्रेता युग है और उससे विलक्षण भी है। ये जितने लोग हैं वे पूर्ववत हुए हैं और उनकी अपेक्षा नवीन भी हैं। अब देखिए पहले भी हैं और उनकी अपेक्षा नवीन भी हैं, ऐसा बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि राम ऐसा नहीं है कि तुम और मैं इस बार ही आए हैं। वो कहते हैं कि मैं भी कितनी बार वशिष्ठ के रूप में उत्पन्न हो चुका हूं और आगे भी होऊंगा, और तुम भी कितनी बार राम के रूप में अवतीर्ण हो चुके और आगे भी होगे। अच्छा। लेकिन आम जनता सोचती है कि राम का अवतार एक बार हुआ है, तो यहीं पर ये चूक हो जाती है।
0: जी,
1: और उस ब्रह्म तत्व को समझने के बजाय हम अयोध्या के राजा राम की कथा तक अपने आप को समेट लेते हैं। भारत में तो देखें जब विवाह होता है तो उसमें हम लोग जब वर वधू दोनों को उपमा देते हैं तो लक्ष्मी स्वरूप वधू कहते हैं और विष्णु स्वरूप वर कहते हैं। विष्णु का ही अवतार होता है राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, विभिन्न रूपों में।
0: जी, जी, जी,
1: तो ऐसे में आप देखें कि भारत में ऋषि कितना बड़ा दृष्टा था कि जब भी एक स्त्री पुरुष के मिलन की बात हो विष्णु और लक्ष्मी के मिलन के रूप में देखता था।
0: जी, जी,
1: इसका
0: जी,
1: मतलब ये हुआ, ये बात कही जा रही है कि राम मतलब हर वो व्यक्ति जो मतलब विष्णु स्वरूप है या हर वो स्त्री जो लक्ष्मी स्वरूप है, तो ये बार बार अवतार ले रहे हैं। और ये 72वां जो त्रेता युग है जिसमें अभी आप हमसे योग वासिष्ठ की कथा सुन रहे हैं और इसके पहले भी हम लोग हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, तो कितनी सुंदर बात है ये।
0: बहुत ही सुंदर जी,
1: विचारणीय है।
0: जी जी। अच्छा मनुष्य संसार में बहुत से प्रयास करता है लेकिन तृप्ति किसी को मिली नहीं, ये चर्चा हमने पहले बहुत बार की
1: जी।
0: तो बताएं आपकी तृप्ति किसे और कैसे मिलती है?
1: देखिए तृप्ति तभी होगी जब जीव का अविद्या रूपी आवरण जो मिट जाए, सीधी सी बात, जैसे आपने देखा होगा अभी हम लोगों ने चर्चा की है कि भ्रम किसे होता है, तो हमने कहा जीवित और मृत जीवों को। तो जीवित और मृत जीव जीव क्यों है? अविद्या के आवरण से। तो अविद्या का आवरण जैसे ही मिटेगा अंतःकरण एकाग्र होगा। अंतःकरण में एकाग्रता इसलिए नहीं होती कि जीव कभी अपने को शिव मानता ही नहीं है। निर्वाण शतकम में आचार्य शंकर कहते हैं चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो शिवोहम हम शिव हैं, हाँ शिव हैं, लेकिन हमारा जो जीव भाव है ये इसी अविद्या के आवरण से ढक जाने की वजह से मिट नहीं रहा है और अंतःकरण एकाग्र नहीं हो पाता। क्योंकि जब अविद्या होगी तो अविद्या तो चंचल बनाएगा ही आपको, चित्त कोच की चंचलता। तो कहते हैं जिसके सभी संकल्प विकल्प शांत हो चुके हों, क्योंकि संकल्प से जगत बनेगा, अभी हमने शुरू में देखा है, तो और संकल्प के साथ विकल्प भी आएगा, तो संकल्प विकल्प के शांत हुए बिना आप अपने स्वरूप भूत यानी तत्व को सच्चिदानंद घन परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे, उस चिदानंद घन को नहीं जान पाएंगे। सच्चिदानंद जो हम कहते हैं चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ये तभी हो सकता है जब हमारा संकल्प विकल्प शांत हो, अविद्या का आवरण हट जाए और अंतःकरण एकाग्र हो।
0: क्योंकि सुन तो हम भी रहे हैं हाँ, शिवोहम हाँ, लेकिन कहाँ हमारा आचरण उस तरह का है,
1: इसलिए कि हम अविद्या को ही जी रहे हैं ना।
0: जी, जी, जी,
1: हम अविद्या से कभी अपने को कहाँ मानते हैं कि हम ब्रह्म हैं, कहाँ मानते हैं कि हम सर्वव्यापी हैं, हम तो अपने को सीमित करते हैं। आप देखिए बुद्धि कभी भी आपकी सर्वव्यापकता को स्वीकार करने की स्थिति में है ही नहीं। मैं कहूँ कि आप वृक्ष में भी हैं, आप आकाश में भी हैं, सब आप ही हैं। जब वो कहते हैं ना जब विराट रूप दिखाया भगवान ने, तो ऐसे में अर्जुन क्या हुआ, डर गया। तो ऐसे में अगर कोई ज्ञान आपको दे दे या कोई ऐसी दृष्टि दे दे जिसमें पूरे जगत में आप अपने को और जगत को अपने में देखने लगे, तो क्या ये मस्तिष्क उसे बर्दाश्त कर पाएगा? आदमी तो विक्षिप्त हो जाएगा। तो ऐसे में उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है और वो दिव्य दृष्टि ही आपको ब्रह्म तत्व से जोड़ती है या ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत कर देती है।
0: अच्छा शशिकांत जी, एक सवाल मेरे मन में है कि मुक्त महात्मा मुनि की स्थिति कैसी होती है?
1: हाँ, आपने ये सुंदर कहा। कहते हैं कि जब वशिष्ठ जी संबोधित करते हैं राम को, कहते हैं सौम्य श्री राम, समुद्र की जलराशि शांत हो या उत्ताल तरंगों से युक्त, दोनों दिशाओं में उसकी जलरूपता समान ही है, उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। उसी तरह देह में रहते हुए और उसके न रहने पर भी मुक्त महात्मा मुनि की स्थिति एक सी होती है। अब ये देखिए जो ये तीन उपमा है, मुक्त, महात्मा और मुनि। अब देखिए मुक्त कौन है? जो ये जानता हो कि देह के रहने पर और देह के नहीं रहने पर हमारी स्थिति एक सी है, फिर वो देह में कैसे बधेगा? नहीं बधेगा। महात्मा वही है जो आत्म तत्व का साक्षात्कार कर ले या उसी के साक्षात्कार में निरंतर तल्लीन हो, अभ्यासरत हो, उसी का श्रवण मनन दे ध्यान करता हो, वो महात्मा हो गया। और मुनि भी इसी तत्व का साक्षात्कार करने के लिए लगातार एक ही भाव में रहता है। तो कहते हैं कि इन लोगों को देह के रहने और देह के न रहने पर भी अपनी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन वैसे ही नहीं दिखता जैसे समुद्र की जलराशि के शांत होने या तरंगों में होने पर कोई उनमें अंतर नहीं है। वैसे ही देह के होने या नहीं होने पर इनके पर भी कोई अंतर नहीं है। यानी वो देह में रहते हुए ही जीवन मुक्त हैं या विदेह मुक्त हैं।
0: तो यही मैं पूछने जा रही थी कि सदेह और विदेह मुक्ति की बात इसमें आई, क्या तात्पर्य है इससे?
1: आपने बहुत गूढ़ विषयों को उठाना शुरू कर दिया है। तो कहते हैं जिसने सत्य को मानकर भोगों का आस्वाद ही नहीं किया, उस पुरुष में भोगों की अनुभूति कहाँ से होगी?
0: अच्छा,
1: जिसने मतलब ये जान लिया कि देह के बिना या देह के रहते हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जब भी वो किसी विषय का भोग करेगा तो वो तो ये नहीं मानेगा कि मैं इसका भोगता हूँ।
0: हाँ।
1: वो तो कहेगा देह भोगता है। उदाहरण के तौर पर आप किसी रस को लेते हैं तो उसका कारण जिह्वा है, तो जिह्वा शरीर का हिस्सा है ना। चेतना को आप भोगता बना दें तो गलत होगा ना। वो तो रस को भी जानता है, स्पर्श को भी जानता है और सबसे मुक्त भी है, तभी वो सबको जानता है, इसीलिए उसको सर्वव्यापी सर्वज्ञाता कहा गया। आप सभी को जानने का सामर्थ्य तभी रख सकते हैं जब आप किसी को जानने का दावा ना करें। आप जब किसी को जानने का दावा करेंगे तो आप एक में सिमट गए। सबको जानने वाला सबसे अलग होगा, है ना। यही मुक्ति है। तो आपने जो सुंदर सवाल किया कि जीवन मुक्त और विदेह मुक्त, ये दोनों में भेद जो है वो मात्र अज्ञान का है। अज्ञान के नाते वो जीव है, ज्ञान हटा तो वो देह में रहते हुए भी ब्रह्म जैसा आचरण करेगा, और देह छूट जाएगा तो फिर देह जिसका छूटा वो तो देही है ही नहीं, देह का तो देही का तो देह है ही नहीं।
0: जी जी,
1: देह तो अलग है, प्रकृति का है, पंचभूतों का है, पंचभूतों से बना है, पंचभूतों से पोषित होता है और पंचभूतों में ही मिल जाएगा। देह को आप ध्यान से देखें तो पांच तत्वों से ही इसका पोषण होता है, पांच तत्वों में ही इसकी स्थिति है। अगर आपको कोई कहे कि वायु के बिना क्या देह को रख पाएंगे,
0: नहीं
1: रख सकते, क्या अन्न के बिना देह रह सकता है, नहीं रहेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि लोग इसी देह को जलाने तपाने में लगे हुए हैं। देह मिला था किस लिए? देह मिला था उस अद्वय को जानने के लिए, लेकिन आपने अद्वय को जानने के बजाय देह पर ही अपनी सारी बुद्धि लगा दी कि कैसे इसको सुखाएं, कैसे इसको पंचाग्नि में तपाएं। कितना बड़ा ये भ्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा। इसी को कबीर साहब कहते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास,
0: है ना।
1: देह मिला था एक साधन, और साधन से साध्य को सिद्ध किए बिना आप साधन पर ही अपनी पूरे विवेक को लगा रहे हैं कि कैसे हम साधन को ठीक करें। अरे साधन को कितना भी ठीक कर लो, एक दिन साधन मिट ही जाएगा जब पांच तत्वों से मिला है और पांच तत्व परिवर्तनशील हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। प्रसंसार का मतलब है संसरत इति संसारः, जो हर पल संसरण कर रही है, गति कर रही है। तो देह की अवस्था नहीं बदल रही है क्या? भाई हम कहते हैं आप अपनी अवस्थाओं का ज्ञान कर पाए ना कर पाए, लेकिन जागृत स्वप्न और सुषुप्ति जो अभी हमने पहले बात की है, इसका तो परिवर्तन देख ही रहे हैं कि आप राजा होंगे जागते वक्त, लेकिन हो सकता है सपने में भिखारी हो जाए, और निद्रा में तो राजा भिखारी दोनों से मुक्त होंगे।
0: बढ़िया।
1: वहां तो कोई राजा रह के सो नहीं सकता और भिखारी रह के नहीं सो सकता, दोनों वहां विदेह हैं।
0: जी,
1: तो यही जीवन मुक्ति और सदेह मुक्ति और क्या कहते हैं विदेह मुक्ति।
0: जो विदेह मुक्ति की बात आई, तो जैसे जनक जी को विदेह कहा जाता है, तो वही स्थिति होनी चाहिए ये हम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो हो सकती है, हो सकती है। ज्ञान वही कहा ना कि दोनों के बीच का भेद अज्ञान है। जनक को ज्ञान, वो कभी भी उनका ज्ञान अज्ञान का आवरण उनको ढका नहीं, इसलिए वो देह में रहते हुए विदेह कहलाए। और बाकी जो लोग हैं, ठीक है वो देह में रहते हुए हो सकता है कि देह के व्यवहार में कभी कभी आसक्त या विरक्त हो जाते हों, लेकिन जनक की स्थिति विदेह इसलिए कही गई कि उनके ज्ञान का जो तत्व था वो हमेशा, उनका सूर्य हमेशा प्रकाशित रहा, जो आत्मज्ञान, वो इसी को आजकल लोग बड़ा, एक वर्ड बड़ा सुना होगा आपने भी, इनलाइटेंड कहते हैं कि इनलाइटेंड है ये। इनलाइटेंड का मतलब ये हुआ कि जिसका कभी ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के आवरण से ढका ही नहीं। और यहाँ पर मुझे आश्चर्य होता है उन मित्रों को जब मैं देखता हूँ कि वो शरीर के आधार पर ही किसी के प्रकाशित और अप्रकाशित होने का प्रमाण देते हैं, और चेक करते हैं शरीर को देख करके, अच्छा इनका ऐसा व्यवहार है तो ये प्रकाशित है, और ऐसा व्यवहार है तो ये अंधकार में है, अज्ञान में है। अरे भाई आप किसको देख रहे हो? अष्टावक्र जी ने इसी बात पर तो भरी सभा में अट्ठहास किया था जब उनके शरीर को देखा लोगों ने और हंस पड़े।
0: जी जी जी।
1: तो उन्होंने कहा कि जनक मैंने तो सुना था कि आपने विद्वानों की सभा बुलाई है, लेकिन ये हाड़ मांस के पारखी हो सकते हैं, ये हाड़ मांस देख रहे हैं मेरा। अगर ये अद्वय ज्ञान देख पाते तो जो जिए हैं वो मैं हूँ, है ना, इनको हंसी नहीं आती। सारे लोग उस पर चुप हो गए, और जनक जी ने कहा कि ये कम उम्र का बालक अद्वय ज्ञान को जानता है, और बाकी लोग द्वैत में फंसे हुए हैं, देह और आत्मा के द्वैत में।
0: जी जी। अच्छा, बहुत कम समय रह गया है, तो मैं चाहती हूँ बहुत संक्षेप में आप बता दें कि आनंद की प्राप्ति जो कि हर मनुष्य चाहता है कैसे होती है।
1: हाँ, यहाँ पर ये बहुत सुंदर आपने सवाल किया। जैसे हमारे यहाँ एक धारणा ये है कि परमात्मा को हम लोग जब अपने पुरुषार्थ से चीजें अर्जित नहीं कर पाते तो हम दैवधीन कर देते हैं, दैवाधीनम कर देते हैं। यहाँ पर वशिष्ठ जी ने कभी भी इस बात को कहा, ये प्रयत्न साध्य है। अच्छा, गोस्वामी जी ने भी कहा है बड़े सुंदर शब्द में कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कहते हैं देवताओं तक को दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य का तन मिल जाना, इससे बड़ी परमात्मा की और कृपा हो ही नहीं सकती। अगर 84 लाख योनियों की बात हमारे ऋषियों ने गुणियों ने किया है, तो 84 लाख योनि में एकमात्र ऐसी योनि है मनुष्य योनि जो अज्ञान के आवरण को छीण करके अपने आप को प्रकाशित कर सकती है।
0: प्रकाशित कर सकती है, बिल्कुल।
1: अब वो अज्ञान का आवरण आप सोचोगे कि परमात्मा के अधीन है, वो आपके प्रयत्न के अधीन है। आप बार बार इसका अभ्यास तो करो कि आप ब्रह्म हो। आप तो बार बार अपने जीव होने का अभ्यास करते करते मर जाते हो, और मरने के बाद भी भ्रम में रहते हो। जो अभी उन्होंने पूछा भ्रम किसे है, कहते हैं जीवित और मृत जीवों को।
0: जीवों को जी।
1: तो जीव भाव से मुक्त हुए बिना शिवत्व की अनुभूति कैसे होगी? और जिसे शिवत्व की अनुभूति होगी वो आचार्य शंकर जैसा गाता रहेगा, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, न बंधन है न मोक्ष है, हम तो शिव रूप हैं, शिवो हम, हमें शिव हैं।
0: बहुत ही सुंदर। तो शशिकांत जी, बहुत सुंदर चर्चा रही आज की, आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की जगत की भ्रम रूपता, सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति की। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

बनारस घराने की कुछ खास कजरी, सावन, झूला, हिंडोला, ये सारी चीज़ें आपको पारंपरिक सुना रहे हैं जो हमको हमारे गुरु विदुषी के जन्म की चीज से मिली है। पहले मिश्र पीलू में कहनवा मानो राधा रानी, ये सारी रचनाएं काव्यात्मक दृष्टि से इतनी सुंदर होती हैं, बहुत अलग अलग भाव इसमें पाए जाते हैं। ये सारा हमारे क्या कहते हैं फोक म्यूजिक से आई हुई चीज़ें हैं जिनको उपशास्त्रीय शास्त्रीय संगीत में अपनाया है लोगों ने, पर इसका मुख्य जो कहते हैं मुख्य गर्भ भाव जो है वो इसका काव्य है। तो राधा रानी से निवेदन किया जा रहा है कि कहनवा मानो राधा रानी, बाहर बहुत तेज़ वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही है, तो आपसे निवेदन है कि आप अंधर ही रहें, कृपया बाहर न जाएं। ये सारे भाव चिरकालीन है, ये आज भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ह्यूमन इमोशंस हैं ये। तो भले ही राधा रानी हो या मेरी 10 साल की बेटी हो, भाव वही रहेंगे कि बारिश में ना खेलो, जल्दी से घर आओ। तो राधा रानी से दोनों प्रकार के निवेदन किए जाते हैं। एक हमारे ब्रज में एक रचना गाई जाती है, राधे झूलन पधारो झुकी आई बदरा। तो एक तरफ ये भी निवेदन है कि आ जाओ, बादल आ गए हैं, तुम झूलने को श्री राधे रानी को पधारो, किंतु यहाँ पे निवेदन है कि बाहर मत जाओ क्योंकि बिजली चमक रही है। तो दोनों प्रकार के निवेदन है, जाने का भी और न जाने का।

0: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे रुचिरा केदार और आस्था गोस्वामी की गायन जुगलबंदी। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम में आप सुन रहे थे रुचिरा केदार और आस्था गोस्वामी की गायन जुगलबंदी। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, आइए सुनते हैं परिक्रमा।

भारत भवन में मंगलवार को मूर्तिकला और शिल्प का संगम देखने को मिलेगा। रंग दर्शनी दीर्घा पे 11 से 16 अगस्त तक रूपाभ प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। एक ही छत के नीचे युवा कलाकारों की कारीगरी देखने को मिलेगी। यहाँ 5 कलाकार नेहा शर्मा, नेहा सैयद, राज पहेड़े, शुभम वर्मा और स्वाति एम जैन कलाकृतियां प्रदर्शित करेंगी। यहाँ मिट्टी टेराकोटा से बनी सूफी दरवेश जैसी जीवंत आध्यात्मिक मूर्तियां और आधुनिक अमूर्त चित्र आकर्षण का केंद्र रहेंगे। दोपहर 2 बजे से 8 बजे तक यह खुली रहेगी।

चेतना रंग समूह की ओर से चेतना थिएटर में दो लघु नाटकों एडमिशन 2050 और लेटर बॉक्स का मंचन किया गया। हास्य व्यंग के जरिए दोनों नाटकों में बदलती शिक्षा व्यवस्था, तकनीक को बढ़ती निर्भरता, संवाद के बदलते तरीकों पर सवाल उठाए गए। वरिष्ठ रंगकर्मी आशीष श्रीवास्तव के लेखन और मार्गदर्शन में तैयार इन छात्र प्रस्तुतियों में युवा कलाकारों ने अभिनय के साथ लेखन, निर्देशन, मंच प्रस्तुति की जिम्मेदारी भी संभाली। एडमिशन 2050 में वर्ष 2050 की ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना की गई जहां बच्चों के स्कूल एडमिशन से लेकर उनके भविष्य तक में तकनीक और मशीनों की भूमिका अहम हो गई है। बच्चों के भविष्य को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा, तकनीक पर निर्भरता का हास्य के जरिए प्रस्तुत किया गया। नाटक ने मनोरंजन के साथ ये सवाल भी उठाया कि तकनीक की ये दौड़ बच्चों के बचपन और शिक्षा को किस दिशा में ले जाएगी। वहीं लेटर बॉक्स में लव लेटर, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, 13वीं के कार्ड जैसे पुराने संचार माध्यमों को पात्र बनाया गया। मोबाइल के मंच पर आते ही पुराने माध्यम खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। इसके बाद उनके बीच मजेदार नोकझोंक शुरू होती है। नाटक में दिखाया गया कि मोबाइल ने संवाद को तेज और आसान बनाया, लेकिन क्या वे चिट्ठियों जैसी आत्मीयता भी दे पाया?

मध्य प्रदेश के गांव में पीढ़ियों से संजोया गया हैंडलूम और पारंपरिक हुनर अब सिर्फ स्थानीय हाट बाजार तक सीमित नहीं रहेगा। प्रदेश के आर्टिजन्स और शिल्पकार अब अपने उत्पाद सीधे देश भर के कस्टमर्स तक ऑनलाइन पहुंचा सकेंगे। इसके लिए सोमवार को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ODOP मार्ट मध्य प्रदेश और themrignani.com डिजिटल प्लेटफॉर्म का लोकार्पण किया। पोर्टल पर 350 से अधिक बुनकर, शिल्पकार और सेलर्स रजिस्टर्ड हैं। साथ ही 2000 से ज्यादा उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इनमें चंदेरी और महेश्वरी साड़ियों से लेकर विभिन्न जिलों के हस्तशिल्प, लोककला और पारंपरिक उत्पाद शामिल हैं। यह प्रदेश का पहला सरकारी डिजिटल मार्केट प्लेस है जो एक सिलाई उत्पाद की अवधारणा पर आधारित है। वहीं themrignani.com को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के स्वामित्व वाला देश का पहला ई कॉमर्स मंच बताया गया, जो ODOP उत्पादों के लिए विकसित किया गया है। ODOP मार्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उत्पादों की बिक्री पर केवल 1% कमीशन लिया जाएगा। इससे कारीगर अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक बेच सकेंगे और कमाई का बड़ा हिस्सा उनके पास रहेगा।

कलाकारों के अभिनय में संवेदनाएं उतर आईं। ये उस वक्त जब राजा के करीबी को फंसाने के लिए उसके सलाहकार कोशिश करते हैं। मौका था राजा और राजा के नाट्य मंचन का। शेडो कल्चर एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से युवा कलाकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम 15 दिवसीय थिएटर, माइम, सबटेक्स्ट और इमिटेशन कार्यशाला के समापन पर हुआ। रंगमंच पर नए कलाकारों को मौका देने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में इमिटेशन व ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज के जरिए प्रतिभागियों ने अपने आसपास के परिवेश को समझा और संवेदनाओं को कविताओं में ढाला। समापन पर इन कलाकारों ने हास्य नाटक राजा और राज्य और कातिल कौन की प्रस्तुतियां दी। राजा और राज्य में सत्ता, ईर्ष्या और षड्यंत्र पर आधारित इस नाटक में राजा के करीबी माधव को फंसाने की सलाहकारों की नाकाम कोशिशों और माधव की सूझबूझ को हास्यप्रद अंदाज में दिखाया गया। कातिल कौन दोस्त की मौत की गलत फहमी के इर्द गिर्द घूमती कहानी में पुलिस, मीडिया और डिटेक्टिव के आने से उपजी परिस्थितियों और सरप्राइज एंडिंग ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया।

मीडिया, सिनेमा, डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ी जनरेशन एक साथ सामने आएगी। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में 18 अगस्त से वार्षिक सत्र आरंभ समारोह अभ्युदय 2026 का आयोजन होगा। ये मैं और मेरा विश्वविद्यालय थीम पर होगा। आयोजन 21 अगस्त तक जारी रहेगा। विश्वविद्यालय इस दौरान कई छात्र अपने करियर से जुड़े टिप्स साझा करेंगे, संघर्ष की कहानी बताएंगे, नए दौर की पत्रकारिता और न्यू मीडिया में कदम रख रहे नवागत विद्यार्थियों के लिए यह प्रेरक संवाद उनके भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित होगा। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उनके सशक्तिकरण के मानस भवन में राखी रनवे का आयोजन होगा। 4 दिन के इस आयोजन की शुरुआत 20 अगस्त से की जाएगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की पीएमएस योजना के तहत समृद्धि विमेन वेलफेयर सोसाइटी आयोजन करेगी। मंच नए स्टार्टअप्स, पेशेवरों, विद्यार्थियों और नवोदित इनोवेटर्स को अनुभवी संस्थापकों से जुड़ने, सीखने और नेटवर्किंग के नए अवसर तलाशने का मौका रहेगा। रक्षाबंधन से पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाना है, जिसमें ऑनलाइन ग्रुप के रूप में महिला उद्यमी जुड़ेंगी। स्वरोजगार को बढ़ाने की दिशा में इस तरह से काम होना है।

और अब हम आ गए हैं परिक्रमा के अंतिम पड़ाव पर, यानी हमारी आखिरी परिक्रमा खबर। गौहर महल में मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के 40 से 45 बुनकर शिल्पकार शामिल हुए हैं। यहाँ चंदेरी, महेश्वरी, बाघ प्रिंट, दाबू, बटिक, गोंड, पिथौरा पेंटिंग, जरी, जरदोजी, जनजातीय आभूषण और जैसे पारंपरिक उत्पाद प्रदर्शित हैं। यह प्रदर्शनी गौहर महल में है। इसका समय है दोपहर 12 बजे से और यहाँ एंट्री फ्री है।

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद। क्रांति की चिंगारी से स्वतंत्रता का अलख जगाने वाले क्रांति वीरों की यशोगाथा का कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी।
2: याद करो कुर्बानी, याद करो
1: कुर्बानी। आज हम चर्चा करेंगे क्रांति वीर वासुदेव बलवंत गोगटे की। महाराष्ट्र के शोलापुर नगर के निवासी एक विचित्र सत्याग्रह के द्वारा शासन की नीति का विरोध कर रहे थे। उन लोगों ने अपने सत्याग्रह को जंगल सत्याग्रह का नाम दिया था। झुंड के झुंड लोग नगर सीमा के बाहर जाते और जंगल से वृक्ष काटकर जुलूस के रूप में नगर भ्रमण करते थे। और इसी तरह का एक प्रदर्शन किया गया 1 मई 1930 को। अंग्रेज सरकार अपना अपमान सहन नहीं कर सकी और उसने जंगल सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। कुछ सत्याग्रही गोलियों से मारे गए, जिसके कारण जनता और अधिक भड़क उठी। न्यायालय के भवन पर आक्रमण करके उसमें आग लगा दी गई और न्यायालय के अभिलेख जलाकर भस्म कर दिए गए। शोलापुर से अंग्रेज जिलाधीश मिस्टर नाइट ने महाराष्ट्र के गृह सचिव और प्रभावी गवर्नर सर अर्नेस्ट हॉटसन से अनुरोध किया कि शोलापुर में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाए। सर अर्नेस्ट हॉटसन ने शोलापुर में तुरंत ही मार्शल लॉ लागू कर दिया। सरकार को दमन करने की अब खुली छूट मिल गई थी। जनता पर तरह तरह के अत्याचार होने लगे। तभी पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ने वाला एक युवक वासुदेव बलवंत गोगटे ब्रिटिश सरकार के इन अत्याचारों की कथाएं सुनकर विचलित हो उठता था। वो सोचने लगे कि शोलापुर में लगाए गए मार्शल लॉ का विरोध किस प्रकार किया जाए। वो इस परिणाम पर पहुंचे कि मार्शल लॉ लगाने वाले अधिकारी सर अर्नेस्ट हॉटसन को दंडित किया जाए। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक देशभक्ति गीत सुनने का, उसके बाद जानेंगे कि वासुदेव बलवंत गोगटे ने क्या योजना बनाई मार्शल लॉ का विरोध करने के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद और कार्यक्रम है 70 साल आज़ादी याद करो कुर्बानी। हम चर्चा कर रहे हैं वासुदेव बलवंत गोखटे की। वासुदेव बलवंत अपने निश्चय को कार्य रूप में परिणित करने के विचार से निज़ाम हैदराबाद के राज्य में जा पहुंचे। हैदराबाद में उनके भाई डॉक्टर थे। गोखटे ने हैदराबाद की एक दुकान से दो रिवॉल्वर और कुछ कारतूस भी खरीद लिए। जंगल में जाकर निशानेबाजी का अभ्यास भी करने लगे और शीघ्र ही उनका निशाना अच्छा हो गया। लौटकर वो पूना पहुंच गए और सर अर्नेस्ट हॉडसन को मारने के लिए उपयुक्त अवसर की तलाश करने लगे। लेकिन गोखटे को क्या मालूम था कि सर अर्नेस्ट हॉडसन 20 जुलाई 1931 को बंबई विधान परिषद के सत्र का शुभारंभ करेंगे। उन्हें मारने का ये उपयुक्त अवसर समझकर वो बंबई पहुंच गए और एक प्रवेश पत्र का प्रबंध करके परिषद में सीधे पहुंच गए। उन्हें ये जानकर बहुत निराशा हुई कि हॉडसन महोदय उस दिन वहां नहीं पहुंचेंगे और वे निराश होकर पूना लौट आए। गोखटे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हॉडसन महोदय पर हाथ साफ करने का फिर से अप्रत्याशित अवसर उन्हें शीघ्र लग जाएगा और वो भी पूना में। 22 जुलाई 1931 को उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज के फाटक पर एक अंग्रेज सार्जेंट को खड़ा हुआ देखा। वो जानना चाहते थे कि सार्जेंट वहां पर क्यों खड़ा है। उसने अपने साथियों से पूछा भी, लेकिन कोई भी उसे सार्जेंट की उपस्थिति का कारण नहीं बता सका। वो स्वयं उस गोरे सार्जेंट के पास पहुंच गए और विनम्रता के साथ उससे बातें करने लगे। गोरे सार्जेंट ने बताया कि आज ही बंबई प्रांत के प्रभारी गवर्नर सर अर्नेस्ट हॉडसन फर्ग्यूसन कॉलेज का निरीक्षण करने आने वाले हैं। फिर क्या था, गोखटे की तो बांछें खिल गई। वो दौड़े दौड़े अपने घर पहुंचे और अपने दोनों रिवॉल्वर भरकर उन्हें कोट की जेब में रखकर फर्ग्यूसन कॉलेज पहुंच गए। सर हॉडसन की रुचियों के विषय में उसे बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि वे पुस्तक प्रेमी हैं और पुस्तकालयों का निरीक्षण वे अवश्य करेंगे। उसने कॉलेज के वाडिया पुस्तकालय में गवर्नर पर

गोगटे गवर्नर महोदय को आदर दिखाने के लिए अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। वो उनके बिल्कुल सामने थे। अवसर का लाभ उठाने की दृष्टि से उसने कोट के अंदर की जेब से अपना रिवॉल्वर निकाला और एक गोली सर हॉडसन की छाती को लक्ष्य करके छोड़ दी। निशाना बिल्कुल ठीक लगा, लेकिन उसे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ना तो खून की एक बूंद निकली, ना हॉडसन महोदय के मुंह से कोई चीख। गोली खाकर हॉडसन महोदय गोगटे पर झपट पड़े और उसे नीचे गिराकर उस पर लेट गए। नीचे पड़े पड़े भी उसने एक गोली और उनकी छाती पर छोड़ दी। इतने पास से छोड़ी गई गोली का भी कोई असर नहीं हुआ। अब तो कई लोग दौड़ पड़े और गोगटे को काबू में करके उससे दोनों रिवॉल्वर छीन लिए गए। देशभक्ति गीत के बाद बताएंगे क्या हुआ गोगटे महोदय का।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद और कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी और हम चर्चा कर रहे हैं क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत गोगटे की। बलवंत वासुदेव ने हॉडसन पर गोली चलाई लेकिन उनको गोली नहीं लगी। गोगटे और हॉडसन फिर आमने सामने खड़े थे। हॉडसन ने पूछा, आपने मुझ पर गोलियां क्यों चलाई? गोगटे का उत्तर था, शोलापुर में मार्शल लॉ लगाकर आपने भारतीय जनता पर जो अत्याचार किए हैं उन्हीं के प्रतिरोध में मैंने आप पर गोलियां चलाई हैं। गिरफ्तार करके गोगटे को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उससे पूछताछ शुरू कर दी गई। उन्होंने कुछ अन्य बातें तो बताई लेकिन ये नहीं बताया कि उसने रिवॉल्वर कहां से खरीदा था। प्रारंभिक जांच करके खान बहादुर कोठाला ने गोगटे को सेशन सुपुर्द कर दिया। न्यायमूर्ति एनजे वाडिया की अदालत में गोगटे का मुकदमा शुरू हो गया। बचाव पक्ष की ओर से प्रसिद्ध वकील एलबी भोपटकर थे। इस घटना से देश भर में सनसनी फैल गई और अदालत में अच्छी खासी भीड़ हमेशा रहती थी। मुकदमे के निर्णय के दिन ज्यूरी ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि अभियुक्त ने हिज एक्सीलेंसी पर दो गोलियां चलाई और अपनी खुशकिस्मती या गोलियों के कमजोर होने के कारण हिज एक्सीलेंसी की जान बच गई। इस वक्तव्य पर गोगटे के वकील श्री भोपटकर ने अस्पष्टता का आरोप लगाया। सेशन जज महोदय ने ज्यूरी से स्पष्ट कथन के लिए कहा और थोड़ी देर के लिए ज्यूरी के सदस्य फिर उठकर चले गए। उन्होंने स्पष्ट वक्तव्य देते हुए ये बात कही, अभियुक्त गोगटे स्पष्ट रूप से अपराधी है। उसने हिज एक्सीलेंसी सर अर्नेस्ट हॉडसन की हत्या का प्रयत्न किया है। चूंकि वो विद्यार्थी है और उसकी उम्र अभी कम है, इसलिए हम उसे कम सजा दिए जाने की सिफारिश करते हैं। गोगटे को भारतीय दंड विधान की धारा 307 के अंतर्गत 8 वर्ष के कठोर कारावास का निर्णय सुना दिया गया। अवैध रूप से हथियार रखने के अपराध में भी उन्हें 2 वर्ष के कठोर कारावास का दंड मिला। उनके पक्ष में यह निर्णय भी दिया गया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। सजा भुगतने के लिए गोगटे को पूना के निकट यरवदा के केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया। दोस्तों, वसुदेव बलवंत गोगटे का जन्म 11 अगस्त 1919 को सतारा जिले के मिराज नामक स्थान पर हुआ था और उनके पिता मिराज हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। मिराज से हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद गोगटे फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ने पूना चले गए थे। गोगटे वीर सावरकर के जीवन दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे और वो शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के भी भक्त थे, जिन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी के फंदों पर झुला दिया गया था। मुकदमे के क्रम में गोगटे को बताया गया कि उनकी दोनों गोलियां हॉडसन महोदय के सीने में लगी थीं, लेकिन हॉडसन महोदय अपने शर्ट के नीचे रुपए रखने का एक चमड़े का बटुआ हमेशा रखते थे जिसमें स्टील के बटन लगे थे। स्टील के बटनों में ही गोलियां लगने के कारण हॉडसन महोदय की जान बच गई थी। गोगटे को इस कथन पर विश्वास नहीं हुआ। उनका अनुमान था कि हॉडसन महोदय कपड़ों के अंदर स्टील का जिरह बख्तर पहनकर कॉलेज गए थे, क्योंकि खतरे के उन दिनों में अपने बचाव की सावधानी रखना उनके लिए बिल्कुल ही स्वाभाविक था। गोगटे को यरवदा जेल में रखा गया और उसी जेल में कुछ दिन बाद महात्मा गांधी को भी रखा गया था। जेल के अधिकारियों ने यह ध्यान रखा कि गोगटे और गांधी जी की भेंट ना हो सके। गोगटे की जेल से मुक्ति सन 1937 में हुई और कहा जाता है दोस्तों कि स्वयं सर अर्नेस्ट हॉडसन ने गोगटे की मुक्ति के लिए प्रयत्न किया था। जेल से मुक्ति के बाद गोगटे ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा था। क्या लिखा था उस पत्र में, जानेंगे इस देशभक्ति गीत के बाद।

0: क्रांति वीरों की यशोगाथा का कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी, और आज हम चर्चा कर रहे हैं क्रांति वीर वसुदेव बलवंत गोप्टे की। वसुदेव बलवंत गोप्टे को जेल हुई और फिर बाद में महात्मा गांधी को उन्होंने पत्र भी लिखा। गांधी जी ने 24 सितंबर 1937 को वर्धा से गोप्टे के पत्र का उत्तर कुछ इस प्रकार दिया। प्रिय श्री गोप्टे, आपका पत्र पाकर मुझे बहुत हर्ष हुआ। मुझे इस बात का भी हर्ष है कि आप जेल से मुक्त हो गए हैं। यदि आप वर्धा आकर मुझसे मिलेंगे तो मुझे और अधिक हर्ष होगा। जब आप जेल में थे तो मैंने आपसे मिलने का प्रयत्न किया था, लेकिन मैं अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो सका। आपका शुभाकांक्षी मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों, जेल से मुक्त होने के बाद गोप्टे ने सर अर्नेस्ट हॉटसन को भी एक पत्र लिखा था। हॉटसन महोदय ने गोप्टे के पत्र का उत्तर दिया और 100 रुपए का एक चेक भी गोप्टे के पास भेजा था, और उस उपहार को स्वीकार करने का अनुरोध भी किया गया। गोप्टे ने उपहार को स्वीकार करते हुए सर अर्नेस्ट हॉटसन को धन्यवाद का पत्र लिखते हुए लिखा था, प्रिय सर हॉटसन महोदय, आपने जो मेरे पास उपहार स्वरूप 100 रुपए का चेक भेजा है, उसके लिए मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। मेरा कथन है कि आपने मेरे लिए 100 रुपए के रूप में 100 आशीर्वाद भेजे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके प्रति मेरे दिल में कोई दुर्भावना नहीं है। वो तो उस समय की बात थी जब विशेष परिस्थितियों के कारण मैंने आपको दंड देना चाहा था। वो अध्याय अब समाप्त हो चुका है, और अच्छा यही है कि उस घटना पर पर्दा डालकर हम लोग शेष जीवन में अच्छे मित्रों की भांति रहें। आपके प्रति समस्त शुभकामनाओं के साथ, आपका वसुदेव बलवंत गोप्टे। अपने शेष जीवन के लिए वसुदेव बलवंत गोप्टे ने वकालत का काम शुरू किया था और उसे उन्होंने जीवन भर निभाया भी। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे क्रांतिवीर वसुदेव बलवंत गोप्टे। आप सुनिए ये देशभक्ति गीत और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: याद करो कुर्बानी। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज हम लेकर आए आपके लिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, और स्वास्थ्य चर्चा में आज जिस विषय पर बात होगी वो विषय है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। और इस विषय पर बात करने के लिए विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, त्रिषा कौशिक जी। त्रिषा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: त्रिषा जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप इस फील्ड में कैसे आईं और आपकी पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से आपने पढ़ाई करी, फिर क्यों और कैसे आईं इस फील्ड में।
2: मेरा जन्म भोपाल में ही हुआ, मैं भोपाल में ही पली बड़ी हूँ। स्कूलिंग, कॉलेज सब मेरा भोपाल से ही हुआ। मैंने इंजीनियरिंग की NIT भोपाल से, फिर मैं BHEL भोपाल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में कार्यरत थी। वहाँ मैंने लगभग 7 साल काम किया ट्रांसफार्मर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट में। तो इस फील्ड में मैं ऐसे आई कि जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे। हेल्थ इश्यूज़ पहले से ही थे पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया। कॉलेज में एक बार यहाँ पे एक भोपाल में ही मार्केट है, वहाँ मैं कुछ सामान खरीद के आ रही थी तो मैं बेहोश हो गई। फिर सारे डायग्नोसिस हुए, सब टेस्ट हुए तो पता लगा मेरा हेमोग्लोबिन बहुत कम था, वो लगभग 5 था। तो वहाँ से फिर मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ट्रिगर हुए। एनीमिया तो था ही, साथ में धीरे धीरे फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी होने लगे, पैनिक डिसऑर्डर होने लगा, सीवियर सोशल एंग्जाइटी। और ये लगभग 8-10 साल, मतलब आप समझिए कि 18-19 साल से लेके लगभग 27-28 साल की उम्र तक ये चलता रहा। और फिर उसका सल्यूशन ढूंढने के लिए मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, जिसको हिंदी में सम्मोहन चिकित्सा बोला जाता है, आई केम अक्रॉस दैट। और उसमें मुझे अपनी जो भी परेशानियां थी उसका सल्यूशन मिलना शुरू हुआ। तो इस तरीके से अपने ही परेशानियों का सल्यूशन ढूंढते ढूंढते, समाधान ढूंढते ढूंढते मैं इस फील्ड में आ गई।
1: ठीक है, तो जैसे कि टॉपिक है तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है क्या, एक बार आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं।
2: देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का मतलब ये है, पास्ट लाइफ नाम से ही पता चलता है कि ये पिछले जन्म की कोई बात है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इस जीवन काल में जो हम फेस करते हैं, जो भी हमारे चैलेंजेस होते हैं, जो भी हम कठिनाइयां फेस कर रहे हैं, उसके पीछे हमको बहुत बार लॉजिक नहीं मिल पाता। जैसे आप देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान को शरीर में कुछ तकलीफ होती है, पर वो टेस्ट कराएंगे अगर मेडिकली सारी रिपोर्ट्स क्लियर होती हैं, पर इंसान तब भी तकलीफ में होता है।
1: ठीक है,
2: तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि ये इस जन्म का नहीं है, ये कुछ पहले से आ रहा है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का ये मतलब है कि जो इस जन्म, जैसे अभी का मेरा जन्म है त्रिषा का, उससे पहले मेरे जितने भी जन्म हुए हैं उसमें कहीं कुछ ऐसा हो गया जिसका प्रभाव आज मेरे इस जीवन काल पे आ रहा है। तो हम उस पास्ट लाइफ में जाते हैं, उसमें रिग्रेस पैक करते हैं सेशंस में, और फिर उसका पूरा तरीका होता है कि जो भी वहाँ ट्रॉमा हुआ या जो भी वहाँ पे चीज़ें अधूरी रह गई, जो भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे जिससे आज जीवन पे प्रभाव आ रहा है, उसको हील किया जाता है। इसीलिए ये थेरेपी है।
1: आपने थेरेपी समझाई, तो जब जो लोग इस अवस्था से गुजरते हैं जिन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो रहा होता है, या अगर हम उसके लिए मरीज शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम मानते हैं कि जिस व्यक्ति जो इस से गुजरता है, जिसे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यानी अब मैं इसको थोड़ा मतलब सरल भाषा में कहें, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आप उसे और समझाइएगा कि वो अपने पूर्व जन्म की कुछ घटनाओं को उसके जीवन में पुनर्वृत्ति होती है, इसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहेंगे।
2: रिग्रेशन का मतलब देखिए ये होता है, रिग्रेशन मतलब पीछे जाना।
1: हाँ,
2: तो मतलब जो भी इंसान है जो इस थेरेपी को अंडरगो कर रहे हैं वो अपने पास्ट लाइफ में
1: बात करेंगे। हम पहले ये जानना चाह रहे हैं कि हर तुरंत तो आदमी थेरेपी पे आया नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ सामान्य आदमी जिसके साथ ये होना शुरू हुआ है, तो जब वो आप, चलिए इस बात को ऐसे करते हैं कि जब उस जिस इंसान के साथ कोई भी इस तरह के थॉट्स उसे आ रहे हैं, तो वो स्वयं या उसके परिवार का व्यक्ति, पहली बात तो वो कैसे डायग्नोस करे इस बात को कि उसे आपकी जरूरत है, और ये जो हो रहा है वो उसके पूर्व जन्म के थॉट्स, या जो आप कह रहे हैं कि उसे इस तरह की अवस्था में आ गया, ये आप कैसे डायग्नोस करते हो कि वो इस अवस्था में है?
2: जी, तो देखिए जब भी कोई परेशानी में होता है, हम सबके जीवन में परेशानियाँ आती हैं, और हम किसी भी थेरेपिस्ट के पास तभी जाते हैं जब हम उस परेशानी से हम खुद डील नहीं कर पाते। ठीक है, अगर हमारा आज सुबह उठ के सिर दुखा तो हम उठते ही तो डॉक्टर के पास नहीं चले जाते।
1: बिल्कुल,
2: हम पहले खुद कोशिश करते हैं कि डाइट ठीक ले लें, या हम ठीक से नींद नहीं हुई है उससे ठीक हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। वैसे ही अगर कोई भी परेशानी जीवन में है, पहले हम खुद डील करते हैं। जब हमें लगता है वो चीज़ हमारे बस की बाहर हो गई है तब वो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हम बात कर रहे हैं वो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी का ही पार्ट होता है। अच्छा। एक पार्ट है उसका। अच्छा। ठीक है, तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के अनुसार कोई भी इशू लाइफ में, कोई भी समस्या ज़िंदगी में, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो कोई साइकोलॉजिकल इशू हो, या वो कोई रिलेशनशिप इशू हो, या फाइनेंशियल इशू हो, कोई भी समस्या, वो या तो पास्ट लाइफ से आती है या इस जीवन काल के किसी ट्रॉमा से आती है, जिसको टेक्निकली इनर चाइल्ड हीलिंग बोला जाता है, या वो कोई फॉरेन एनर्जी हो सकती है।
1: फॉरेन एनर्जी से क्या मायने आपका?
2: फॉरेन एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो हमसे फॉरेन है, वो हमारी खुद की नहीं है।
1: अच्छा,
2: ठीक है, तो वो किसी जिंदा इंसान या एनिमल की एनर्जी हो सकती है, या वो किसी मरे हुए इंसान या एनिमल की ऊर्जा हो सकती है। वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है।
1: अच्छा,
2: ओके, तो कोई भी समस्या, जैसा मैंने आपको बताया, तो पास्ट लाइफ या करेंट लाइफ ट्रॉमा या फॉरेन एनर्जी हो सकती है, या कोई तीनों हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं या कोई एक हो सकता है। तो इसको देखने का, इसको चेक करने का तरीका होता है कि जो समस्या किसी इंसान को हो रही है वो पास्ट लाइफ से आ रही है कि नहीं आ रही है, उसको चेक करने का एक तरीका होता है, वो हम थेरेपी में ही चेक करते हैं।
1: अच्छा, मतलब कोई
2: ऐसे देख के मैं नहीं बता सकती कि आपका पास्ट लाइफ इशू है।
1: हाँ, मतलब आप जो भी आपके, जब वो उस अवस्था का मरीज आपके पास पहुँचता है तो आपकी थेरेपी का कोई हिस्सा है जिससे आप ये डायग्नोज कर पाए।
2: बिल्कुल, और उनके ये सबकॉन्शियस माइंड से जाना जाता है, उनके अवचेतन मन से जाना जाता है कि ये जो पास्ट लाइफ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
1: अच्छा,
2: देर इज अ टेक्निक टू इट।
1: ठीक है, ठीक है, वो एक मतलब टेक्निकल बात। तो कोई एग्जाम्पल देके आप, जैसे हम व्यक्ति का नाम नहीं लेते, अगर आप अपना कोई केस याद करें जो आपके पास आए हों,
2: जी जी,
1: तो उनमें क्या आपने सिम्टम्स देखे या फिर वो थेरेपी में क्या चीजें आपके सामने आई तो जिससे आपको पता चला कि ये केस, दिस इज द केस ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन।
2: जी, जैसे मेरे पास एक, मैं आपसे केस शेयर करती हूँ, उनके पास लाइफ में सब कुछ है।
1: हाँ,
2: ठीक है, जो एक बेसिक लाइफ में होना चाहिए, ठीक ठाक पैसा है और ठीक ठाक सेहत है, हम जैसे जिस जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी जिसे बोलेंगे, जीना चाहते हैं, वो सब कुछ है, पर फिर भी वो अपनी लाइफ में जो भी प्लेजर्स होते हैं, यानी कि कहीं शॉपिंग करना, मूवी देखना, यू नो, कहीं घूमने जाना, तो वो सब वो इंजॉय नहीं कर पा रही थी ठीक से। तो जब इंजॉय नहीं कर पा रही थी तो एक लेयर उसकी पास्ट लाइफ की निकली और हमने पास्ट लाइफ में देखा कि वो उस लाइफ टाइम में उनके जो पेरेंट्स थे वो बुद्धिज्म फॉलो करते थे।
1: अच्छा,
2: ठीक है, और पेरेंट्स जो थे वो बहुत रईस परिवार के नहीं थे, मतलब बस चल रहा था जीवन कैसे भी, थोड़ा सा इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं थे। तो ये बच्चे ने डिसाइड किया, अच्छा इस लाइफ टाइम में वो फीमेल है, उस लाइफ टाइम में वो मेल थी।
1: अच्छा,
2: ठीक है, तो वो जो बच्चा था उसको लगा कि मेरे माँ बाप तो इतने स्ट्रगल से निकल रहे हैं, तो बेटर है कि मैं किसी मॉनेस्ट्री में जाके रह लूँ ताकि खाना पीना सब वहाँ हो जाएगा। तो वो बच्चा मॉनेस्ट्री चला गया अपने माँ बाप को छोड़ के। अब जब वो वहाँ गया तो उसने एक वाव ले लिया, जैसे हम बोलते हैं ना, एक खुद में ही एक शपथ ले ली कि मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करूँगा क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं कर सकते।
1: अच्छा,
2: और ये जैसे चल रहा है ये वैसे ही चलेगी। ठीक है, तो वो क्या हुआ उस लाइफ टाइम में, क्योंकि वो मॉनेस्ट्री चला गया, उसने अपना बहुत आध्यात्मिकली, अपने आप पे बहुत स्पिरिचुअली काम किया, आध्यात्मिक उसमें ये बहुत ऊपर पहुंचे, बट मरते समय उनको एक दुख था कि मैंने स्पिरिचुअली तो बहुत कुछ अचीव कर लिया पर जो जिंदगी के छोटे मोटे प्लेजर्स भी हैं उसको मैंने एंजॉय नहीं किया, बड़े तो छोड़ दो, मैंने कुछ जिंदगी को ठीक से भोगा नहीं।
1: वो यही थॉट्स उसको अपनी,
2: और वो इसके साथ मर गए।
1: अच्छा, ये पुरानी लाइफ में हुआ उसको।
2: हाँ,
1: ठीक है,
2: अब इसके साथ वो इस सैडनेस के साथ चले गए। अब हुआ क्या था कि उस लाइफ टाइम में उन्होंने एक वाव ले लिया था।
1: वाओ, यानी शपथ के बारे में बात करें, ऐसा
2: शपथ मतलब किसी और ने नहीं दिलवाई, जैसे हम अपने मन में ही एक
1: तय कर लिया था,
2: खुद तय कर लेते हैं कि मैं नहीं एंजॉय करूंगा क्योंकि मेरे माता पिता भी नहीं कर पा रहे, और उसके साथ वो जीवन खत्म हो गया। अब जब वो जीवन खत्म हो गया तो इस जिंदगी में किसी कारण से वो पास्ट लाइफ एक्टिवेट हो गई।
1: अच्छा,
2: तो देखिए होता क्या है, हमारी जितनी भी पास्ट लाइफ्स
1: मतलब वर्तमान लाइफ में भी वो उसी अवस्था में आ गए जो पहले था, जब वहां भी उन्होंने माना था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा और एंजॉय नहीं कर पा रहा, और अब भी वैसे ही आ गए।
2: हाँ, पर अभी वैसे क्यों हुए, क्योंकि सबकॉन्शियसली ये पास्ट लाइफ उनकी ट्रिगर हो गई।
1: ठीक है,
2: और ये पास्ट लाइफ एक्टिवेट हो गई।
1: हाँ हाँ हाँ,
2: हमें देखिए ये जानना भी जरूरी है कि हमारी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स होती हैं पर वो सारी एक्टिवेटेड नहीं रहती।
1: ठीक है,
2: किसी कारण से वो इस जीवन काल में पास्ट लाइफ एक्टिवेट हो गई और उनका थॉट प्रोसेस जो है, थॉट प्रोसेस इज नॉट द राइट वर्ड, वो जो पर्सनालिटी थी उस जीवन काल की वो सबकॉन्शियसली प्ले कर रहा था और वो बोल रहा था कि मैं प्लेजर्स ऑफ लाइफ या जीवन में जो भी भोगना है मैं उसको एंजॉय नहीं करूँगा क्योंकि मेरे माता पिता भी नहीं कर पाते. तो वो इस जीवन काल में भी जो कुछ भी अच्छा हो रहा था उसको जी ही नहीं पा रहे थे वो ठीक से.
1: इसको भी छोड़ दिया अच्छा होते हुए.
2: हाँ
1: अब तो यहाँ तो सब कर सकते हैं, वो जो हो गया वो तो हो गया.
2: करेक्ट.
1: लेकिन अब वर्तमान में कर सकते हैं लेकिन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि दिस इज द केस ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन.
2: करेक्ट. तो वो जैसे ही उनको पता चला अच्छा ऐसी पास्ट लाइफ थी, उन्होंने अब स्वयं से उन्होंने एक अपने
1: फिर मान लिया
2: कि मेरे को ये एंजॉय नहीं करना, तो वो इस जीवन काल को भी ढंग से एंजॉय नहीं कर पा रहे थे.
1: तो फिर वो किसी भी तौर पर आप तक पहुंचे, फिर आपने उनका ट्रीटमेंट शुरू करा होगा.
2: हाँ
1: यहीं से एक बात की निकल के आती कि ये तो वो केस है जो आपके पास आया था जैसे कि अपन ने बात करी और आप हमने बात भी कही थी कि ऐसा कोई केस बताएं आप जो आपके पास आया हो ऐसा.
2: जी
1: अगर हम नए किसी व्यक्ति की बात करते हैं अभी मान लीजिए कि मेरे मतलब काफ़ी कम लोग हैं लेकिन कई मरीज ऐसे होते हैं जो डॉक्टर तक पहुँच ही नहीं पाते. तो थोड़ी देर के लिए मान लेते कोई नया अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ से सफ़र कर रहा हो तो वो स्वयं या उसका घर का व्यक्ति कब ये तय करे कि उसे आपके पास जाना, इसके कुछ सिम्टम्स उन्हें खुद मिलते हैं क्या, या अगर हम अभी बता पाएं अपने कार्यक्रम के माध्यम से
2: जी,
1: अगर वो अपने परिवार में या व्यक्ति में ऐसा कुछ देख रहे हैं तो वो आप तक या आप जैसे किसी क्लिनिकल मतलब थेरेपिस्ट के पास पहुंच सकें.
2: देखिए क्या होता है कि लाइफ में जब भी कोई इशू होता है तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है जिसको हम हिंदी में चेतन मन बोलते हैं वो उसके पीछे रीज़न ढूंढने की कोशिश करता है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है. ठीक है मैं इसका एक उदाहरण देके आपको समझाती हूँ कि किसी के पैर बहुत दुख रहे हैं और वो बहुत टाइम से दुख रहे हैं. सब कुछ कर लिया, मालिश करवा ली, सब करवा लिया पर पैर दुख रहे हैं. अब वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या होगा, डायग्नोसिस होगा और उसके पीछे कुछ ना कुछ एक कारण निकलेगा. तो वो कारण जो समझ में आएगा कि कोई डेफिशिएंसी है बॉडी में, कोई विटामिन कम है, कुछ मिनरल कम है, जो भी है उसके कारण ये तकलीफ हो रही है. तो चेतन मन जो होता है वो हमेशा क्यों का जवाब ढूंढता है. अब लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके पीछे हम कितना भी तर्क लगा लें, लॉजिक लगा लें, हमको क्यों का जवाब नहीं मिलता. तो जब जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है, चैलेंज हो रहा है जिसके पीछे क्यों का जवाब नहीं मिल पा रहा, एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये पास्ट लाइफ से आ रहा है.
1: इससे एक बात और निकल के आती है त्रिशा जी के मतलब क्या माने हम के भाई देखिए जैसे अभी अपन ने बात करी कि कोई ये फील करता है जैसे आपने बताया कि जब उसको अपने क्यों का उत्तर ना मिल रहा हो तो सामान्यतः लोग आपके पास ही थेरेपी के लिए आ जाएं पहले, ये बेटर है या वो साइकेट क्योंकि लोग साइकेट्रिस्ट को आप जानते हैं, लोग सामान्यतः साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं. हम यही जानना चाह रहे हैं कि हमारे सुनने वाले ये समझ पाएं
2: जी जी
1: वो साइकेट्रिस्ट के पास जाएं इस थॉट्स को लेकर या पहले किसी थेरेपिस्ट से मिल लें.
2: देखिए ये जो है ये डिसीजन इंसान ही लेगा जिनको तकलीफ हो रही है. पर मैं थोड़ा सा
1: अच्छा, इसको अगर ऐसे बात करें कि इसको आप जैसे आप थेरेपिस्ट हैं तो आप इसे किस श्रेणी में रखते हैं, क्या उन्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, आप उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास भेजेंगे या केवल इसको कैसे मतलब अलग थिन लाइन होगी संभवतः. मैं इसको यूं भी कह लेते हैं कि आपके पास आने वाला जो मरीज है वो और साइकेट्रिस्ट के पास जाने वाला मरीज इनके बीच में कोई एक थिन लाइन है.
2: पूछिए ना, मैं जो जवाब दे सकती हूं दूंगी आपको.
1: वो बताइए आप क्या अंतर होगा उनमें, कैसे अंतर करें एक सामान्य आदमी और आप.
2: देखिए जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं. ठीक है. और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो ब्रेन में काफ़ी चीज़ें देखते हैं कि कौन से हॉर्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं या ब्रेन की क्या केमिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट, और वो मेडिसिन भी देते हैं. जो हिप्नोथेरेपी होता है या उसका जो एक पार्ट होता है विच इज़ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, इसमें कोई मेडिकेशन नहीं होता है और इसमें हम ऊर्जाओं पे ज़्यादा काम करते हैं.
1: अच्छा.
2: ऐसा नहीं है कि बॉडी पे काम नहीं होता, बॉडी पे भी काम होता है. पर अब आप मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे या क्वांटम फिजिक्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ऊर्जा होती है वो पदार्थ या मैटर से पहले आती है. इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि हम खुश हैं तो हमारी शक्ल अलग दिखती है,
1: बिल्कुल.
2: हम दुखी होते हैं तो हमारी शक्ल अलग दिखने लगती है. अब शक्ल तो एक ही है,
1: बिल्कुल.
2: पर क्योंकि अंदर ऊर्जा का प्रवाह चेंज हो गया तो उससे जो मैटर है जो कि हमारा चेहरा है वो अलग दिखने लगता है. तो हमेशा एनर्जी जो होती है वो मैटर को डिटरमिन करती है. तो ये जो थेरेपी है इसमें हम सारे स्तरों पे काम करते हैं. अच्छा. हम थॉट पे भी काम करते हैं यानी कि मानसिक स्तर पे, हम इमोशंस पे भी काम करते हैं यानी कि भावनात्मक स्तर पे, हम ऊर्जा के स्तर पे भी काम करते हैं जिसको एनर्जी बॉडी या प्राण शरीर बोला जाता है, और हम फिजिकल बॉडी पे भी काम करते हैं. अब देखिए किसके पास जाना चाहिए ये हमेशा जो इंसान तकलीफ में है ये उनका डिसीजन होता है. क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट है तभी वो एग्जिस्ट कर रही है. अगर उसने रिजल्ट नहीं दिए होते तो वो अभी तक गायब हो गया होता. तो ये निर्भर करता है जो इंसान तकलीफ में है उन पे. पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हिप्नोथेरेपी के जो रिजल्ट्स हैं वो अराउंड 93-94% सक्सेस रेट है इस थेरेपी का. लोग अभी भी इसके बारे में बहुत जानते नहीं हैं, पर ये बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है.
1: हम आपसे यही जानना चाहेंगे, अब आप हम एकदम थोड़ा विस्तार से भी कहेंगे आपसे, या जो आपका प्रैक्टिकल तरीका है आप ऐसे ही बताइए कि जो आपके पास मरीज आता है या आया.
2: जी जी.
1: फिर वही किसी वो डिपेंड आप जैसे भी करना चाहें किसी मरीज को ध्यान में रख के कि आपकी जो थेरेपी इसमें क्या क्या, जैसे आप साइकेट्रिस्ट के पास अगर इंसान जाता है अच्छा, तो वो कोई टेस्ट लेते हैं संभवतः और वो मेडिसिन देते हैं, फिर 10 दिन बाद चेक करते हैं, यही एक सामान्य तरीका होता है. वो आपके पास जब कोई आता है तो आपका क्या तरीका होता है, कैसे ट्रीट करते हैं?
2: जो भी हमारे पास तकलीफ लेके आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी उनकी समस्या है वो कहीं से भी आ सकती है. वो पास्ट लाइफ से आ सकती है, इस जीवन काल के किसी ट्रॉमा से आ सकती है, या वो कोई फॉरेन एनर्जी हो सकती है. कभी कभी जो समस्याएं होती हैं वो एंसेस्ट्रली भी आती हैं, जिसको हम आम भाषा में या एक पर्टिकुलर रिलीजन में हम उसको पितृदोष बोलते हैं. तो हम एक एक करके चीज़ों को रूल आउट करते हैं. तो जैसे पहले सेशन में आए तो हम कोई एक चीज़ चेक करेंगे कि ये दिक्कत तो नहीं है उनको. अगर नहीं है तो फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे. तो यूजुअली ये देखा गया है कि किसी भी एक इशू को हील करने के लिए ऑन एन एवरेज 6-8 सेशंस तो लग ही जाते हैं.
1: सेशन की हम वो जानना चाह रहे थे, अगर संभव हो तो आप इसे हमें जितनी सरल भाषा में बता पाएं कि वो सेशन किस तरह का होता है.
2: देखिए, जो सेशन होता है, पहले सेशन में तो मैं पर्सनली जो भी समस्या लेके आते हैं उनके जीवन के बारे में सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है, ताकि पता रहे कि आगे कैसे बढ़ना है. दूसरे सेशन से जब हम सम्मोहन चिकित्सा वाले सेशन शुरू करते हैं या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो उसका पार्ट होता है, हर सेशन जो होता है वो लगभग 1.5-2 घंटे का होता है. और शुरुआत में 15-20 मिनट लगते हैं, जिसमें जो भी इंसान है जिनको तकलीफ है उनको एक सम्मोहन की स्टेट में पहुंचाया जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे हिप्नोसिस के स्टेट में या ट्रांस के स्टेट में पहुंचाया जाता है, जिसमें वो अपने सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन को एक्सेस कर लेते हैं. फिर जो थेरेपिस्ट होते हैं वो कुछ कमांड देते हैं, और जैसे जैसे कमांड दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली अवचेतन मन उससे रिलेटेड चीज़ें सरफेस पर लाने लगता है. तो अगर कमांड दिया कि आपका वो भाग ऊपर आएगा जिसने इस जीवन काल में पहली बार गुस्सा महसूस किया, तो सबकॉन्शियस माइंड इतना प्रिसाइज होता है. अभी मैं आपसे कॉन्शियसली पूछूंगी आपको जिंदगी में पहली बार कब गुस्सा महसूस हुआ, आप बोलोगे मुझे याद नहीं है, पर अवचेतन मन को पता होता है. तो वो 2 साल की उम्र में हुआ, 1 साल की उम्र में हुआ, कि 4 साल की उम्र में हुआ, जब भी पहली बार गुस्सा महसूस हुआ वो सामने आके खड़ा हो जाता है वो पार्ट. तो 2 साल का बच्चा आके खड़ा हो गया सपोज, फिर उसको पूरा हीलिंग करने का प्रोसेस होता है.
1: अच्छा.
2: तो ऐसे एक सेशन जो होता है वो 1.5-2.5 घंटे का होता है. इसमें मन की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कुछ भी दवाइयां नहीं दी जाती, इसमें कुछ भी एनेस्थीशिया नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अवचेतन मन की शक्ति को लेके, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड इज यूज टू हील एनी इशू.
1: अभी जितनी बात हुई इसमें प्रश्न 2 निकल गए आपकी बात से. उसमें पहला प्रश्न मैं आपसे जाना, फिर उस पर दूसरे पाएंगे पितृदोष वाले पे. पहला ये कि जो आपका ये थेरेपी है ये क्या साइंटिफिकली प्रूवन है? अभी
2: देखिए, हिप्नोसिस का जो स्टेट है वो साइंटिफिकली प्रूवन है.
1: अच्छा.
2: तो हिप्नोसिस को हम थोड़ा सा साइंटिफिकली देखें,
1: मतलब मेडिकल साइंस भी उसका पार्ट है. मतलब
2: उसमें ब्रेन वेव्स लोअर फ्रीक्वेंसी की हो जाती है. जैसे जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारी जो ब्रेन वेव्स होती है, ठीक, वो जो होती है वो लोअर फ्रीक्वेंसी की,
1: मतलब साइंटिफिकली प्रूव है. एक तो
2: हिप्नोसिस का स्टेट साइंटिफिकली प्रूवन है. आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की अगर बात करेंगे तो उसका पीछे साइंस हम नहीं लगा सकते. पर उसके देखिए उसके क्या प्रूफ आए हैं कि बहुत लोगों ने पास्ट लाइफ में कुछ देखा,
1: ठीक है,
2: और वो जगह उन्होंने करेंट लाइफ में नहीं देखी है, ठीक है, वो गई भी नहीं उस जगह पे, पर उन्होंने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो जगह देखी और उन्हें दिखाई दिया कि यहाँ पे एक ऐसा घर है, उसके नीचे ये सामान गड़ा हुआ है, और जब उन्होंने जाके उसको फिजिकली वेरीफाई किया तो वो चीजें एक्चुअली थी. दूसरा, ये बहुत ही आम सवाल होता है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं. देखिए, एज ए थेरेपिस्ट हमारे लिए सबसे बड़ा वैलिडेशन यही होता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बाद अगर जिनको जो समस्या थी वो ठीक हो गई है,
1: सबसे इम्पोर्टेंट
2: वो सबसे बड़ा प्रूफ,
1: ये सबसे बड़ी सही बात। मतलब एक थेरेपी हमने करी वो खर, वो आपके पॉइंट में अच्छी बात। दूसरी चीज़ पूछ रहा हूँ, पितृदोष का भी आपने जिक्र करा था,
2: जी जी,
1: तो आपकी जो थेरेपी है इसमें पितृदोष पर भी आप जब ध्यान देते हैं तो क्या क्या माने ज्योतिष से जुड़ी हुई है आपकी थेरेपी?
2: देखिए ये ज्योतिष से तो नहीं जुड़ी हुई है, वो अलग ही साइंस है। यहाँ पे हम फिर से अवचेतन मन से देखते हैं कि जो भी समस्या आ रही है उसका कोई एंसेस्ट्रल ओरिजिन तो नहीं है, पितरों से तो नहीं आ रही है, और अगर वो पितरों से आ रही है तो फिर उसको भी हील करने का एक तरीका होता है। पर हम इसमें किसी का नेटल चार्ट या किसी की हम पत्रिका देख के कुछ नहीं देखा जाता है, इसमें अवचेतन मन के जरिए ही पता लगाया जाता है कि ये एंसेस्ट्रली आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
1: मतलब कुल मिला के वो हम अगर सरल भाषा में थोड़ा सा समझें तो ये हमारे श्रोता को ये बात समझ में आ पाए कि वो उनके पेरेंट्स से या पेरेंटल से किस तरह से अगर जुड़ा है तो या नहीं है।
2: जी
1: यही मुझे लगता है इसका, यहाँ
2: पेरेंटल या उनसे भी पहले कोई भी जनरेशन
1: हो जाता
2: है,
1: कभी कभी या दो तीन पीढ़ी या जो भी माने उसे,
2: कभी कभी 14वीं 15वीं जनरेशन पहले से चीजें आती हैं।
1: एक चीज और, जो आपका ट्रीटमेंट है जो थेरेपी है, इससे आपने जब देखा होगा आपके पास फर्ज करें 2 सेशन 30 सेशन या आपके पास अलग अलग तरह के लोग आए होंगे जो इससे ग्रसित हैं, तो उनको आपने 6 महीने बाद 4 महीने बाद जब एक्स टाइम के बाद देखा, तो आप देखते हैं कि उनमें परिवर्तन आया, लाभ आया, मतलब जो जिस अवस्था
2: में समझ में आ जाता है।
1: अच्छा, ये वो कहते हैं आपसे?
2: हाँ, देखिए ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे वायरल फीवर हो गया।
1: हाँ,
2: हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको दवाई देते हैं, 3 दिन का फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक का कोर्स दे दिया, वो बोलते हैं 3 दिन सुबह शाम जो भी दवाइयां हैं वो खा के आना, 3 दिन बाद बताना आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो हमको समझ में आता है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हम डॉक्टर को बताते हैं, फिर डॉक्टर या तो प्रिस्क्रिप्शन चेंज करते हैं या दवाइयां बंद कर देते हैं। तो सेम इस थेरेपी में भी ऐसे ही होता है कि हर सेशन के बाद जिनको जो समस्या थी उनको समझ में आता है कि अब मुझ में क्या इम्प्रूवमेंट आ गया है।
1: अच्छा,
2: तो ये ज्यादा मायने रखता है कि जो थेरेपी ले रहे हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं,
1: बिल्कुल,
2: और थेरेपिस्ट उनके बारे में कैसा फील कर रहा है वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि जो समस्या में थे
1: वो कैसा फील कर रहे हैं,
2: वो कैसा फील कर रहे हैं, वो मेन है,
1: बंद हो गया या कोई वाली बात।
2: करेक्ट।
1: अच्छा, अगर आप कोई ऐसी कोई अपना केस याद करें तो किस कोई, मतलब अगर आप एग्जाम्पल देके बता पाए कि परिवर्तन उनमें वो आए हों आपकी थेरेपी लेने के बाद,
2: किस तरीके का परिवर्तन?
1: आप अगर अपना कोई भी व्यक्ति को याद करती हैं कि वो आपके पास आए और आपने उनको 2 या 3 एक्स नंबर ऑफ सेशंस दिए, तो उसके बाद उनमें वो चेंजेस दिखे आपको, तो आप बता पाएंगे कि जब वो पहली दफा आपके पास आए थे तो उनके अंदर ये था और फिर 3 सेशन के बाद ये परिवर्तन आ गया या ये लाभ उनको मिला उस तरह से?
2: ऐसे काफी लोगों के साथ हुआ है, जैसे जब आते हैं तो कुछ होते हैं जो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं।
1: अच्छा।
2: और कुछ सेशंस के बाद देखो तो उनका एक कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि शरीर में कुछ तकलीफ है, पीठ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, और 1-2 सेशंस होते हैं और उसके बाद उनको नी पेन चला गया। एक का तो मैंने देखा था कि 1 सेशन में नी पेन चला गया।
1: अच्छा।
2: एक का देखा था 4 सेशन में लोअर बैक पेन चला गया।
1: अच्छा।
2: तो ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, फेस के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं।
1: कोई ऐसा कोई केस याद करके बताएं आपके, कोई विशेष जिसने आपको बहुत प्रभावित करा हो आज तक के आपने जितने सेशंस लिए, जितने केसेस आपके पास आए, उन केस में कोई स्पेशल केस आपको याद है कि उसमें इस अवस्था से फिर वो बेहतर हुए?
2: जी, ये मैंने काफ़ी जगह शेयर किया है। तो मेरे पास एक आई और उनको बहुत तकलीफ होती थी इस मायने में कि उनका सिर बहुत दुखता था।
1: अच्छा।
2: और फिर उनको एक हाथ बार सीजर्स भी हुए, वो ना बहुत टाइम से इस चीज़ से गुजर रही थी।
1: हाँ।
2: और उन्होंने बहुत जगह दिखाया पर उनको कोई
1: फायदा नहीं हो रहा था।
2: राइट। तो फिर वो आई, उनको लगभग 9 सेशंस लगे और उसके बाद मतलब उनकी एक टाइम पे तो ये स्थिति थी कि वो हॉस्पिटल में 15 दिन रहती थी, 15 दिन बाहर रहती थी, 15 दिन हॉस्पिटल 15 दिन बाहर, ये उनकी स्थिति थी। और वो जहाँ जहाँ दिखा सकती थी भोपाल में बाहर उन्होंने सब जगह दिखाया। फिर बाय गॉड्स ग्रेस ये 9 सेशंस हुए और वो आई भी इसीलिए कि अब कुछ मेरे पास सोल्यूशन नहीं बचा है तो चलो ये भी ट्राई कर लो। उनके किसी रिश्तेदार ने उनको बोला कि ट्राई करके देखो और 9 सेशंस के बाद उनकी पूरी तकलीफ ठीक हो गई बाय गॉड्स ग्रेस। और वो इतनी प्रभावित हुई माइंड के पावर से कि उन्होंने अपनी फील्ड ही चेंज कर ली। वो इंजीनियर थी, फिर उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ा और अब वो प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट है।
1: गुड, मतलब ये एक जीवंत एग्जांपल।
2: उन्होंने मुझे बिफोर आफ्टर फोटो भी दिए थे। आप पहले के फोटो जो हैं और जो बाद के फोटो हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। नाउ शी इज एबल टू लिव हर लाइफ। और आप सोचिए ना, किसी को 24/7 सिर दुख रहा है तो वो कैसे काम करेंगे। फिर एक और मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी, एक और थी जो बहुत टाइम से कंसीव नहीं कर पा रही थी और जब ये थेरेपी हुई जिस दिन ख़त्म हुई उसके 3-4 महीने बाद उनका मेरे पास मैसेज आया कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया है.
1: गुड.
2: एंड उनके कुछ ट्रीटमेंट्स थे, IVF थे, IUI थे, वो भी कॉन्स्टेंटली फेल हो रहे थे. और इसके बाद शी वॉज एबल टू कंसीव. तो माइंड का इतना पावर होता है. हम सब बचपन से सुनते आते हैं कि मन में बड़ी शक्ति है, मन में बड़ी शक्ति है. पर जब प्रैक्टिकली मैंने अपने जीवन में ये देखा है अपने साथ और इतने लोग जो आते हैं, कि मन की क्या शक्ति होती है वो मुझे एक्चुअली सामने सेशंस में दिखाई देता है. कि ये सुनना अलग बात है और उसको जब एक्सपीरियंस करो तो समझ में आता है कि क्या पावर है हमारे मन का.
1: लोगों को इस चीज़ को लेके ये जो ये समस्या है या इसका ट्रीटमेंट, दोनों की बताइएगा आप, कि कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, तो अगर हैं तो आम भ्रांतियाँ क्या हैं?
2: पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को लेके सबसे बड़े भ्रांति, सबसे बड़ा क्वेश्चन रादर ये होता है, उन्हें लगता है हम पास्ट लाइफ में तो अटक के नहीं रह जाएंगे. पर ऐसा नहीं होता.
1: अच्छा,
2: आज हम बैठे हैं और मेरे साथ 15 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जिसको मैं याद करके आज भी रो रही हूँ. तो मैं क्या 15 साल की उम्र में अटक के तो नहीं रह गई? मैं फिजिकली तो यही हूँ. तो वैसे ही जो माइंड होता है वो थोड़ा और पीछे चला जाता है, पास्ट लाइफ में चला जाता है. तो उनका मन ही बस ट्रैवल कर रहा है, फिजिकली तो वो यही है, तो वो वापस फिजिकल बॉडी में ही आएंगे. तो पास्ट लाइफ में कोई भी अटक के नहीं रहता है.
1: ठीक है,
2: ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है. दूसरा ये होता है कि पास्ट लाइफ सही में होती है क्या? बहुत बार ऐसा होता है कि थेरेपी के बाद लोग उठ के बोलते हैं ये हमारा इमेजिनेशन तो नहीं था, हमारी कल्पना तो नहीं थी. तो मैं उनको बोलती हूँ कि इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपको लगता भी है कि आपका इमेजिनेशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हीलिंग पूरी सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से हो रही है. और सबकॉन्शियस माइंड के लिए रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं होता.
1: अच्छा,
2: इसलिए आप जब इसके थोड़ी और डिटेल में जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि कुछ विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, लोग विजुअलाइज करते हैं जिंदगी में कोई चीज पाने के लिए, वो कभी कभी काम कर जाती है. क्यों काम करती है?
1: इसी का हिस्सा हो गई वो,
2: क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो सबकॉन्शियस माइंड को लग रहा है वो अभी एक्चुअल में है और वो उसको ले आता है फिर आपके जीवन में.
1: कई बार कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि वो इंसान को लगता है कि ये तो मेरे साथ पहले भी हुआ है. रीजन नहीं निकाल पाता उसे, फील होता है अचानक. जैसे अपन एग्जांपल दें कि अभी मान लीजिए मुझे या आप में, हम दोनों में से किसी को थॉट आए कि मैंने तो ये इंटरव्यू पहले करा है या हम इसी तरह बैठे थे.
2: बिल्कुल,
1: ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं सामान्यतः सबके साथ.
2: डेजा वू बोला जाता है.
1: हाँ, उसका आपने साइंटिफिक, हम तो ये मानते हैं पता नहीं क्यों हो रहा है ये
2: जी,
1: ऐसे आता है. आज आपसे बात करने से ये बात समझ में आई कि नहीं ऐसा कुछ सभी के साथ होता है. मुझे लगता हुआ कि मेरे साथ होता है या हमारे सुनने वाले श्रोता को लगता है शायद उनके साथ होता अकेले.
2: जी
1: ठीक है. एक बार और के जो श्रोता हमारे अभी पहली बार सुन रहे हैं इस टॉपिक को या अभी इसके, कई सारे ऐसे हमारा मानना ऐसे लोग होंगे जो उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस या इसको एक इस सब्जेक्ट के तौर पे नहीं सुन पाए हों, उन्हें आप क्या सलाह देंगी?
2: मैं ये सलाह दूंगी कि अपने जीवन को अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ जीना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब हम जागरूकता के साथ अपने जीवन को जीने लगते हैं तो हमको समझ में आने लगता है कि हमारे अंदर क्या क्या खामियां हैं. ठीक है, या हमारे जीवन में क्या क्या तकलीफें हैं. और वो जागरूकता अगर मेंटेन रहती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम सुबह सो के उठे या रात को, जब हम वो एक स्टेट होता है जब हम पूरे सोए भी नहीं है, हम पूरे उठे भी नहीं है, तो हमको ना एकदम से क्लिक करता है कि हमारे जीवन में जो तकलीफ हो रही है उसमें हमको ये चीजें अप्लाई करनी चाहिए. और हम वो अप्लाई करते हैं तो हमें सोल्यूशन भी मिलता है. पर ये सब तभी पॉसिबल हो पाता है कि हम जब अपनी जिंदगी को अवेयरनेस के साथ जीते हैं तो हमें समझ में आता है हम क्या हैं, क्या नहीं है, हमारे क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है. हम जैसे हम फॉरेन एनर्जी की बात कर रहे थे, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बिहेवियर होते हैं जो हम खुद नहीं है, वो कुछ और हमारे अंदर से एक्ट कर रहे हैं. तो ये तभी पकड़ में आता है जब हम अवेयर हैं. तो
1: मैं है या थेरेपिस्ट के पास पहुंच जाए ऐसा कह सकते हैं?
2: देखिए, थेरेपिस्ट के पास भी हम तभी पहुंचेंगे जब हम अपनी परेशानी को लेके अवेयर होंगे.
1: अब देखिए, ये अवेयर होने वाली बात है, ये तो खुद इंसान
2: मुझे पता होना चाहिए ना, मेरा सिर दुख रहा है तब तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी. अगर मैं उसको इग्नोर करती रहूं, आप समझ रहे हैं?
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझे.
2: तो पहले अपनी तकलीफ तो पकड़ में आनी चाहिए ना, वो भी तभी आएगी जब आप जागरूक हैं. अब देखिए, पैर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, बहुत फिजिकल है,
1: दिख भी रहा है,
2: पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. ये गुस्सा जो है इसको आप मेजर नहीं कर सकते. मुझे दूसरों से बहुत जलन है. या मैं अपने जीवन में मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो सो कॉल्ड फ्रेंड्स अब ऐसे हैं,
1: जैसे आपने सबसे पहले केस की बात कही थी, आपने बताया था कि वो इंसान ने खुद ही वाओ ले लिया, खुद ही ने शब्द मान लिया कि मैं तो अब खुश रह नहीं सकता हूँ, उस तरह की बात।
2: बिल्कुल, तो अगर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और सब बस मतलब से ही दोस्ती रखे हुए हैं, तो मेरे को पहले तो पता चलना चाहिए ना कि मेरे जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मेरा फायदा उठा रहे हैं। और वो कैसे पता चलेगा? जब हम जागरूक होंगे।
1: बिल्कुल, मतलब अभी तक का जो चर्चा हुई आपसे, ये हमारा टॉपिक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी अपने आप में एक तो वास्ट टॉपिक है,
2: काफी वास्ट
1: उसको
2: है।
1: समझना और फिर उसको इतनी सरल भाषा में हमने प्रयास पूरा करा और हमें आपका सहयोग मिला कि आपने उसको हमें समझाया कि क्योंकि इसको पहले तो समझना ही बड़ा मुश्किल है और फिर लग भी रहा था कि इस पर क्या ही बात होगी, लेकिन जो आपसे बात हुई अभी तक की उससे मुझे लगता है कि हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी ये काफ़ी हद तक समझ में आया होगा कि इस तरह की समस्या होती है। क्योंकि अभी जो आपसे बात करी इसके पहले हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता होगा, आपसे बातचीत होने के बाद समझ में आया कि ये तो बड़े आम, मतलब आम सी चीज़ें हैं, आम सी समस्याएं हैं जो लगभग लोगों के साथ होती है और लोग खुद ही उसको कहीं ना कहीं सुलझा भी लेते हैं, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहां उन्हें थेरेपिस्ट तक जाने की आवश्यकता पड़ती है। और अब उस थेरेपी में हिप्नोटिज्म कहेंगे ना, वो एक उसका ही हिस्सा है,
2: हिप्नोथेरेपी का हिस्सा है, रिग्रेशन थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी,
1: तो वो एक थेरेपी का ये हिस्सा है, उस तरह से ट्रीट करा जा सकता है, अलग अलग सेशन से करा जा सकता है और आदमी सामान्य जीवन वापस से जी सकता है। ये कोई बहुत बड़ी ऐसी बीमारी नहीं है या सिर्फ परेशानी के साथ ही इसके साथ अपना समय गुजारा जाए, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, एक थेरेपिस्ट के पास उसकी मदद ली जाए।
2: बिल्कुल
1: बिल्कुल तुषार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कोशिश करेंगे आगे भी इस तरह के टॉपिक्स, इस तरह के विषय हम अपने कार्यक्रम में लेकर आते रहेंगे और इस विषय पर भी आगे भी हम प्रयास करेंगे और जितनी रोशनी डाल सकें, चाहे तुषार जी की मदद से और इनके तरह के और भी कई थेरेपिस्ट की तरफ से, इसको और विस्तार से भी आगे प्रयास करते रहेंगे। तो ये था हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आज हमने बात करी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी पर। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग था कार्यक्रम में सतीश बाथम का, और मैं हूं आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी आपके साथ। और अब मुझे और त्रिषा जी को दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: आपने अब तक जाना कि कैसे काशीपुर का घर छोड़ने पर सुरेंद्रनाथ मित्र महाशय की सहायता से नरेंद्रनाथ को बरहापुर का एक टूटा फूटा घर मिला और वहीं उन्होंने प्रथम रामकृष्ण मठ की स्थापना की। कई तरुण सन्यासी उनके साथ आए और जब तब के दिन बिताने लगे। वे दिन उन सभी के लिए बेहद कष्टप्रद थे। कई युवक परिवार के लोगों को ताड़ना से घर लौटना पड़ा। नरेंद्र पहले तो अपने घर के मामलों को लेकर के बहुत व्यस्त थे। ज्यों ही उन्होंने थोड़ी फुर्सत पाई और सन्यास का आदर्श पालन करने के लिए स्वयं को मुक्त अनुभव किया, उस समय जो युवक अपने घर लौट करके पढ़ने लिखने में लग गए थे, उन्हें वरानगर ले जाने के लिए, उनके मन में वैराग्य जगाने के लिए वे कटिबद्ध हो गए। घंटों उनके साथ वे तर्क वितर्क में रत रहकर अपने उद्देश्य को सिद्ध करना चाहते थे।
1: नरेंद्र नाथ की उद्दीपनकारी वाक पटुता से उनके गुरु भाइयों के मन में पहले की बात जल उठती और उस समय के लिए सांसारिक वासना प्रभावहीन हो उठती। कोई कोई नरेंद्र की पुकार पर अध्ययन आदि छोड़कर वराहनगर जाते, किंतु व्यथित नहीं थे। घर लौटकर नरेंद्र नाथ के फिर आने के भय से जब वे सब बंद कमरे में अध्ययन में निहित रहते, तभी नरेंद्र नाथ अचानक आंधी की तरह उपस्थित होकर घर के दरवाजे को हाथ से थपथपाकर दरवाजा खुलवाते और गुरु भाई को राजमार्ग पर खींचकर अभिभावक के पीछे अग्निमयी वाणी का स्रोत बहा देते। वे कब किसके घर उपस्थित होते, इसका कोई ठिकाना नहीं था।
0: आठपुर के बाद त्याग की आकांक्षा तीव्र होकर स्थिति दूसरी तरह हो गई। क्रमशः शशि, निरंजन, राखाल, शरद, शारदा और सुबोध मठ में ही रहने लगे। कुछ महीने बाद ही वृंदावन से लौटकर लाटू ने भी योगदान किया। हरि के आने में भी देर नहीं हुई। श्री माँ के वृंदावन से लौट आने पर योगेंद्र का भी मठ जीवन शुरू हो गया। गंगाधर सन 1887 ईस्वी के फरवरी महीने में गृह त्याग कर हिमालय और तिब्बत का भ्रमण करने निकले, इसलिए वे स्थायी रूप से मठ में 1890 ईस्वी के मध्य में आए। और सबके अंत में स्वामी विवेकानंद के अमेरिका से लौटने के बाद हरिप्रसन्न आए थे। एक और व्यक्ति का नाम लेना आवश्यक है, वे हैं तुलसी। ये श्री रामकृष्ण को एकाधिक बार देखने पर भी उनसे घनिष्ठ रूप से नहीं मिले और इसलिए अपने को श्री रामकृष्ण का शिष्य नहीं कहकर स्वामी विवेकानंद के शिष्य के रूप में अपना परिचय देने में ही गर्व का अनुभव करते थे।
1: समाज उन दिनों शंकराचार्य द्वारा अनुमोदित वैदिक संन्यास और अद्वैत वेदांत से भलीभांति परिचित नहीं था। वे लोग महाप्रभु श्री चैतन्य द्वारा प्रवर्तित श्रेवस्थारी बैरागी संप्रदाय को जानते थे। गंगा सागर के यात्री या जगन्नाथ के यात्री जटाजूटधारी नागाओं अथवा सामान्य गेरुआ वस्त्रधारी दो चार सन्यासियों को उन्होंने देखा था। चैत्र संक्रांति के मेले के सन्यासी और विरल मुट्ठी भर कौल सन्यासियों को वे पहचानते थे, किंतु शिक्षित मध्य वर्गीय परिवार के युवक वृंद दल के माता पिता को रुलाकर और सांसारिक संपन्नता को ठुकराकर संघबद्ध रूप से मठ जीवन यापन करेंगे तथा अनुष्ठान के रूप में एकमात्र गुरु पूजा के सहारे वेदांत सम्मत साधना मार्ग में अग्रसर होंगे। ये एक नई बात थी। इस धारा की पुष्टि होने में समाज का कल्याण होने के बदले अकल्याण होने की आशंका थी, इसीलिए पहली अवस्था में श्री रामकृष्ण मठ लोकप्रिय नहीं हुआ।
0: मोहल्ले के लोग उन दिनों मठ के विरोध में थे, झूठी निंदाएं किया करते थे। जब साधुगण गंगा स्नान करने जाते तो दुष्ट लड़के बगुले दिखाते और कहते, अरे सब राजहंस जा रहे हैं। मोहल्ले के लोगों का संदेह कितना प्रबल और अश्लील था, इसका परिचय एक घटना से मिलता है। स्वामी विवेकानंद के गले की आवाज नारियों की भांति कोमल थी। वे जब गाते तो दूर से सहसा नारी के स्वर का भ्रम होता। एक रात वे मठ में गाना गा रहे थे, उसी समय मोहल्ले के कुछ लोग यह निश्चय कर बैठे कि निश्चित ही मठ में किसी स्त्री का आगमन हुआ है। ऐसे भ्रष्टाचारों को हाथों हाथ प्रमाणित कर भ्रष्ट साधुओं को समुचित दंड देने की मंशा से कुछ लोग इस प्रयास में अग्रसर हुए और बाहरी दरवाजा बंद रहने के कारण दीवार फांदकर संगीत सभा में अचानक उपस्थित हो गए। किंतु उन्होंने देखा कि ये तो नारी नहीं पुरुष है। इसके बाद स्वयं ही पराजित होकर सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा याचना की। कहने की आवश्यकता नहीं है कि साधुओं ने लेश मात्र क्रोध या शोक प्रकट किए बिना उन लोगों को हंसते हुए विदा की।
1: नरेंद्र नाथ और उनके साथी इन घटनाओं से विचलित नहीं होते थे। वे अपने अपने कामों में व्यस्त रहते और वक्त मिलते ही दानव कमरे में इकट्ठा होकर नरेंद्र रचित भजन गाते।
0: हम पहले भी जान चुके हैं कि मठ में सन्यासी कितनी तकलीफ और भुखमरी सहते थे। भिक्षा के सहारे भोजन मिलता था, वह भी 1 जून का। सन 1890 ईस्वी के 13 अप्रैल को बलराम बाबू को और 25 मई को सुरेंद्र बाबू के देहांत पर स्थिति अत्यंत संकटजनक हो गई थी। ऐसी कि एक बार मठ के खर्च के लिए शशि को शिक्षक का कार्य करना पड़ा था। हाँ, यह कुछ ही दिनों तक करना पड़ा था। विपत्ति के उन दिनों में गिरीश बाबू ने निसंकोच भाव से दान दिया था।
1: वराह नगर की दरिद्रता को नरेंद्र सहन नहीं कर पाते थे। कभी कभी तो शशि से झगड़ा भी हो जाता था।
2: शशि, मुझसे ये दुर्दशा और देखी नहीं जाती। छोटे छोटे सन्यासियों को हम भरपेट खाना भी नहीं दे पाते।
3: आप नाहक परेशान हो रहे हैं। किसी ने कुछ कहा क्या?
2: कोई कहेगा तब मुझे मालूम पड़ेगा। अंधा तो नहीं हूं मैं। दिनों दिन बेचारे नमक और चावल खा रहे हैं।
3: क्यों? कभी कभी कुंदरू के उबले हुए पत्ते भी तो मिल जाते हैं।
2: कुंदरू के पत्ते, वे बेल भी तो बाकी नहीं बचे, सब तो हम खा गए। ऐसे बोल रहे हो जैसे रोज उन्हें राजभोग परोसा जाता है।
3: सन्यासी हैं, थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा ना।
2: पहले जिंदा तो रहें, फिर कष्ट भोग लेंगे। नहीं नहीं शशि, ऐसा ज्यादा दिन नहीं चल सकता। ये आश्रम बंद कर दो।
3: परेशान ना हो भाई, सब ठीक हो जाएगा।
0: सुरेंद्र नाथ जब तक थे तब तक वे मठ की खोज खबर रखते थे। असल बात यह थी कि सभी सन्यासी भद्र संतान थे। अपने अभाव की बात दूसरों से कहना उनके लिए लज्जा की बात थी। और श्री रामकृष्ण के नाम पर जिन्होंने गृह त्याग किया है, वे क्या इतना भी उनके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते? भगवान ने तो स्वयं ही गीता में प्रतिज्ञा की है, योग क्षेम वहम्यहम्। फिर भी सुरेंद्र नाथ सामर्थ्य के अनुसार खोज खबर रखते और व्यवस्था भी करते। दूर रहने के कारण सर्वदा आना जाना उनके लिए संभव नहीं था। दूसरी ओर रोग से शय्याग्रस्त हो जाने के कारण वह असंभव हो गया था।
1: सब सोचकर उन्होंने छोटे गोपाल को ये कहकर मठ में रहने के लिए राजी करा लिया था। मैंने तुम्हारे परिवार के सारे खर्चे अपने कंधे पर ले लिए हैं। तुम मठ में रहकर घर के कार्य आदि करना और नित्य या एक दिन के बाद मेरे पास आकर मठ के भाइयों का समाचार देना। खासकर ये ध्यान रखना कि ज्यों ही उन लोगों के भोजन आदि का अभाव देखो त्यों ही मुझे ये मालूम हो जाए। गोपाल ने परमहंस देव का सानिध्य पाया था एवं सन्यास ग्रहण करने की भी उन्हें इच्छा थी, किंतु दो छोटे छोटे भाइयों और विधवा माता के भोजन वस्त्र का भार कंधे पर रहने के कारण वो नहीं हो पाया। अब भोजन वस्त्र की दूसरे प्रकार से व्यवस्था होगी और वे सभी साधु रूप में मठ में रहने का सुयोग पाएंगे। ये देखकर गोपाल सुरेंद्र बाबू के प्रस्ताव से सहमत हुए थे।
0: मठ में जो ही अभाव या अनाहार की स्थिति होती, वे सुरेंद्र बाबू को सूचित कर देते और सुरेंद्र बाबू भी उन्हें तभी आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपए दे देते। साथ साथ सतर्क कर देते कि उनका नाम प्रकट ना होने पाए, क्योंकि वे जानते थे कि बात फैल जाने पर मठ के भाईगण उनकी सहायता लेने में संकोच करेंगे। गोपाल उन वस्तुओं को

0: जो बंगाल में प्रचलित है उसे छोड़कर कुछ नहीं खाएंगे। पत्नी ने सोचा, ये तो पेट के मरीज हैं, संभव था आज रोग बढ़ गया है। किंतु बाद में ये जानकारी मिली कि मठ के भाइयों की दुरावस्था देखने के बाद उन्हें और खाने में रुचि नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसके बाद बलराम बाबू सुविधानुसार बीच में कुछ साग सब्जी और भोजन की सामग्री आदि मठ में भेज दिया करते थे।
1: अभाव के इन दिनों में एक तीसरे मित्र का भी आगमन हुआ था। उनका नाम था योगेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। वे बहुत फुर्तीले थे और बहुत कहानियां जानते थे। काफी उदार स्वभाव था, खाने और खिलाने में प्रेम था। लोग कहते कि वे खा खा कर दरिद्र हो गए थे। मठ के सभी लोगों से वे प्रेम करते थे। आगे चलकर जब कई अवसरों पर मठ में खाने के लिए प्राय कुछ भी नहीं रहता तो यह जान लेने पर बाजार से स्वयं सामान खरीद कर ला देते थे।
0: मठ में वस्त्र आदि भी अत्यंत दरिद्र के समान थे। पहनने के लिए प्रत्येक को मिला एक कौपीन और एक गेरुआ चादर। बाहर जाने के समय आवश्यक होने के कारण सबके लिए एक मात्र उजली धोती और एक उजली चादर दीवार पर टंगी रहती थी, जिसको जब जरूरत होती वे उसे ले जाते। गृह सज्जा के उपकरणों में प्रत्येक के लिए एक चटाई पर बिछी चादर, कुछ जप मालाएं, दीवार पर लगी कुछ श्री राम कृष्ण और देवताओं की तस्वीरें और मित्रों के द्वारा दी गई प्रायः 100 के लगभग बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी की पुस्तकें थी। ये व्यवस्था बहुत दिनों तक बनी रही थी। सन्यासी मठ में केवल कौपीन पहनते, बाहर जाने के समय चादर धारण करते, महीने में एक बार सिर, मूछ और दाढ़ी मुंडवाते। सबके जो थोड़े बहुत कपड़े लत्ते थे फिर रस्सी की अरगनी पर लटकते रहते। कोई बक्सा नहीं था। विवेकानंद ने लिखा है,
2: श्री राम कृष्ण के देह त्याग के बाद हम वराहनगर के मठ में कितना जप ध्यान किया करते थे। सुबह 3 बजे सब जाग उठते थे। शौच आदि के बाद कोई स्नान करके और कोई कपड़े बदलकर मंदिर में जाकर जप ध्यान में डूब जाया करता था। उस समय हम लोगों में क्या वैराग्य का भाव था, दुनिया है या नहीं इसका पता ही न था। शशि 24 घंटे श्री राम कृष्ण की सेवा करता रहता था, घर की गृहिणी की तरह। भिक्षा मांगकर श्री राम कृष्ण के भोग आदि की और हम लोगों के खिलाने पिलाने की सारी व्यवस्था वो स्वयं करता था। ऐसे भी दिन गए हैं जब सवेरे से 4-5 बजे शाम तक जप ध्यान चलता रहता था। शशि फिर खाना लेकर बहुत देर तक बैठा रहता और अंत में किसी तरह से घसीट कर हमें जप ध्यान से उठा दिया करता था। आहा, शशि की कैसी निष्ठा देखी है।
1: हाँ, यह बात निश्चित ही स्वीकार करने योग्य है कि श्री रामकृष्ण संघ की स्थापना के पीछे गुरु भाइयों का सम्मिलित प्रयास तो था ही, प्रत्येक की निजी देन भी थी। उस प्रारंभिक अवस्था में शशि की निपुणता अपूर्व थी। हमने देखा है कि नरेंद्रनाथ ने भी इसे स्वीकार किया है और एक बार उन्होंने अमेरिका में लिखा था,
2: आहा, शशि ने मठ को कैसा जागृत बना रखा है। उसकी निष्ठा एक बहुत सुदृढ़ आधार है। मठ के भाईगण जब ईश्वर प्राप्ति की आकुल आकांक्षा से इधर उधर तीर्थ दर्शन को जाते या दूर दूरांतर में तपस्या में लीन रहते, तब शशि ही मठ की ठाकुर पूजा आदि को लेकर अटल अचल सुमेरु की भांति वराहनगर में रहा करते। अभाव के दिनों में सन्यासी गण भिक्षा के लिए बाहर निकलते, किसी दिन केवल थोड़ा सान्न लेकर या किसी दिन खाली हाथ लौटते। ऐसे में एक दिन 4 साधु लौटकर जब श्री राम कृष्ण के भोग के लिए कुछ नहीं दे पाए, तब निश्चय किया गया कि उस दिन भूखे रहकर दिन भर भजन किया जाएगा। जैसी बात वैसा कार्य। किंतु श्री राम कृष्ण के भोग की व्यवस्था नहीं कर पाने से शशि को तो शांति नहीं थी। दूसरों को बिना बताए वे एक परिचित पड़ोसी के घर गए। उस घर के अन्य सब लोग मठ के विरोधी थे। अतः उस पड़ोसी मित्र ने शशि का वृतांत सुनकर खिड़की से एक पाव चावल, कुछ आलू और थोड़ा सा घृत दिया। उस दिन उसी से श्री रामकृष्ण को भोग दिया गया। अंत में प्रसाद के कुछ पिंड बनाकर शशि ने दानवों के घर में प्रवेश किया और भजन में निरत साधुओं में से प्रत्येक के मुख में एक एक पिंड घुसा दिया। साधुओं ने खाकर आनंद पूर्वक पूछा, ये अमृत तुझे कहां मिला शशि भाई? वे मानो मटकी मां थे। सबको सुख सुविधा देना, सभी विषयों की देखभाल करना और सारे सामानों को ठीक से रखना उनका स्वेच्छा से स्वीकृत कर्तव्य था और श्री रामकृष्ण की सेवा का प्रत्येक अंग जिससे त्रुटिहीन रूप से संपन्न हो उस ओर भी उनकी तीक्ष्ण दृष्टि रहती थी।
0: पैसे के अभाव के कारण नौकर रखना संभव नहीं था, इसी से गृहस्थी के सारे कार्य उन लोगों को अपने हाथों से करना होता था। झाड़ू लगाना, पाखाना साफ करना, बर्तन मलना, पानी ढोना, यहाँ तक कि बीच बीच में रसोई आदि भी बनानी होती थी। नरेंद्र नाथ को तनिक भी अवकाश ना था। वे ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग कर गुरु गंभीर ध्वनि से गुरु भाइयों को पुकार कर कहते, हे अमृत के पुत्रगण, अमृत का पान करने के लिए जागो जागो। फिर जप ध्यान आदि समाप्त कर वे सब एक कमरे में सम्मिलित हो जाते। नरेंद्र नाथ किसी दिन गीता का तो किसी दिन टॉमस कैंपिस लिखित ईशानुसरण का पाठ करते, कभी उन्हें अनुप्रमाणित करने के लिए कहते,
2: कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
1: या कभी गीता बंद करके कह उठते,
2: क्या होगा गीता पाठ करके? गीता शब्द 10 बार कहने से जो होता है वही गीता गीता गीता, त्यागी त्यागी त्यागी। चाहिए त्याग, कामिनी कंचन का त्याग, त्याग ही गीता का आदर्श है।
1: इसके बाद दोपहर दैनिक कार्य, जप ध्यान, सत्संग आदि में बिता देने पर तीसरे पहर में शशि उन लोगों को खींचकर भोजन करने के लिए बिठा देते। थोड़ा विश्राम करने के बाद फिर शाम तक इसी प्रकार 2 घंटों तक चलने वाली श्री रामकृष्ण की आरती शुरू होती और सभी उसमें सम्मिलित होते। आरती के समाप्त होने पर छत पर बैठकर देर रात तक सीताराम नाम गान या दूसरे प्रकार के भजन आदि चलते रहते।
0: सभी समान भाव से सभी कार्यों में सहयोग करते। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई एक अध्ययन आदि में ही प्रायः सारा समय बिता देते और घर के कामों में असुविधा होते देखकर जब आलोचना काफी मुखर हो जाती तब नरेंद्र नाथ ने एक दिन क्षुब्ध होकर कहा,
2: तुम्हारा एक भाई यदि पढ़ने में ही मन लगा रहा है तो इतनी जलन क्यों? लाओ तुम्हारे सारे बर्तन, मैं अकेला मांज दूं।
0: व्यक्तिगत आलोचना भी बंद हो गई।
1: नरेंद्र नाथ के संगीत प्रेम की बात हम पहले भी कह चुके हैं। उनका उत्साह दूसरों में भी संचारित होता। शरद उनसे संगीत सीखते और काली सीखते वाद्य वादन, और उनके संगीत और संगत साथी अन्य कई लोग होते, खासकर बूढ़े गोपाल और तारकनाथ। गोपाल दादा बाजा तबला बजाते। पखावज बजाने वाले की कमी दूर करने के लिए काली ने उस्ताद की सहायता से यह विद्या थोड़ी बहुत सीख ली थी। बीच बीच में भक्तों के घर पर भी नरेंद्र नाथ के गाने की मजलिस लगती है।

0: भूतों का कमरा कभी कभी देश विदेश की अनेक विचारधाराओं के विवेचन, विश्लेषण, ग्रहण, त्याग, तुलना इत्यादि से झूम उठता। कांट, हिगेल, स्पेंसर आदि दार्शनिक गण, यहाँ तक कि नास्तिक भौतिकवादी और अज्ञेयवादी भी इस वाद विवाद से नहीं बचते। गीता, उपनिषद, तंत्र, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध मत, वैष्णव मत, शैव मत आदि अनेक विषय इस सभा के विवेचन प्रसंग में आ जाते थे। वस्तुतः वो घर एक शिक्षा केंद्र या महाविद्यालय में परिणित हो गया था और इस केंद्र के मध्य मणि थे नरेंद्रनाथ। विवेचना शुरू करने पर वे इस प्रकार किसी एक पक्ष में झुकाव दिखाते कि प्रायः अन्य सभी प्रतिपक्ष अविलंबन करने को विवश हो जाते। वे भी तर्क प्रस्तुत कर उन लोगों के मत का खंडन करते। फिर जब वे सब तर्क नहीं ढूंढ पाते तब उन लोगों के पक्ष को ही अपने मत से काट कर छिन्न छिन्न कर देते।
1: यदि यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर है कि नहीं, तो नरेंद्रनाथ पूर्व पक्ष ग्रहण कर लेते और कहते ईश्वर नहीं है, वह मन की कल्पना मात्र है। फिर वे ही बाद में प्रमाणित करते कि ईश्वर ही एकमात्र वस्तु है। इस प्रकार शंकर का दर्शन कभी नरेंद्र के पूर्व पक्ष के आघात से मिट्टी में मिल जाता और दूसरे ही क्षण उसके उत्तर के पक्ष में तर्क बल से खड़ा हो जाता था। साख्य, योग्य, न्याय, वैश्विक, मीमांसा और वेदांता, इस षट दर्शन में नरेंद्र विलक्षण पंडित तो दिखते ही साथ साथ दूसरों का ज्ञान भंडार भी समृद्ध करते। फिर हिंदू धर्म के विभिन्न शाखाओं की रीति रिवाज, पूजा साधना आदि की भी चर्चा करते।
0: हीनयान और महायान, इन दोनों संप्रदायों की नव प्रकाशित अनेक पुस्तकों का उस अध्ययन कक्ष में अध्ययन और विवेचन होता। भारत के मध्यकालीन धार्मिक नेताओं के जीवन और उपदेशों से वहाँ घनिष्ठ परिचय प्राप्त हुआ। तदुपरांत ही ईसा मसीह ने उन लोगों के हृदय को आकृष्ट किया। साथ साथ बाइबल और ईशानुसरण आदि ग्रंथों का भी उन लोगों ने भली भांति अध्ययन कर लिया। आनुषंगिक रूप से ईसाई धर्म के विभिन्न संप्रदायों के प्रवर्तक सेंट फ्रांसिस, इग्नेसियस लायला आदि संतों के जीवन और उपदेश का पूर्ण परिचय प्राप्त हुआ। उन दिनों नरेंद्र नाथ ने प्रमदा बाबू को जाकर सारे पत्र लिखे थे। उससे ज्ञात होता है कि संस्कृत भाषा विशेषकर वैदिक शिक्षा के प्रति भी उन दिनों उन लोगों में विशेष आग्रह था।
1: नरेंद्र बीच बीच में भारतीय इतिहास अथवा समाज व्यवस्था की विवेचना से भी उन्मुख हो जाते। भारतीय सभ्यता की एकता कहाँ है? श्री रामचंद्र से लेकर के सम्राट अकबर तक भारत की संततियों ने किस प्रकार भारतीय संस्कृति को संपुष्ट किया है आदि विषयों के विचार में वे दिनों दिन निरत रहते। विदेशों का इतिहास, जैसे गिबन की रोम साम्राज्य के अधपतन की कहानी, कालाइन का फ्रांस की क्रांति का इतिहास, उन लोगों की विवेचना में एक विशिष्ट स्थान पाता। जॉन ऑफ आर्क के जीवनी की वे विवेचना करते और फिर भारतीय वीरांगना झांसी की रानी का भी वे अत्यधिक सम्मान करते।
0: उस समय विभिन्न धर्मों के बड़े बड़े पर्वों को सादर मनाया जाता, जैसे बड़े दिन की रात में धूनी के चारों ओर अधलेटी अवस्था में ईसा मसीह के अविभाव और उपदेशों के प्रचार का प्रसंग चलता। एक दिन गुड फ्राइडे के उपलक्ष में उन लोगों ने सारा दिन उपवास कर व्यतीत किया। उसी समय दरवाजे पर एक यूरोपीय अतिथि का कंठ स्वर सुनाई पड़ा, कौन है ईसा की दुहाई, दरवाजा खोलो। तभी द्वार खोलकर सभी उन्हें घेर कर बैठ गए। इस शुभ दिन में एक ईसाई के मुंह से ईसा मसीह की कहानी सुनेंगे, किंतु उस व्यक्ति ने कहा कि वे सिलेक्शन आर्मी का सदस्य है और वो सब मात्र दो पर्वों को मनाते हैं, ईसा मसीह और जनरल बूथ का जन्मदिन। गुड फ्राइडे आदि के संबंध में वे कुछ ना कह सकेगा। सन्यासियों ने आश्चर्यचकित होकर कहा,
2: ये क्या, जिस दिन आपके भगवान ने क्रूस पे धोकर शरीर त्याग किया उस दिन की कहानी भी नहीं जानते।
0: और वे विदेशी लज्जित होकर जल्दी से चला गया।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: तो श्रोताओं, हमारी सुबह की सभा यहीं संपन्न होती है। आप बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए दोपहर की सभा का। सुनते रहिए FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन काजल जोशी का, और उसके बाद प्रस्तुति होगी अजय टिपानिया के गायन की। अंतिम प्रस्तुति दी जाएगी अजय प्रसन्ना के बांसुरी वादन की। तो लीजिए पेश है सबसे पहले सितार वादन काजल जोशी का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सितार वादन, जिसे पेश किया काजल जोशी ने। अब बारी है गायन की अजय टिपानिया द्वारा, जिसे प्रस्तुत किया जा रहा है

इस तरह से प्रेम की प्यास जब लगती है तो हम उस अमी का पान करें। एक भजन में सद्गुरु कबीर इस तरह से कहते हैं,

गगन में इस तरह की झड़ी लगती है तो फिर उससे प्रीत होती है, इसी बात को साहेब कबीर ने एक भजन में इस तरह से कहा है।

0: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक फीस। चतुर सेन ग्रेजुएट है मगर बेरोजगार है। आज से 5 साल पहले उसने शहर के एक नामी कॉलेज से बीए पास किया था। मन में ख्याल आया लगे हाथों एमए भी कर लिया जाए, पर सोचा क्या फायदा पैसा और वक्त जाया करने में। आईएएस बनना चाहता था, उसके लिए बीए पास क्वालिफिकेशन काफी थी। मगर पहले ही प्रयास में उसे पता चल गया कि बीए पास आदमी आईएएस नहीं बन सकता। फिर सोचा चलो डिप्टी कलेक्टर ही सही, ये पोस्ट भी बुरी नहीं है, 20-22 साल में आईएएस की प्रमोशन मिल ही जाएगी। पर हाय रे किस्मत, यूपीएससी से लेकर के पीएससी तक सब ने उसके खिलाफ जैसे मोर्चा बंदी कर रखी थी। यहां तक कि एसएससी और व्यापम ने तो उसे कोई तवज्जो ही नहीं दी। हार कर विचार करने बैठ गया कि आखिर गड़बड़ कहां है, क्यों नौकरी के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। काफी चिंतन मनन के बाद जवाब मिला कि चतुरसेन कमी तुझ में नहीं, तेरे कॉलेज में है। उसने तुझे प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं दी, फीस तो पूरी ली पर पढ़ाया कुछ नहीं। तभी तो नौकरी के हर इम्तहान में तू केवल और केवल फेल होता रहा। तेरे कॉलेज ने सेवा में कमी की है, इसलिए मुआवजे का मामला बनता है उन पर। चल उठ चतुरसेन, अठोक दे दावा कॉलेज पर। पहले नोटिस दे, अगर मान गए तो ठीक, अगर नहीं माने तो उन्हें खींच ले कंज्यूमर फोरम में। आजकल तो कंज्यूमर फोरम का जमाना है ना।
2: May I come in, sir?
3: Yes, come in. फरमाइए।
2: सर, ये नोटिस है, रिसीव कर लीजिए।
3: नोटिस? मगर किस बात का?
2: कंपेंसेशन का सर।
3: कंपेंसेशन? मगर वो कैसा?
2: सर, आपके कॉलेज ने सर्विस में कमी की है।
3: कॉलेज ने सर्विस में कमी की है? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? अरे ये कॉलेज है, कोई दुकान या कंपनी नहीं। जो
2: कैसे नहीं है दुकान या कंपनी, अजी बिल्कुल है,
3: है?
2: पैसे लेकर शिक्षा बेचती है, आखिर और क्या होती है, दुकान ही होती है। कमोडिटीज ना सही, सर्विस ही सही, मगर कुछ तो बेचती है ना। बदले में फीस भी अनाप शनाप लेती है, और एजुकेशन, एजुकेशन ऐसी कि चपरासी की भी नौकरी ना मिले।
3: एक मिनट, ठीक से बताइए आप कि आप कहना क्या चाहते हैं।
2: सर, आज से 5 साल पहले मैंने आपके कॉलेज से बीए पास किया था। मुझे एश्योरेंस दिया गया था कि यहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी है कि यहाँ का पढ़ा लिखा लड़का आईएएस तक बन सकता है। लीगल टर्म में कहें तो आपके कॉलेज नाम की कंपनी ने एक प्रकार से गारंटी दी थी अपने कंज्यूमर को, मगर ये देखिए आपकी गारंटी फेल हो चुकी है। जहां जहां भी नौकरी के लिए अप्लाई किया है मैंने, जवाब केवल केवल ना में मिला है सर।
3: तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, आप में काबिलियत ही नहीं होगी।
2: वही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सर।
3: क्या?
2: आपके कॉलेज ने मुझे इस काबिल बनाया ही नहीं कि मैं किसी नौकरी के लिए सिलेक्ट हो सकूं, जबकि ये जिम्मेदारी थी उसकी। इस तरह जो सर्विस देनी चाहिए थी उसे, वो नहीं दी उसने, और इसीलिए मुझे पूरा हक है कि जो फीस चुकाई है मैंने यहाँ, वो वापस पा सकूं, और वो भी ब्याज व हर्जे खर्चे के साथ।
3: लुक मिस्टर, ये कॉलेज है, कोई फैक्ट्री नहीं जहां प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक ना हुई तो पैसा वापस।
2: सर्विसेज भी तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के दायरे में आती हैं सर।
3: अच्छा,
2: आपको विश्वास ना हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सेक्शन 2 देख लीजिए।
3: क्या कह रहे हो?
2: आप खुद समझ जाएंगे कि मेरी डिमांड जायज है या ना जायज।
3: अरे जब कानून की इतनी गहरी समझ है आपको तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इस कॉलेज ने आपको ठीक तालीम नहीं दी।
2: माफ कीजिएगा सर, मैंने LLB नहीं किया है आपके कॉलेज से, अरे BA किया है। BA जो प्रोडक्ट आपका है ही नहीं, उसकी क्वालिटी पर कैसे इतरा सकते हैं आप? फीस तो आपको लौटानी होगी सर।
3: और अगर हम ना बोल दें तो?
2: आपका मुंह, जो चाहे सो बोलिए, पर तब मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊंगा और हर जाना भी तब 10 गुना होगा।
4: ओ नो।
2: ओ यस, बोलिए सर। कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंस गए ना तो मिट्टी पलीत हो जाएगी आपकी।
3: ठीक है, मगर इसके लिए हमें अपने मैनेजमेंट से कंसल्ट करना होगा।
2: शौक से करिए, 1 हफ्ते का टाइम मैंने दिया है नोटिस में, इसके भीतर मुझे जवाब मिल जाना चाहिए, नहीं तो मुझे दोष मत दीजिएगा सर। मैंने 1 हफ्ते का टाइम दे रखा है, शौक से कीजिए, शौक से।

0: और भाई मिश्रा जी, कैसी चल रही है आपकी हिंदी टीचिंग?
1: अरे कहाँ प्रिंसिपल साहब, आजकल तो मेरा विषय बिल्कुल उपेक्षित हो गया है। आपने मुझे योग की कक्षा लेने के लिए कह दिया,
0: अच्छा, खूब याद दिलाया आपने। योगा टीचर वामदेव की पत्नी को बच्चा होने वाला था ना, कुछ खबर है उनकी?
1: बच्चा नहीं श्रीमान, बच्चे कहिए बच्चे। अरे उनके यहाँ तो बच्चे बहुवचन में आविर्भूत हुए हैं
0: भूत
1: श्रीमान।
0: हुए हैं? क्या मतलब?
1: अरे श्रीमान, तात्पर्य यह है कि वामदेव जी की भार्या के उदय से युगल संतानें उत्पन्न हुई
0: ओ,
1: है।
0: अरे भाई, इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग क्यों करते हैं आप? लगता है फारसी में बात कर रहे हैं। जरा आम भाषा में बताइए ना कि।
1: अरे सर वो
2: सर, मैं बताता हूं मैं।
0: आइए आइए, गणिताचार्य कृष्ण गोपाल श्री वास्तव जी।
2: धन्यवाद सर, मैं बताता हूँ सर आपको। बामदेव जी की वाइफ को जुड़वा बच्चे हुए हैं
0: मगर कब, कितने दिन हो गए?
2: सर। दोनों बच्चों को मिलाकर 2 दिन 12 घंटे और 16 मिनट प्रति बच्चे एवरेज आया, 1 दिन 6 घंटे और 8 मिनट।
0: ओहो, ये कोई गणित का सवाल है जो एवरेज निकाल रहे हो?
1: और श्रीमान, बामदेव जी ने तो उनका नामकरण भी कर दिया है।
0: इतनी जल्दी? अभी तो
1: जी
0: नामकरण संस्कार का समय नहीं आया।
1: अरे श्रीमान, वो बामदेव हैं, कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व किए गए कर्म श्रेष्ठ होते हैं।
0: स्मार्ट गाई, स्मार्ट गाई, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। नाम क्या रखा है उनका?
1: अरे सर, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम श्रीमान। योगा शिक्षक है ना, तो इससे उत्तम नाम भला और क्या पाते वो।
0: अनुलोम विलोम, बहुत सही, बहुत सही। ये तो अच्छा हुआ कि वे भूगोल के अध्यापक नहीं थे, नहीं तो उनके नाम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रख दिए होते। खैर, उनकी धर्म पत्नी कैसी है? स्वस्थ तो है ना?
1: कौन? कपाल भारती जी।
0: हाँ,
1: अरे वो तो शवासन में है अभी सर।
0: शवासन?
1: जी
0: मतलब वो गई?
2: ना ना ना ना ना ना, ना सर, मिश्रा जी भी ना, योगा पढ़ाते पढ़ाते अब योगा की भाषा बोलने लगे हैं। कपाल भारती जी टोटल बेड रेस्ट पर हैं सर।
0: ओ, तो यूं कहिए ना मिश्रा जी, आप भी और आपकी हिंदी भी। अच्छा, और उनकी माता जी? वैसे वे तो आई होंगी ना अपनी बहू की देखभाल करने।
1: कहाँ श्रीमान, उनका तो कब का प्राणायाम हो चुका है।
0: मुझे ठीक से बताइए ना मिश्रा जी, आप बार बार मुझे परेशानी में क्यों डाल देते हैं?
1: क्षमा करें श्रीमान, वो क्या है ना कि हिंदी व योग की शब्दावली जरा मिश्रित तो हो गई है। वस्तुतः मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उनकी माता जी का प्राणांत हो चुका है।
2: मतलब ये कि अब नहीं रही सर वो।
1: हाँ
0: ओ भाई, बड़े ही होनहार अध्यापक हैं हमारे।
3: गुड मॉर्निंग सर।
0: आ गए आप मिस्टर चतुरसेन।
3: सर, हमारे कंपनसेशन के संबंध में आपने क्या निर्णय लिया है?
0: चतुरसेन जी, आपके मैटर में हमने मैनेजमेंट से चर्चा की थी।
3: फिर?
0: अरे मान ही नहीं रहे थे वे लोग। एक मेंबर तो बिल्कुल ही तमतमा गए।
3: क्यों?
0: कहने लगे मानहानि का मुकदमा कायम करेंगे ऐसे व्यक्ति पर जो हमारे कॉलेज की बदनामी करता फिर रहा है। अरे पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर 3 IAS, 5 IPS, 14 डिप्टी कलेक्टर और 18 DSP सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे कॉलेज से, और बाकी सर्विसेज की तो कोई गिनती नहीं। यहां तक कि कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब भी यहीं के पढ़े स्टूडेंट हैं। आखिर इन लोगों को भी तो वही तालीम दी गई थी ना जो आपको दी गई।
3: फिर यानी कि तैयार ही नहीं हुए वो लोग।
0: अरे छोड़िए जी उनकी बातें, वे ठहरे व्यापारी लोग, बेरोजगारों का दर्द क्या समझें, अपने स्टूडेंट की तकलीफ तो हम समझते हैं
3: सर। वो हाँ बिल्कुल, मतलब हमारा काम हो जाएगा ना सर।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने भी खूब पानी पिलाया उन लोगों, बोल दिया कि कंज्यूमर कोर्ट का जज आपके कॉलेज का पड़ा है तो क्या कर लेंगे आप लोग। अरे जज किसी का सगा नहीं होता, वो कानून से फैसला करता है और कानून चतुर सेन के पक्ष में है। हम लोगों ने सेवा में कमी की है, ये बात इसी बात से साबित हो चुकी है कि चतुर सेन को अब तक कोई नौकरी नहीं मिली।
3: तो मतलब हमारा चेक रेडी है ना सर।
0: अरे रेडी ही समझिए जी, बस जरा सी फॉर्मेलिटी रह गई है, 2-3 घंटों में वो भी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपका चेक आपके हाथ में।
3: अरे सर फॉर्मेलिटी, अब वो क्या सर?
0: दरअसल मैनेजमेंट इस बात का सर्टिफिकेट चाहता है कि इस कॉलेज ने आपको घटिया शिक्षा दी है, रिकॉर्ड में लगाने के लिए। अरे भाई कॉलेज की बैलेंस शीट का भी तो ऑडिट होता है ना, सो ऑडिटर के ऑब्जेक्शन से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है।
3: ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आजकल किसी की मनमानी थोड़ी ही चलती है, अब पेमेंट होगा तो ऑडिटर तो देखेगा ही उसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सब समझते हैं।
3: पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा सर?
0: कुछ नहीं, बस एक फॉर्मल टेस्ट होगा, 2-3 लोगों की पैनल बैठ जाएगी, उसमें वो ये देखेगी कि आपका नॉलेज कैसा है।
3: ऐसा क्यों सर?
0: अगर उस टेस्ट में आप फेल हो गए तो कॉलेज आपकी पूरी फीस मय ब्याज खर्चे के साथ वापस कर देगी और फेल रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लगा देगी।
3: और अगर मैं सर फेल ना हो पाया तो?
0: भाई तब तो मजबूरी है, मैनेजमेंट इतना तो देखेगा ही ना कि कॉलेज ने आपको ठीक से नॉलेज दिया है कि नहीं, आखिर कॉलेज की भी चूक दिखनी तो चाहिए ना।
3: ओके ठीक है सर, मैं तैयार हूँ।
0: सिट डाउन मिस्टर चतुरसेन।
3: जी सर।
0: मैं पैनल से आपका परिचय करा दूं।
3: जी।
0: ये है प्रोफेसर मिश्रा।
3: जी।
0: हिंदी के अध्यापक हैं। और ये है मिस्टर श्रीवास्तव।
4: हेलो।
0: गणित पढ़ाते हैं।
3: जी नमस्ते सर।
0: ये दोनों लोग हमारे पैनल के 2 मेंबर हैं और तीसरा मेंबर और चेयरमैन मैं खुद हूँ।
3: आपको भी नमस्ते सर।
0: नमस्ते, वेरी क्लेवर। मैं आपसे जनरल नॉलेज और दीगर विषयों के सवाल पूछूंगा, इन सवालों के जो भी जवाब आपको आते हैं उन्हें ठीक ठीक देना है, कोई चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, बिल्कुल ऑनेस्टली। और हाँ, तीनों मेंबर्स के 100-100 मार्क्स हैं, यानी कुल मिलाकर 300 मार्क्स, पास होने के लिए आपको पाने होंगे 40%, यानी कुल मिलाकर 300 में से 120 नंबर। तो तैयार हैं आप?
3: यस सर।
0: मिश्रा जी शुरुआत आप कीजिए।
4: हाँ तो चतुरसेन, मेरा पहला प्रश्न हिंदी व्याकरण से है और आपको ये बताना है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से दोहराता हूँ, हिंदी में वचन कितने होते हैं?
3: सर 7।
4: सोच कर उत्तर दीजिए, सोच कर। मेरा प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। एक क्लू देता हूँ आपको, वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी में नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आपको बताना इस तरह है कि हिंदी में कुल कितने नंबर यानी कि वचन होते हैं।
3: कह दिया ना सर, 7 वचन, फाइनल आंसर।
4: हाँ, वो कैसे पैनल को समझाएंगे आप?
3: बिल्कुल सर, हमारे यहाँ शादी के समय वर और वधू एक दूसरे को 7 वचन देते हैं।
4: हाँ।
3: तो फिर हिंदी में कितने वचन हुए? 7 ही ना।
4: चलिए छोड़िए, गोली मारिए वचन वचन को। हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि हिंदी भाषा के वे कौन से कवि हुए हैं जो दोनों आंखों से अंधे थे?
3: अंधे कवि?
4: हाँ
3: अंधे कवि, सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है।
4: एक क्लू देता हूँ आपको। हाँ। वो एक भक्त भी थे और उनके नाम के अंत में दास आता है।
3: सर याद आ गया। हाँ। तुलसीदास।
4: हाँ, तुलसीदास। मगर वो कैसे?
3: सर तुलसीदास ही थे ना। हाँ। जो भरी बरसात में अपनी वाइफ से मिलने के लिए सांप को रस्सी समझकर छत पर चढ़ गए थे। अब ये काम तो कोई अंधा ही कर सकता है ना सर।
4: ठीक ठीक। अब अपना तीसरा प्रश्न आप ध्यान से सुनिए
3: जी।
4: मैं एक कविता की पहली पंक्ति आपको सुना रहा हूँ। आपको बताना यह है कि इस कविता के रचयिता कौन है। हाँ, तो कविता की पंक्ति है, मानुष हो तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन।
3: सर ये कविता तो हमने कभी सुनी ही नहीं सर।
4: अरे नहीं भाई, ये तो बहुत ही सामान्य कविता है और हिंदी की कक्षा में पढ़ाई ही जाती है। चलिए मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ
3: जी,
4: जिससे आपको संपूर्ण प्रसंग याद आ जाए। कवि रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में यदि आप मुझे मनुष्य बनाना तो उस गांव का ग्वाला बनाना जो ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में रहता है। चलिए चलिए अब बताइए इसके रचयिता का नाम क्या है, बता सकते हैं ना आप?
3: जी सर, गोविंदा।
4: गोविंदा?
3: लॉक कर दीजिए सर, यही है।
4: अरे गोविंदा, अरे भाई वो कब से कविता लिखने लगा?
3: सर मैं शर्त लगा सकता हूँ आपसे, गोविंदा को छोड़कर कोई और ऐसी कविता लिखी ही नहीं सकता।
4: अरे
3: अरे ग्वालों के संग गोविंदा नहीं रहना चाहेगा तो भला और कौन रहना चाहेगा सर।
4: ठीक है चतुरसेन, आपका अगला प्रश्न है कि हाँ हाँ, विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है?
3: विद्या शब्द का पर्यायवाची?
4: हाँ।
3: सर मुझे नहीं मालूम।
4: अरे भाई ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कॉलेज आने वाले सभी विद्यार्थी इसे पाना चाहते हैं और हमारी संस्कृति में इन्हें देवी भी कहा जाता है। नृत्य संगीत जैसी कलाएं इन्हीं के दम पर हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है।
3: जी जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गया मैं।
4: बताइए।
3: श्री देवी।
4: श्री देवी? अरे मगर वो कैसे भाई?
3: देखिए सर, वो एक देवी भी है और एक जमाने में कॉलेज स्टूडेंट्स में इनकी दीवानगी भी काफी थी। और नृत्य संगीत, ओ हो, वो तो पूछिए ही नहीं सर। नगीना फिल्म देख लीजिए ना आप, आपको खुद जवाब मिल जाएगा सर।
4: अरे श्रीमान प्रिंसिपल महोदय, मेरा तो सर दर्द होने लगा, मैं कुछ समय का विश्राम चाहता हूँ।
0: ठीक है मिश्रा जी, विश्राम कीजिए, अब बारी श्रीवास्तव जी की है, आइए श्रीवास्तव जी।
2: धन्यवाद जी। चतुरसेन जी, मेरा सवाल बहुत ही आसान है, आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अरे अरे सवाल एक बार फिर से दोहराता हूँ मैं।
3: जी जी सर।
2: एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे?
3: सर 2 × 2 = 4, सर 4 दिनों में।
2: थोड़ा सोच कर चतुरसेन, ये गणित का सवाल है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे भाई जब आदमी बढ़ेंगे तो दिन तो कम लगने ही है ना।
3: सर मैंने सोचकर ही उत्तर दिया है और मेरा उत्तर बिल्कुल सही है।
2: मगर कैसे, समझाएंगे आप हमें?
3: देखिए सर, जब एक आदमी काम करेगा तब तो वो केवल काम करेगा और काम को दो दिनों में निपटा देगा, लेकिन जब दो आदमी काम करेंगे तब वो काम कम बातें ज्यादा करेंगे, तो दो दिन से ज्यादा तो लगेंगे ही ना।
2: बहुत सही, क्या गणित है। अच्छा फिर अगर 4 आदमी कर दिए जाएं तो?
3: फिर तो काम ही नहीं खत्म होगा सर।
2: वो कैसे?
3: अरे सर फिर तो वहां गुटबंदी शुरू हो जाएगी, दो दो लोगों के दो गुट बन जाएंगे और ये दोनों गुट आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर क्या सिर्फ फुटबॉल हो जाएगी
2: और चार के चारों हवालात पहुंच जाएंगे। अब आप ही बताइए ना, क्या ऐसे में काम खत्म हो सकता है?
5: अरे बाप रे, इतनी गहरी पढ़ाई तो हमने भी कभी नहीं की। अच्छा गोली मारी आदमी आदमी को, मैं एक बहुत ही आसान सवाल पूछता हूँ आपसे। एक पेंसिल का दाम 1 रुपए है, तो 12 पेंसिलों का दाम क्या होगा?
3: 12 पेंसिलों का 12 पेंसिलों का सर 10 रुपया।
5: 10 रुपया? मगर वो कैसे?
3: सर 10 पेंसिलें लेने पर 2 पेंसिलें फ्री में मिल जाएंगी। बस हो गया, 12 पेंसिलें और 10 रुपए हमारे मोहल्ले में स्टेशनरी वाला देता है सर।
5: अच्छा अच्छा, तो अब ये बताइए कि एक कार निर्माता कंपनी का दावा है कि उसकी बनाई कार 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर का सफर करती है, तो 5 लीटर पेट्रोल में वो कितने किलोमीटर का सफर करेगी?
3: सर 50 किलोमीटर का।
5: मगर कैसे?
3: सर देखिए, कंपनियों के दावे 50% से ज्यादा सही होते ही नहीं है। ऐसे में वो कार 5 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर से ज्यादा जा ही नहीं सकती। हाँ, कम जरूर जा सकती है।
0: ठीक है चतुरसेन, अब आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए।
3: जी,
0: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है?
3: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम, वो तो दुनिया जानती है सर, ओसामा बिन लादेन।
0: ओसामा बिन लादेन? मगर ये तो गलत जवाब है भाई, वो ओसामा नहीं बल्कि ओबामा है।
3: हाँ, तो ओबामा बिन लादेन कर दीजिए ना सर, आखिर बा और सा का फर्क ही है ना, बोलचाल में इतना तो चलता है।
0: अरे बा और सा का ही फर्क नहीं, बिन लादेन का भी फर्क है। अरे भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम में बिन लादेन नहीं आता।
3: आपको कैसे मालूम कि नहीं आता? हमने तो जब जब अमेरिका पढ़ा तब तब बिन लादेन पढ़ा, यहाँ तक कि इस बार का इलेक्शन भी अमेरिका में बिन लादेन का हल्ला पीट कर किया गया सर, और जीता भी गया। माफ कीजिएगा सर, मेरा जनरल नॉलेज आपसे अच्छा है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप ये बताइए कि ताज किसने बनवाया था?
3: बहन छायावती ने।
0: बहन छायावती ने? मगर वो कैसे?
3: सर यही तो है, आप अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ते। ताज कॉरिडोर का मामला कितना उछलता रहा पेपरों में, याद कीजिए, बेचारी छायावती ने जैसे गुनाह कर दिया जो ताज बनवा दिया, बड़ी मुश्किल से पिंड छूटा उसका, वो भी कोर्ट में जाकर।
0: चलिए अब एक सवाल अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक्स। प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर होता है?
3: सर, जो कर आंखों के सामने वसूल किया जाए वो प्रत्यक्ष कर, और जो आंखों में धूल झोंक कर वसूल किया जाए वो अप्रत्यक्ष कर होता है।
0: वेरी गुड। एक उदाहरण देंगे इन करों का?
3: बिल्कुल सर, लूट प्रत्यक्ष कर है और जेबकटी अप्रत्यक्ष कर।
0: अच्छा, अब एक आखिरी सवाल।
3: जी,
0: एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और किसी जगह पहुंचने में उसे 2 घंटे लगते हैं, तो बताइए मेरी उम्र कितनी है?
3: सर जोड़ने दीजिए, 18 + 18 = 36। हाँ सर, 36 साल।
0: करेक्ट आंसर। मगर कैसे निकाला आपने भाई?
3: सर मेरा एक भाई है जो आधा पागल है और उसकी उम्र 18 साल है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, आपकी उम्र हुई 18 + 18 मतलब 36 साल।
0: ठीक है चतुरसेन, ठीक है, आप थोड़ी देर बाहर इंतजार करें, तब तक हम आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं।
3: जी बेहतर सर।
0: अरे क्या किया जाए भाई, ये चतुर लड़का तो बड़ा कन्हैया है, जानबूझकर सारे सवालों के जवाब गलत दे रहा है।
5: जी सर।
0: इस आधार पर तो हमें इसकी फीस लौटानी ही होगी।
5: सर हमारे पास एक आइडिया है।
0: वो क्या?
5: सुनिए सर।
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह,
5: सर
0: फिर बुलाइए बुलाइए उसे बुलाइए बुलाइए। चतुरसेन जी, आप इस परीक्षा में उच्च अंकों से अनुत्तीर्ण हुए, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। आपको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे 40%, लेकिन आपने महज 0% अर्जित करके अनुत्तीर्ण होने का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। हम आपका क्लेम स्वीकार करते हैं।
2: जी सर,
0: हमने मान लिया कि हम आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सके, इसीलिए मैं ब्याज फीस वापसी का आपका हक बनता है।
2: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: अरे इतना मच मचाइए नहीं, ये लीजिए 17,542 रुपए का आपका चेक।
3: 17,542? मगर ये तो गलत है सर, 3 सालों की पढ़ाई के दौरान कुल मिलाकर मैंने 36,000 तो केवल फीस के दिए हैं। इसके बाद 2,000 योगा के नाम पर, 7,000 कंप्यूटर के नाम पर, 4

फीस। इसका आलेख तैयार किया था प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सारंगी और वायलन वादन की जुगलबंदी से। तो लीजिए आनंद इस जुगलबंदी का।

0: तो श्रोताओं, सारंगी और वायलिन वादन की जुगलबंदी के बाद लुत्फ लीजिएगा सुनंदा शर्मा के गायन का।
1: एक बनारस का दादरा बहुत पुराना, गंगा रेती पे बंगला छवा दा मोरे राजा, आवे लहर जमुनी की। एक नायिका, उसके मन की इच्छा, वो कह रही है कि मुझे गंगा की रेत पे एक बंगला बनवा दो जिसमें जमुना की लहर का एहसास हो। बंगला छवाया मोरे मन भाया, कोई अच्छा सा खिड़की कटा दा मोरे राजा, आवे लहर जमुनी की। अब खिड़की कटाया मोरे मन भाया, कोई सुंदर सी बगिया लगा दा मोरे राजा, आवे महक फूलों की। गंगा रेती पे बंगला छवा दा मोरे राजा, ये पुराने एक ऊंचे सुर में गाया जाने वाला दादरा बनारस का, बहुत शौक से पुराने लोग इसको गाते रहे, मुझे बहुत प्रिय है ये दादरा, मैं प्रस्तुत करती हूँ। बहुत पुकार का दादरा है ये।

मैं एग्जाम्पल के रूप में चैती के दो प्रकार जस्ट उसकी बंदिश सुनाती हूँ. एक दो थोड़ी स्लो है, एक चलती हुई चैती. चैती के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें दो मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको सुनाती हूँ.

श्रोताओं, सुनंदा शर्मा के गायन के बाद आज के इस कार्यक्रम में अंतिम प्रस्तुति होगी अंशुल प्रताप सिंह के तबला वादन की।

मैं फिरोज खान साहब,

धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन ध

कॉम्पोजिशन मिश्र जाति में। दादा देखिएगा, तना ना तना तना ना देखे टेका तक ना तक तुंगा धागे तेरे टेका तेरे तेरे टेका ता तेरे तेरे टेका तेरे धन ना के तक ये के धन तड़ना नदी दिखर तक दिखर तक तकलां ता ता तड़ना तड़ना नदी दिखर तक दिखर तक तकलां ता ता तड़ना तड़ना नदी दिखर तक दिखर तक तकलां ता ता ना धागे। पंडित सुशील कुमार जैन की रचना है।

Tiger,

ये विलंबित की फरमाइशी है, मिश्र जाति में विलंबित में फरमाइशी बहुत कम होती है, तो ये मैं अभी इसमें दुर्दम बजाने हूँ।

0: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: श्रोताओं, भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ पल हंसने हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, गुदगुदाने के लिए मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे तप तपाती गर्मी में कोई ठंडी हवा का झोंका आया और मन को सुकून दे गया। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा आपको वो सुकून दे सकें कि आप मन ही मन गुदगुदाएं और मुस्कुराए बिना ना रह सकें। तो प्रस्तुत है हमारे हास्य नाटक LPG का 7वां सिलेंडर। श्रोताओं, दुनिया में 7 अजूबे हैं, धरती पर 7 समंदर हैं। शादी के समय 7 फेरे लिए जाते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, सरगम के सुर भी 7 होते हैं, यहां तक कि इंद्रधनुष के रोशनी के रंग भी 7 हैं। और तो और, हमारा भोपाल भी 7 पहाड़ियों पर बसा है। पर हमें समझ में नहीं आता कि सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या 6 क्यों है। सरकार को न जाने क्या सूझी कि उसने किचन के सिलेंडरों का कोटा साल भर में 6 फिक्स कर दिया। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम 7 के आंकड़े का तो ख्याल रखा होता। तो लीजिए, हाजिर है सिलेंडरों की इसी कश्मकश से गुजरते हुए एक परिवार की राम कहानी।
2: ओफ यार, ये जूते कहाँ रख दिए? ये जूते मिल जाए तो फिर चश्मे। अरे सुनती हो का? क्या यार ये लोग, फोन मोबाइल कहाँ रखा है मेरा यार?
3: सुनिए जी, टिफिन। अरे सुन रहे हैं?
2: हाँ?
3: आज ऑफिस के टिफिन में आपको ब्रेड बटर दे रही हूँ, कहिए तो थोड़ा सा सॉस भी रख दूँ।
2: क्या कह रही हो, ब्रेड बटर?
3: हाँ।
2: अरे यार, तुम तो जानती हो कि

0: चट कर दिए हैं। अब बचे हैं कोटे के खाली 2 सिलेंडर
1: क्या,
0: और महीने बचे हैं 5। यानी 1 सिलेंडर अब हमें 2.5 महीने चलाना है, जबकि जिस हिसाब से चल रहे हैं ना हम, हमारा 1 सिलेंडर 2 महीने भी तो चलता नहीं। अब कुकिंग में कटौती भी करनी पड़ेगी।
1: कटौती माई फट, अब क्या पेट पर पट्टी बांध कर नौकरी करूंगा मैं? हार तोड़ खटो ऑफिस में और इसके बाद खाना भी नहीं मांगो। कमाल है भाई, कमाल है, है? एक सुबह गरम पराठा ना दो तो तुम्हारी बाई भी भाग जाए काम छोड़कर, और मैं
0: ए, देखो देखो जी, बाई से अपनी बराबरी मत करो, कह देती हूँ मैं। हाँ भाई, तुम मुंह फुला लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा, मगर बाई, बाप रे बाप, दूसरा पति तो मिल जाएगा
1: क्या,
0: पर दूसरी बाई नहीं मिलने वाली। भाई उसके नाश्ते में कटौती का तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी चाहे जो हो। अरे देख तो मंजू, लगता है कांता बाई आ गई। क्यों रे कांता, ये कोई टाइम है आने का? पहले तो तू कभी कभार ऐसा करती थी, पर अब तो तेरा रोज रोज।
2: अरे क्या करूं भाई साहब, सरकार ने सिलेंडरों में आग लगा के रखी है ना, अब जलते सिलेंडर से आग तो लग सकती है, पर खाना बनने से रहा। सुबह सवेरे सवेरे लकड़ी बीनने ना जाऊं ना तो लकड़ी भी ना मिले। एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। एक टाइम लकड़ी के टुकड़ों पर खाना पकता है और एक टाइम गैस सिलेंडर पर। अब देर तो होगी ना भाई, आखिर नौकरी भी तो पापी पेट की खातिर ही कर रही हूँ ना।
1: हाँ हाँ, तू ही कर रही है अपने पापी पेट की खातिर, और हम तो ऐसे ही कर रहे हैं।
0: अरे सुनिए साहब, अरे सुनिए तो टिफिन तो ले जाइए, अरे कुछ एकदम खाली पेट रहेंगे क्या?
2: उफ़ साहब, नाराज हो गए क्या भाई साहब?
0: अब छोड़ ना, तू नाश्ता कर ले।
2: भाई साहब नाश्ता तो कर लूंगी, पर आज है ना वो ना पराठे के साथ है ना चाय भी मिल जाती तो। हाँ। थोड़ा सा क्या है ठंडे ना।
0: अच्छा बनाती हूँ अभी।
2: हाँ हाँ, तो कई दिन भी हो गए सुबह की चाय नहीं मिली ना भाई साहब। पहले तो ठेले पर वो 2 रुपए कट मिल जाती थी, पर अब अरे अब तो उनके भी रेट सिलेंडर की तरह भबक रहे ना।
0: ये ले चाय। अब मेरा माथा खराब ना कर कांता, देखा ना तूने कैसे लड़कर गए हैं अभी। तू चाय पी, तुझे तो गरम पराठे दे रही हूँ और वे तूने चने लेकर चले गए। तुझे क्या मालूम कि वो कैसे कैसे
2: मालूम है भाई साहब, रो मत, रो नको, मालूम है मेरे को, सब मालूम है। अरे आग की जरूरत तो मेरी रसोई में भी पड़ती है ना, वो चाय वाले भी बोलते कि सरकारी रेट 2 गुना होता है ना, तो ब्लैक वालों का रेट 4 गुना हो जाता है। हाँ
0: मैं क्या करूँ, सरकार तो कुछ भी बोल देती है बस, अब मैं कैसे घर चलाती हूँ ना, मैं ही जाती हूँ।
2: रो,
0: हो गई ना तेरी चाय, अब जा बाकी काम कर।
2: हाँ,
0: झाड़ू पोछा पड़ा है सुबह से।
2: हाँ, कर।

0: मंजू।
1: हाँ मम्मी।
0: जरा टीवी की आवाज कम कर दे बेटा।
1: हाँ मम्मी करती हूँ।
0: सुनो ना, सॉरी सुबह मेरी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया, पर मैं क्या करूं बताओ। मेरे हाथ में तनख्वाह देखकर तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, घर तो मुझे चलाना पड़ता है ना।
2: नहीं रचना, गलती मेरी भी है। अरे यार, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, बॉस तक की बीवी ने राशनिंग का हुक्म सुना दिया।
0: क्या?
2: हाँ, बेचारा सुबह का नाश्ता अंकुरित चने से करता है। दांत साथ नहीं देते उस उम्र में, पर करे क्या, किसी तरह टेबलेट समझ कर कटक लेते हैं।
0: अच्छा सुनो, क्यों ना हम एक काम करें।
2: हाँ बोलो।
0: एक सोलर कुकर खरीद लें, दाल चावल तो उबल ही जाएगा ना उसमें।
2: हाँ, हाँ, हाँ।
0: सूरज भगवान की सब्सिडी और सरकारी सब्सिडी, इन दोनों को मिलाकर हमारा काम किसी तरह चल ही जाएगा।
2: क्या बात है भाई, क्या बात है। हमारी मेहन साहब तो बहुत समझदार हो गई है। अब जाके हमें समझ में आया कि वैदिक काल में लोग अग्नि की इतनी पूजा क्यों करते थे। सच सच, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है भोगने से।
0: अब देखिए जी, 5 महीने हमें 2 सिलेंडरों के सहारे निकालने हैं।
2: बिल्कुल।
0: ओके, तो अब सोलर कुकर ने 1/3 लोड भी ले लिया।
2: हाँ।
0: तो गाड़ी धक ही जाएगी किसी तरह। फिर आपको भी टिफिन में ब्रेड चने नहीं खाने होंगे, हॉट केस में रखे गरम गरम दाल चावल की खुशबू से आप ऑफिस में अपना करवा चौथ खोलिएगा।
1: और मम्मी, फिर मैं भी गर्मा गर्म पोहे खाऊंगी रोज सुबह।
0: हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं भाई, अब तो सोलर कुकर देव का ही सहारा है, वे ही इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं अब।
2: वाह वाह, संकट
0: सोलर कुकर देव की जय।
2: अरे यार रचना, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे, कहाँ है मेरा लंच बॉक्स, है लाओ।
0: माफ करना जी,
2: क्या
0: लगता है दोपहर के पहले नहीं पकने वाला है ये दाल चावल, ये सोलर कुकर में डाला है ना। और आज सूर्यदेव भी नरम पड़े हुए हैं, लगता है उन्होंने भी सब्सिडी घटाने का मन बना लिया है।
2: ए भगवान, दुबले को दो आषाढ़। यार एक काम करो, अतपका ही भर दो तुम टिफिन में यार, पेट की आग से ही पक जाएगा आप तो खाना। आखिर आदि मानव भी तो कच्चा मांस ही खाता था, और कितना आटा कट्टा होता था।
0: ओहो, मुझे क्यों सुना रहे हो, अब सूरज देव ठंडे पड़ते जा रहे तो मैं क्या कर लूं?
2: क्या करूं?
0: उनके आगे मोर्चा तो लेकर नहीं जा सकती ना। सारी मुसीबत मेरी, जैसी सरकार वैसे ही भगवान, आम आदमी के तो सबके सब दुश्मन है।
2: यार, अरे यार रचना, एक आइडिया आया है दिमाग।
0: हटो जी,
2: एकदम सुपर हिट है। एक काम करो, एक काम करो, जिस हाल में भी है दाल चावल तुम उठा लाओ उसे, लाओ जल्दी लाओ, लाओ तो।
0: अरे अरे अरे अरे, क्या हो गया जी आपको, क्या आप सचमुच ही आदि मानव तो नहीं है? हे भगवान, सिलेंडरों की समस्या ने अब आपके दिमाग पर कोई असर तो नहीं डाल दिया?
2: अरे चुप रहे भाई, चुप रहे, मैं तुझे पागल दिखता हूँ। अरे लेके आओ यार सही अपना कच्चा पक्का खाना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है। लाओ लाओ, जल्दी जल्दी। हाँ,
0: ये लीजिए।
2: हाँ,
0: ये।
2: हाँ,
0: बताइए अब क्या करूं इस कच्चे पक्के खाने का।
2: अरे करना क्या है यार, ये सोलर कुकर के डब्बों को अब असली कुकर में डाल दो और उसको फिर गैस पर चढ़ा दो।
0: हाँ, अब फिर क्या फायदा हुआ।
2: ओफो, यही तो फर्क है तुम्हारी और हमारी अकल में। अरे अब खाना पकाने में आधा गैस खर्च होगा कि नहीं होगा, है? आधा गैस।
0: वाओ, मान गए आपको, वो क्या कहते हैं ना जी, दिनेश मतलब दिनेश।
2: हाँ, मतलब हम दिनेश।
3: रचना और दिनेश ने न जाने क्या क्या तरीके अपनाए, पर सिलेंडर

0: सुनो जी,
1: हाँ?
0: एक काम करते हैं, घर में आलू आज से पूरी तरह बंद।
1: उससे क्या होगा? क्या बाकी सब्जियां कच्ची खाई जाएंगी?
0: अरे नहीं जी, सब्जियों का बिहेवियर आप क्या जानोगे दिनेश बाबू, ये तो हम गृह स्वामिनियां ही समझ सकती हैं।
1: क्या मतलब?
0: मतलब ये देखो, अब हमें पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, हाफ फ्राइड, पोषक तत्व भी भरपूर और गैस की बचत भी। वो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि सब्जियों को ज्यादा पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नष्ट नष्ट,
1: और मेरा वेट भी कंट्रोल में रहेगा, है ना?
0: वाव, क्या बात कही है आपने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली, वेट कंट्रोल, तो समझिए सब बीमारियां कंट्रोल।
1: अरे भाड़ में जाए तुम्हारे पोषक तत्व और वेट कंट्रोल,
0: है?
1: जान ही दे देते हैं ना बाबा अपनी, है? न रहेगा वेट और न रहेगा कंट्रोल, और न करना होगा ऐसे कंट्रोल में, गैस सिलेंडर की जरूरत भी खत्म।
0: अरे क्यों नाराज होते हैं जी मेरे भोले पतिदेव, भाई आपकी तनख्वाह से तो काम चल नहीं रहा है, आपकी पेंशन से कैसे काम चलेगा?
1: क्या
0: हमारा गोलू अभी छोटा है, अभी उसे बाप की जरूरत है जी।
1: जरूरत है तो नहीं होगा आलू बंद, मेरा पेट ही नहीं भरता आलू के बिना। अरे आने दो सातवां सिलेंडर 1000 रुपए में, पर आलू पर कैंची कभी नहीं जलेगी।
0: ये भी आ गए सातवें सिलेंडर के दूध बनकर, करीबी में आटा गीला, गैस का 6 दिन का कोटा अब 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पहले का जमाना ही अच्छा था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ, मजे से चूल्हा जलाओ, कम से कम मेहमानों से डर तो नहीं लगता था।
1: क्या भुनर भुनर कर रही हो जी तुम, है? तुम औरतों की यही आदत मुझे बुरी लगती है, खुलकर नहीं बोलती, ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। क्या हुआ?
0: घर में मेहमान है, गैस का हिसाब किताब तो पहले ही गड़बड़ाया हुआ था, पर अब तो पूरा गड़बड़ छाला हो चुका है, कोई प्रधानमंत्री राहत कोष भी तो नहीं होता ऐसे मामलों के लिए।
1: अरे ठीक कहती हो तुम, एक प्रधानमंत्री गैस कोष जरूर होना चाहिए, जिससे उन लोगों की मदद हो सके जिनके यहाँ मेहमान वगैरह आ जाएं। इन लोगों ने सिलेंडर का कोटा फिक्स करते हुए ये नहीं सोचा कि मेहमान भी आएंगे घर में। अरे कभी ठंडे खाने को गर्म भी करना पड़ेगा, कभी त्योहार भी पड़ेंगे, बस फ्लैट ऑर्डर पास कर दिया कि साल भर में 6 सिलेंडर। त्योहारों को गुड बाय बोल दो, मेहमानों को पहचानने से इनकार कर दो, खाना ठंडा हो जाए तो उसे वैसे ही निगल लो। पता चला बाहर की गैस बचाने के चक्कर में पेट के भीतर गैस भंडार बन गया।
0: सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो, क्या खूब बात कही है,
1: क्या
0: बातों ही बातों में समस्या का अच्छा समाधान बता दिया।
1: अच्छा
0: अगर कोई टेक्नोलॉजी इजाद हो सके कि इस गैस भंडार को सिलेंडरों में पैक कर ली जाए,
1: क्या
0: तो सारी समस्या ही खत्म। तब तो गैस कंपनियां कहेंगी जो साल में 6 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करेगा उसे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा,
1: और फिर भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा। आखिर मुफ्त की चीज कोई डिस्काउंट में भी क्यों खरीदे।

0: वाह वाह वाह वाह
1: यार, खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा आजकल।
0: हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो यार आलोक भाई?
1: क्या बताएं यार,
0: क्या हुआ
1: यार दिनेश?
0: हाँ।
1: सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती भैये?
0: क्या हो गया? क्या
1: अरे मतलब? यही सिलेंडरों का कोटा।
0: हाँ।
1: कहते हैं साल में 6 से ज्यादा नहीं देंगे।
0: हाँ।
1: अरे भैया, जब हम छोटे थे 60 रुपए का आने वाला सिलेंडर अब 500 रुपए का हो चुका है। कोटा करण अलग से, ऊपर से तुर्रा ये कि देश की आर्थिक तरक्की हो रही है। वाह,
0: सही कह रहा है यार तू आलोक। आर्थिक तरक्की तो तभी होगी ना जब हम लोग आधा पेट खाएंगे।
1: सही कहते हो, सही
0: पेट भर खाना खा लेंगे तो देश की तरक्की के लिए पैसा ही नहीं बचेगा।
1: हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। और करनी और करमगत ऐसे भैया के घर में जो हमारे कुकिंग मिनिस्टर बैठी है ना, अब वो खाने का कोटा फिक्स कर रही है। कहती है सुबह 1 से ज्यादा चाय नहीं मिल सकती।
0: जी जी जी।
1: टिफिन भी खाना है तो कच्चा माल खाओ, शाम की चाय बाजार में जाकर पियाओ। और कभी कभी तो ये कहती है कच्चा खाना खा करके जलते तवे पर बैठ।
0: अरे भाई क्या क्या बात कही है आपने, मेरे घर में भी यही सब चल रहा है। 6ठा सिलेंडर खुल चुका है। हाँ। और मेहमानों को भी इसी वक्त आना था। बड़ी मुश्किल से विदा हुए हैं, लगता है उनके घर में भी सिलेंडरों का कोटा खत्म हो रहा था। सोचा कुछ दिन दिनेश भाई के यहाँ चलो।
1: भैया दिनेश, मुझे तो अब मेहमानों से डर लगने लगा है। सोचता हूँ घर में आए मेहमान तो उन्हें होटल अलाउंस दे दूं बिल्कुल कैश, और कहूँ भैया ये लो पकड़ो और होटल में जाकर खाना खा पी लो बस।
0: हाँ बॉस, हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन सरकार की वजह से अब मेहमान भगवान नहीं जानी दुश्मन लगते हैं, जो आधे सिलेंडर गैस अपने संग उड़ा ले जाते हैं।
1: यार दिनेश, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में।
0: वो क्या आ रहा है भाई, सुनाओ।
1: देख, क्यों ना हम सब मिलकर एक सिलेंडर इमरजेंसी फंड बनाए। किसी के घर में अगर 6ठा सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाए तो इस फंड से उसकी मदद की जा सके।
0: हाँ। यार मगर इस फंड में सिलेंडर आएंगे कहाँ से?
1: देख, हमारे यहाँ कई बार लोग छुट्टी पर बाहर जाते हैं ना।
0: जी, जी।
1: कभी कोई काम से बाहर चला गया, कोई अपने गांव चला गया, या अन्य किसी वजह से अगर किसी का कोटे वाला एकाध सिलेंडर बच जाए तो वो इसे हमारे फंड में दान कर दे।
0: वाह।
1: बदले में हम उसका सम्मान समारोह करेंगे, अखबारों में फोटो सहित न्यूज छपवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भैया आज के वक्त में ये है सिलेंडर दानी, यानी सिलेंडर दान महादान।
0: वाह यार, आइडिया तो धांसू है। चल जाए तो सुपर हिट। कम से कम बिना तड़के की दाल खाने से तो छुटकारा मिलेगा।
1: क्यों भैया? तुम्हें सिलेंडर दान नहीं करना है क्या?
0: है?
1: अरे दान त्याग मांगता है त्याग, भोग के बूते पर भी कभी कोई दान होता है।
0: जी अरे भाई, हमारी गिनती तो दान लेने वालों में ही रखो यार, तुम्हें देने वालों में तो तुम अपना नाम भले लिखवा लो।
1: देखो भैया दिनेश, सिलेंडर दान महादान।
2: दिनेश और रचना की सारी हिकमतें मिलकर भी 6ठे सिलेंडर की आयु को दीर्घायु न कर सकी। अभी साल पूरा होने में 1 महीना बाकी था, पर अचानक एक रात गैस का बर्नर भभक कर बुझ गया। समझ गए वे दोनों कि पंछी उड़ चुका है। सिलेंडर के भीतर रहने वाली गैस रूपी आत्मा महाप्रायण कर चुकी है। अब यह जो लाल रंग का लोहा बचा है, यह तो नश्वर शरीर है।
3: ओफो, अब क्या करूं, सब्जी अभी कच्ची है, गोलू का दूध भी गर्म नहीं हुआ, सुबह की ओफो, क्या मुसीबत है। अजी सुन रहे हो? सुनना जरा।
0: हाँ, हाँ,
3: देखो ना, गैस खत्म हो गई, पूरा काम पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं बताओ। इसी बात का डर।
0: एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सुनो, लुढ़का कर देखते हैं सिलेंडर को, शायद थोड़ी सांसें बची हो अभी, 5-10 मिनट और जी जाए किसी तरह।
3: संभाल के।
0: अब जलाओ।
3: चल गया, जल गया। ये देखो, ये देखो लौ निकल रही है बर्नर से। हे भगवान, तू सचमुच कितना दयालु है भगवान, भक्तों का संकट दूर करने वाला। काम चला दो किसी तरह शारदा माता, हम सब परिवार मैहर दर्शन को आएंगे माता।
0: अरे क्या पागल हो यो, कितने घाटे की डीलिंग है ये तुम्हारी, तुम्हें होश भी है? दर्शन करने का खर्चा कितना बैठेगा तुमने सोचा है कभी? अरे ये तो गज बचाने के चक्कर में थान हारने वाली बात है।
3: चुप रहो जी, कहीं माता रानी नाराज हो गई ना तो थान तो क्या, दुकान ही हार जाओगे तुम। एक एक सिलेंडर को तरसोगे, साल भर गाय की तरह कच्चा सानी खाते रहना, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे।
2: लड़ाई के मैदान में जिस तरह कोई बहादुर सैनिक मरते मरते भी दो चार दुश्मनों को लुड़का देता है, वैसे ही दम तोड़ते सिलेंडर ने भी रात का खाना पका दिया है। पर सुबह क्या होगा, यह चिंता पति पत्नी को इस खाने का आनंद नहीं लेने दे रही। हर गौर के साथ चिंता की दो फांके निगल रहे थे वे दोनों। सुबह चाय कैसे बनेगी, दूध कैसे गर्म होगा, नाश्ता कैसे बनेगा, अनगिनत सवाल पति पत्नी के बीच राहु की तरह पंख फड़फड़ा रहे थे।
0: ये क्या कर रही हो रचना, आज रद्दी वाले को बुलाया क्या तुमने?
3: रद्दी वाले को नहीं बुलाया है, ये तो चाय बनाने का इंतजाम चल रहा है पति देव जी।
0: यानी अब रद्दी के कागजों से रसोई पकेगी?
3: नहीं, ये केवल सुबह का इंतजाम है।
0: तो
3: इसके बाद अगर कोई रसोई जलानी है तो जाकर कबाड़ी के यहाँ से एक आध क्विंटल रद्दी कागज खरीद कर ले आओ।
0: एक क्विंटल रद्दी कागज?
3: हाँ,
0: यानी 1000 रुपए का बिल। लग रहा है गैस खत्म नहीं हुई है रचना, बल्कि तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। इतने में तो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ही आ जाएगा।
3: वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ।
0: क्या
3: अब सब्सिडी का मोह छोड़िए, क्या पता कल को इन 6 सिलेंडरों पर भी सब्सिडी खत्म हो जाए। तो अभी से हमें आदत डालते रहना चाहिए, वही अच्छा है।
0: पर रचना, हमारे बजट का क्या होगा तब? ये एक्स्ट्रा खर्च कहाँ से आएगा भाई? किसकी जेब काट कर हम अपना घर चलाएंगे है? अब तो कर्मचारी संगठनों को सरकार से कुकिंग अलाउंस भी मांगना चाहिए। भाई खाना खाए बगैर तो कर्मचारी काम कर ही नहीं सकता। तनख्वाह से अनाज तो खरीद सकते हैं पर पका नहीं सकते उसे। पकाने के लिए अलाउंस का हक तो बनता है।
3: चिंता न करिए पति देव जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो आपकी चिंताएं भी साझा करूंगी। अब सोच लिया है मैंने कि बजट को कैसे बैलेंस करना है।
0: कैसे बैलेंस करना है?
3: तो लीजिए, पेश है। कल से दूध का 1 पैकेट कम आएगा घर में
0: जी?
3: साल भर
0: है?
3: भविष्य के लिए अपने आप को तैयार रखना है। आज नहीं तो कल सब्सिडी वाले सिलेंडर बंद होने ही है। पूरा दूध कच्चा पीने से अच्छा है कि आधा दूध उबाल कर पियो। पका खाना बोनस होगा।
0: पर काम कैसे चलेगा, 2 पैकेट में तो पूरा पड़ता नहीं है, 1 पैकेट में क्या होगा?
3: अरे पढ़ने का क्या है, 4 में भी ना पड़े और छोटी थैली में भी काम चल जाए। आखिर हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जी जितनी हमारी चादर है। कर्ज लेकर घी पीने की फिलॉसफी तो सही नहीं है ना। चाय में दूध थोड़ा कम पड़ेगा, फुल के बजाय कट चाय पी जाएगी
0: जी।
3: गोलू के दूध में भी थोड़ी राशनिंग हो जाएगी, इससे चीनी भी बचेगा और डायबिटीज का खतरा भी खत्म।
0: वाह वाह,
3: बीमार होने का रिस्क कम, यानी दवा दारू का खर्च भी बचा।
0: बहुत खूब,
3: बस हो गया बजट बैलेंस। बजट क्या, सरप्लस कहिए साहब, सरप्लस।
0: क्या बात है।
2: अब घर में 7वां सिलेंडर आ चुका है। पैसे जरूर दुगने से ज्यादा लग गए पर रसोई तो गर्म हो गई, कुकर की सीटी बज उठी है, चाय उबल रही है, जीवन की ऊष्मा सोंधी सोंधी महक रही है।
3: ये क्या है जी आपके हाथ में?
0: बूझो तो जानू।
3: अब बूझना क्या है, ये तो गैस का चूल्हा है, साफ समझ में आ रहा है। अब ये क्या फितूर सूझी आपको, एक नया खर्च बेवजह। भाई हमारा चूल्हा अच्छा भला तो काम कर रहा है अभी।
0: अच्छा भला नहीं काम कर रहा है धर्म पत्नी जी। अपना चूल्हा कभी ध्यान से देखा है आपने? पुरानी टेक्नोलॉजी का है तुम्हारी तरह ये चूल्हा।
3: हाँ तो क्या हुआ, मेरी तरह जलता भी तो है ये चूल्हा।
0: मगर गैस जरूरत से ज्यादा खाता है। पुरानी फिएट कार की तरह ये जो चलती कम और धुआं ज्यादा देती है। तुमने ध्यान से देखा है कभी इसे? देखा है कभी इसे?
3: क्या
0: बर्तन की पेंदी कितनी काली हो जाती है इससे है?
3: और इस नए चूल्हे में?
0: तुम खुद ही खोल कर देखो इसे, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें।
3: अरे इसमें तो लिखा है हाई थर्मल एफिशिएंसी अप टू 75%।
0: और तुम्हारे पुराने चूल्हे में क्या लिखा है ये भी देख लो लगे हाथ।
3: अब इसमें इसमें तो कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा जी।
0: नहीं आ रहा ना?
3: नहीं
0: आएगा भी नहीं।
3: क्यों?
0: क्योंकि कुछ लिखने लायक होगा तब ना लिखा जाएगा।
3: अरे
0: मुझे भी नहीं मालूम था। वो तो जब से सिलेंडरों की राशनिंग हुई है चारों ओर रिसर्च शुरू हो गई है कि गैस कैसे बचाई जाए। कंपनियां भी अब स्टार रेटेड चूल्हे बाजार में ला रही हैं जो कम गैस खाते हैं। कई बुकलेट पब्लिश हुए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि खाना कैसे पकाया जाए जिससे गैस की बचत हो। एक फ्री बुकलेट इस चूल्हे के साथ भी है, देख लो।
3: यही है ना बुकलेट?
0: हाँ यही है। क्या लिखा है बोलो?
3: लिखा है हाउ टू सेव कुकिंग गैस इन किचन।
0: हाँ अब इसे जरा पूरा खोल कर पढ़ो तो। हाँ पढ़ो।
3: देखो ना, गैस बचाने के टिप्स
0: जी।
3: नंबर एक, गैस का चूल्हा ऑन करने के पहले पकाने की सामग्री अपने पास रख लें
0: जी।
3: इससे चीजें ढूंढने के दौरान आपकी गैस फालतू बर्बाद नहीं होगी
0: जी।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा नंबर दो, सेपरेटर की मदद से एक ही प्रेशर कुकर में अनेक चीजें एक बार में ही पकाएं।
0: आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
3: वाह। नंबर तीन, चीजें कम पानी में पकाएं, ज्यादा पानी को भाप में बदलने के लिए ज्यादा गैस की बापरे। नंबर चार, बर्तन में रखा पदार्थ जैसे ही उबलना शुरू करे आँच धीमी कर दो।
0: जी जी
3: सिंपल। ओके एक और है, एक और। दाल चावल को पकाने के पहले थोड़ी देर भिगो कर रखे।
0: मुझे तो, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे तो।
3: अच्छा अच्छा चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सिक्स्थ वाला,
0: जहाँ तक हो सके छोटा बर्नर इस्तेमाल करें।
3: अच्छा।
0: और बर्नर की समय समय पर यानी वक्त वक्त पर सफाई करें, खास करके तब जब बर्नर की लौ पीली नारंगी व एक जैसी ना हो।
3: अच्छा।
0: समझी?
3: हाँ।
0: अच्छी लौ की एक पहचान ये है कि इसे नीली चमकदार व एक जैसी होना चाहिए। एक
3: जैसी
0: वो नीली। और फ्रिज से निकाली गई चीजों को गैस पर चढ़ाने के पहले कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें।
3: हाँ, हाँ,
0: इससे गैस की बचत होगी। और अगर इन सभी नियमों का पालन करोगे तो आपका गैस सिलेंडर दीर्घायु होगा, दीर्घायु।
3: नहीं मजाक नहीं। अरे इनमें से आधी बातें तो हम पहले से ही जानते हैं।
0: हाँ।
3: पर हम इन्हें करते क्यों नहीं है?
0: हाँ, लेकिन अब करना है धर्म पत्नी।
3: हाँ,
0: जी
3: जरूर, जरूर।
0: नहीं तो पता चला अभी दूध आधा हुआ है।
3: हाँ।
0: और चाय आधी हुई है, आगे चलकर कौन भरोसा है कि रोटी भी आधी हो जाए?
3: नहीं नहीं।
0: हाँ, आगे चलकर कौन भरोसा है कि रोटी भी आधी हो जाए?
3: नहीं नहीं।
0: मेहमानों को आने से पहले सैंक्शन लेनी पड़े,
3: क्या?
0: संख्या बतानी पड़े कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कितने दिन बाद जाएंगे। पहले वीजा लें फिर टेक ऑफ करें, नहीं तो घर में लैंड करने की
3: इजाजत नहीं मिलेगी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एलपीजी का सातवां सिलेंडर। इस हास्य नाटिका में भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जमनी, स्वास्तिका चक्रवर्ती, रंजना तिवारी और इरफान सौरभ। लेखक श्रीमती

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 186 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं अश्विनी कुमार और छंद है त्रिष्टुप।
1: आ न इडाभिर्विदथे सुशस्ति विश्वानरः सविता देव एतु अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्वं जगदभित्वे मनीषा। सबके कल्याणकारी सविता देव भली भांति प्रशंसित होकर अन्न से युक्त होकर हमारे यज्ञ में पधारें। हे वरुण देव, आप जिस तरह आनंदित हैं उसी तरह हमारे यज्ञ में पधारकर अपनी अनुकंपा से हमें तथा संपूर्ण विश्व को भी हर्षित करें। आनो विश्व आस्क्रा गमन्तु देवा मित्रो अर्यमा वरुणः सजोषाः भुवन्यथा नो विश्वे वृधासः करंसु साहा विथुरं नशवः। सभी शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले, परस्पर प्रीति करने वाले मित्र वरुण और अर्यमा देव हमारे समीप आए तथा यथा संभव हमारी प्रगति में सहायक हों। ये देव शत्रुओं को परास्त करने की सामर्थ्य से युक्त होकर हमारी शक्तियों को क्षीण न करें। प्रेष्ठम वो अतिथिम गृणीषेग्निम शस्तिभिस्तुर्वणिः सजोषाः असद्यथा नो वरुणः सुकीर्ति ऋषश्च परशदरि गूर्तः सूरिः। जो अग्निदेव शत्रु संहारक और सबके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने के कारण अतिथि के समान पूज्य हैं, उनकी हम स्तोत्रों द्वारा स्तुतियां करते हैं। शत्रुओं के आक्रांता और ज्ञानवान ये वरुण देव हमें अन्न तथा यथोचित कीर्ति प्रदान करें। उप व एशे नमसा जगीशोषा सानक्ता सुदुघेव धेनुः समाने अहन विमिमानो अर्कम विशुरूपे पयसि सस्मिन् नूधन। हे संपूर्ण विश्व की संचालक देव शक्तियों, गौ अर्थात सूर्य किरणों से उत्पादित होने वाले दुग्ध रूपी प्राण में संपूर्ण तेजस्विता की अनुभूति करते हुए हम साधक मनोविकार रूपी शत्रुओं पर विजय पाने की कामना से प्रातः और सायं उसी प्रकार आपके समीप जाते हैं जिस प्रकार श्रेष्ठ दुधारू गौएं गोपाल के पास जाती हैं। उत नोहिर बुधन्यो मयस्कः शिशुम न पिप्युषीव वेति सिंधुः येन न पातमपाम जुनाम मनोजुवो वृषणो यम वहन्ति। अहिर्बुधन्य विद्युत रूप अग्नि अंतरक्षीय मेघों से जल बरसाकर हमें सुखी करें। शिशु का पोषण करने वाली माता के समान नदियां जल से परिपूर्ण होकर हमारे समीप आए। जल को न गिरने देने वाले अग्निदेव की हम वंदना करते हैं। मन की तरह वेगवान अश्व किरणें उन्हें ले जाते हैं। उत न ईम त्वष्टा गंत्वच्छा समत सूरी भीर भिपित्वे सजोषाः आ वृत्र हेन्द्रश्चर्ष निप्रास्तु विष्टमो नराम न इह गम्याः। ज्ञानियों से स्नेह पूर्ण व्यवहार करने वाले ये त्वष्टा देव तथा मनुष्यों के तृप्ति कारक और वृत्रासुर के वध द्वारा सबके द्वारा प्रशंसनीय इंद्रदेव हमारे इस यज्ञ में पधार कर हमारे सत्कर्मों में सहायक बने।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 186 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलम त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: नजी भर के देखा

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

मूर्खों का संग ना करना, विद्वानों का संग करना और पूजनीय पुरुषों का सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है।

ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं, उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है।

हम ईश्वर की भक्ति ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलने के लिए चलना, और यदि हम ईश्वर को पा लिए तो इसी को मोक्ष कहते हैं।

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम सांत गीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन करा के श्रोताओं को नमस्कार। फरवरी 1906 बंगाल में एक विशाल प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी को देखने बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। उस प्रदर्शनी में एक 16 वर्षीय युवक लोगों को पर्चा बांटते हुए दिखाई दिया। उस पर्चे का शीर्षक था सोनार बांग्ला। उसमें वंदे मातरम का नारा था, साथ ही साथ उस प्रदर्शनी के आयोजक अंग्रेजों के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किया गया था। अंग्रेजों द्वारा किए गए अन्याय तथा क्रूरता का भी उस पर्चे में उल्लेख था। प्रदर्शनी देखने वाले लोगों में कुछ लोग इंग्लैंड के राजा के प्रति निष्ठा रखते थे। अंग्रेजों के अन्याय का पर्चे बांटकर विरोध करने वाले उस युवक का उन्होंने विरोध किया। वंदे मातरम, स्वतंत्रता, स्वराज, इस प्रकार के शब्द ऐसे लोगों को सुई की तरह चुभते थे। उन्होंने उस लड़के को पर्चे बांटने से रोका और लड़के को डराया धमकाया, पर उनकी उपेक्षा कर उस लड़के ने शांति से पर्चे बांटना जारी रखा। जब कुछ लोग उसे पकड़ने लगे तो वो चालाकी से भाग निकला। अंत में एक पुलिस के सिपाही ने उस लड़के का हाथ पकड़ा, उसके हाथ से पर्चे छीन लिए, परंतु उस लड़के को पकड़ना आसान नहीं था। उसने झटका देकर अपना हाथ छुड़ाया और हाथ घुमाकर सिपाही की नाक पर जमकर घूंसा मारा। उसने पर्चे फिर उठा लिए और कहा कि ध्यान रखो, मुझे स्पर्श मत करो, मैं देखूंगा कि मुझे वारंट के बगैर पुलिस कैसे पकड़ सकती है। जिस पुलिस सिपाही को घूंसा मारा गया था वो पुनः आगे बढ़ा, किंतु वो लड़का वहां नहीं था। वो जनसमूह में अदृश्य हो गया। जब लोग वंदे मातरम के नारे लगाने लगे तो पुलिस और राजनिष्ठ लोगों को आश्चर्य हुआ। उन्हें ये अपने लिए अपमानजनक प्रतीत हुआ। बाद में उस लड़के के विरुद्ध एक मुकदमा चलाया गया, लेकिन छोटी उम्र के आधार पर न्यायालय ने उसे मुक्त कर दिया। जिस वीर लड़के ने मेदिनीपुर की प्रदर्शनी में बहादुरी से पर्चे बांटकर अंग्रेजों की योजनाओं को विफल किया था, उस लड़के का नाम था खुदीराम बोस। कुछ इतिहासकार उन्हें देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का देशभक्त मानते हैं। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में त्रैलोक्यनाथ बोस के घर हुआ था। खुदीराम बोस जब बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। खुदीराम की बड़ी बहन अनुरूपा देवी और बहनोई अमृतलाल को खुदीराम के पालन पोषण का उत्तरदायित्व निभाना पड़ा। आनंदमठ उपन्यास पढ़ते ही खुदीराम को अपने जीवन के उद्देश्य की दृष्टि मिली। मातृभूमि की सेवा में उन्होंने अपने जीवन समर्पण का निश्चय किया। वे रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम पंफलेट वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चले आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उनके क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते 28 फरवरी 1906 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वे कैद से भाग निकले। लगभग 2 महीनों के बाद अप्रैल में वे फिर पकड़े गए। 16 मई 1906 को उन्हें रिहा कर दिया गया। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु गवर्नर बच गया। सन 1908 में खुदीराम ने 2 अंग्रेज अधिकारियों वॉटसन और फुलर पर बम से हमला किया, लेकिन वे भी बच निकले। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के सेशन जज किंग्सफोर्ड से बेहद खफा था, जिसने बंगाल के कई देशभक्तों को कड़ी सजा दी थी। वो कई तरह से अत्याचार करता था। क्रांतिकारियों ने उसे मार डालने की

युगांतर क्रांतिकारी दल के नेता वीरेंद्र कुमार घोष ने घोषणा की कि किंग्सफोर्ड को मुजफ्फरपुर में ही मारा जाएगा। इस काम के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाको को चुना गया। ये दोनों क्रांतिकारी बहुत सूझबूझ वाले थे। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि देशभक्तों को तंग करने वालों को मार डालने का काम उन्हें सौंपा गया था। एक दिन भी दोनों मुजफ्फरपुर पहुंच गए। एक धर्मशाला में वे 8 दिन तक रुके। इस दौरान उन्होंने किंग्सफोर्ड की दिनचर्या और गतिविधियों पर पूरी नजर रखी। उनके बंगले के पास ही क्लब था। अंग्रेजी अधिकारी और उनके परिवार अक्सर सायंकाल क्लब जाते थे। 30 अप्रैल 1908 की शाम किंग्सफोर्ड और उसकी पत्नी क्लब में पहुंचे। रात्रि के 8:30 बजे मिसिस कैनेडी और उनकी बेटी अपनी बग्घी में बैठकर क्लब से घर की तरफ आ रहे थे। उनकी बग्घी का रंग लाल था और वो बिल्कुल किंग्सफोर्ड की बग्घी से मिलती जुलती थी। खुदीराम बोस और उनके साथी ने किंग्सफोर्ड की बग्घी समझकर उस पर बम फेंक दिया। देखते ही देखते बग्घी के परखचे उड़ गए। उसमें सवार माँ बेटी दोनों की मौत हो गई। क्रांतिकारी इस विश्वास से भाग निकले कि किंग्सफोर्ड को मारने में वे सफल हो गए हैं। खुदीराम बोस और घोष 25 मील भागने के बाद एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। इस समय तक मुजफ्फरपुर की घटना की खबर चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। जहां खुदीराम बैठे थे, लोगों की चर्चा इसी विषय पर हो रही थी। उत्सुकता से उन्होंने उस चर्चा को सुना। केवल 2 महिलाओं की मौत हुई, ये सुनकर वे अपने आप को भूल गए और उन्होंने पूछा, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? खुदीराम के इन शब्दों से दुकान में बैठे लोगों की दृष्टि उन पर गई। वो लड़का वहां नया दिख रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी। दुकान का मालिक उसके प्रति सशंकित हो उठा। उसने विचार किया कि अपराधी को पकड़ने में सहायता करने पर उसे पुरस्कार मिलेगा। उसने खुदीराम को पानी दिया और सामने जा रहे सिपाही को खबर कर दी। पानी पीने के लिए ग्लास उठाते समय ही पुलिस सिपाही ने उसे पकड़ लिया। खुदीराम अपनी जेब से पिस्तौल नहीं निकाल सका। दोनों पिस्तौलें पुलिस के सिपाहियों ने छीन ली, किंतु खुदीराम नहीं घबराए। प्रफुल्ल भी खुदीराम की तरह भागे थे। उन्होंने 2 दिन तक पुलिस सिपाहियों को चकमा दिया, किंतु 3rd दिन भटकते समय पकड़ लिए गए। पुलिस सिपाहियों को चकमा देकर वो फिर भाग निकले, किंतु चारों ओर पुलिस का जाल फैला था। कुछ भी हो, मैं जीवित होते हुए उन्हें मेरे शरीर को स्पर्श नहीं करने दूंगा, कहते हुए प्रफुल्ल ने अपनी पिस्तौल निकालकर स्वयं पर चला दी और वीरगति को

पुलिस प्रफुल्ल चाकू का सिर काटकर मुजफ्फरपुर ले गई। खुदीराम को पुलिस की निगरानी में रेलगाड़ी से मुजफ्फरपुर लाया गया। जिस भारतीय लड़के ने अंग्रेजों पर पहला बम फेंका था, उसे देखने हजारों लोग एकत्रित हुए। पुलिस स्टेशन जाने के लिए पुलिस की गाड़ी में बैठते समय खुदीराम चिल्लाए, वंदे मातरम। गर्व से आंसुओं की धारा लोगों की आंखों से झरने लगी। खुदीराम के विरुद्ध एक अभियोग चलाया गया। सरकार के पक्ष में दो वकील थे, मुजफ्फरपुर शहर में खुदीराम के पक्ष में कोई भी नहीं था। अंत में कालिदास बोस नामक वकील खुदीराम की सहायता के लिए आगे आए। ये मुकदमा 2 महीने तक चला। अंत में खुदीराम को मृत्युदंड मिला। मृत्युदंड का निर्णय सुनते ही खुदीराम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। न्यायाधीश को आश्चर्य हुआ कि मृत्युदंड होते ही ये 19 साल का लड़का शांत कैसे रह सकता है। जज ने पूछा, क्या तुम इस निर्णय का अर्थ जानते हो? खुदीराम ने हंसकर कहा, इसका अर्थ मैं आपसे अधिक अच्छी तरह जानता हूं। जज ने पूछा, तुम्हें कुछ कहना है? खुदीराम ने कहा, बम किस प्रकार से बनता है ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। लेकिन न्यायाधीश को डर था कि कोर्ट में बैठे सारे लोगों को बम तैयार करने की जानकारी खुदीराम से मिल जाएगी, इसलिए उसने खुदीराम को बोलने की अनुमति नहीं दी। खुदीराम को अंग्रेजों के न्यायालय से न्याय की आशा थी ही नहीं, किंतु कालिदास बोस की खुदीराम को बचाने की इच्छा ने खुदीराम की ओर से कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करवा दी। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी खुदीराम के स्वभाव को जानते थे। निर्भय आंखों वाले दृढ़ निश्चयी खुदीराम को देखकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने भी खुदीराम को मृत्युदंड ही दिया। तुम्हें कुछ कहने की इच्छा है? उनसे पुनः पूछा गया। तब खुदीराम ने कहा कि राजपूत वीरों की तरह मेरे देश की स्वाधीनता के लिए मैं मरना चाहता हूं। फांसी के विचार से मुझे जरा भी दुख नहीं है। मेरा एक ही दुख है कि किंग्सफोर्ड को उसके अपराध का दंड नहीं मिल सका। मृत्युदंड के निर्णय के अनुसार सुबह 6 बजे खुदीराम को फांसी के तख्ते के पास लाया गया। उस समय भी उनके चेहरे की मुस्कान कायम थी। शांति से वे उस स्थान पर गए। उनके हाथ में भगवद गीता थी। अंत में एक ही बार उन्होंने वंदे मातरम कहा और उन्हें फांसी लगा दी गई। देश के लिए जान देने की प्रसन्नता के कारण फांसी के दिन 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस का वजन 2 पौंड बढ़ गया था। गंडक नदी के तट पर खुदीराम बोस के वकील कालिदास मुखर्जी ने उनकी चिता में आग लगाई। हजारों की संख्या में युवकों का समूह वहां एकत्रित हुआ। चिता की आग से निकली चिंगारियां संपूर्ण भारत में फैल गईं। चिता की भस्मी को लोगों ने अपने माथे पर लगाया, पुड़िया बांधकर घर ले गए। खुदीराम बोस ही प्रथम क्रांतिवीर हैं जिन्होंने 20वीं सदी में आजादी के लिए फांसी के तख्ते पर अपने प्राणों की आहुति दी थी। मुजफ्फरपुर जेल में जिस मजिस्ट्रेट ने उन्हें फांसी पर लटकाने का आदेश सुनाया था, उसने बाद में बताया कि खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते की ओर बढ़े थे। शहादत के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुलाहे उनके नाम की एक खास किस्म की धोती बुनने लगे। उनकी शहादत से समूचे देश में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी। उनके सम्मान में भावपूर्ण गीतों की रचना हुई जिन्हें बंगाल के लोक गायक आज भी गाते हैं। विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों ने शोक मनाया। स्कूल कॉलेज बंद रहे और नौजवान ऐसी धोती पहनने लगे जिसकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था। खुदीराम बोस को भारत की आजादी के लिए संगठित क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम शहीद माना जाता है। ये एक ऐसे वीर की जीवन गाथा है जिसने भारत को रौंदने वाले अंग्रेजों पर पहला बम फेंका था। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूँ वर्षा सिंह।
2: और मैं हूँ दीपक नेमा। लीजिए प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।

0: मैं हूँ धरा।
1: मैं हूँ बादल। ये तो आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण और मानव के बीच का संबंध हमारे स्वास्थ्य, समृद्धि और अस्तित्व के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है।
0: और आज के समय में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है।
1: हाँ, हमारी आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए हमें अब अपने उन स्थायी चीजों को बनाए रखना बहुत जरूरी है।
0: और ये भी तो है कि पृथ्वी के संरक्षण में हमारी क्या भूमिका है, इसे भी पहचानना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग देना हम सभी का कर्तव्य है, तभी हम एक टिकाऊ दुनिया का निर्माण कर पाएंगे।
0: बादल, तो आज हम श्रोताओं को क्या जानकारी देने जा रहे हैं?
1: धरा, आज तो हम बात करने से पहले एक बहुत ही सुंदर पंक्तियों को सुनाना चाहेंगे, तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि चर्चा किसकी होगी। ये कविता हमने बचपन में सुनी थी।
0: ऐसी बात है तो सुनाओ भाई, हम भी सुनने को तैयार हैं।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। झबर झबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर जैसे तोंद फुलाए, कुछ हाथी जैसे सुन उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रहकर शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहकर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर झर बरसाते हैं पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके चुपके उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल, प्यारे प्यारे मतवाले बादल, प्यारे प्यारे मतवाले बादल।
0: अब मैं भी बता दूं कि ये पहले तो सागर की लहरों पर होते हैं, फिर भाप बनकर आकाश की यात्रा करते हैं और फिर आसमान के राजा बन जाते हैं, है ना?
1: अरे वाह, आपने तो कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कह दी।
0: श्रोताओं, जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो खिड़की के बाहर देखने पर ऐसा लगता है जैसे हम बड़े बड़े रुई के गुच्छों के बीच से गुजर रहे हैं।
1: हाँ, और जब आसमान की ओर धरती पर खड़े होकर देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने फूल गोभी के टुकड़े कर आसमान में फैला दिए हों।
0: सही है, और कभी कभी ये बादल हमें विभिन्न आकृतियों के रूप में दिखाई देते हैं।
1: हाँ हाँ, बचपन में तो हम इन आकृतियों को देखकर भाई बहनों और मित्रों के साथ प्रश्नोत्तर भी करते थे।
0: तो आज हम बात करते हैं बादलों की। ये बादल क्यों है, क्या है, क्या अब पता चला आपको?
1: दरअसल बादल पानी की भाप से बनी बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल के समूह होते हैं।
0: हाँ, और जैसा आपने कही बचपन की बात, तो अक्सर आसमान को देखकर हम कल्पना करते हैं या कहानी कविताओं में भी हम पढ़ते हैं और कल्पना करने लगते हैं।
1: हाँ, ऐसा लगता है जैसे बादलों के पार भी कोई जादुई संसार है जहाँ शांति और खूबसूरती है, और वो जगह दुख और चिंता से परे है।
0: बिल्कुल सही कहा, बचपन में हमें कुछ ऐसा ही लगता था ना। पर विज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो बादल वायुमंडल का एक भाग है जो सूर्य की रोशनी के साथ मिलकर अद्भुत रंग और बनावट में दिखाई देते हैं।
1: सूरज की गर्मी की वजह से पृथ्वी की सतह पर पानी के स्रोतों, नदियों, जलाशय आदि में मौजूद पानी की बूंदें भाप में बदल जाती है।
0: हाँ, इसके साथ ही पेड़ पौधे भी भाप के रूप में कुछ मात्रा में पानी छोड़ते हैं।
1: ये भाप हवा से हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर जाने से ये धीरे धीरे ठंडी होती जाती है
0: और फिर ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाती है। ये बूंदें इतनी हल्की होती है कि ये हवा में तैरती रहती है। बस इन तैरती बूंदों के समूह को ही बादल कहते हैं।
1: यानी वायुमंडल में जब पानी की छोटी छोटी बूंदें और बर्फ के छोटे छोटे कण एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तब बादल बनते हैं।
0: और हाँ, जब बादल छाते हैं तो हमें कितनी ठंडक का एहसास कराते हैं, गर्मी से राहत देते हैं।
1: धरा, क्या तुम जानती हो कि ऐसा क्यों होता है?
0: आप बताइए ना।
1: ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है और पृथ्वी के नजदीक होने से ये हमें दिखाई भी देते हैं और अंतरिक्ष की तरफ से रोशनी को प्रतिबिंबित करते हैं, जिससे हमें ठंडक का एहसास होता है।
0: बादलों के बनने का एक तरीका ये भी है कि पृथ्वी की सतह जब गर्म हो जाती है, इस कारण हवा ऊपर की ओर उठती है। पानी की बूंद एकत्र होकर बादलों का निर्माण करती है।
1: जो हम पहले बात कर रहे थे फूल गोभी के आकार के बादलों की, इस तरह के बादल हमें तब दिखाई देते हैं जब मौसम बहुत अच्छा होता है।
0: और ये बादल सूर्य की रोशनी के कारण अधिक साफ, सफेद और चमकीले रूप में हमें दिखाई देते हैं, जबकि ये होते भी गहरे ही हैं।
1: इन बादलों को क्यूमुलस बादल कहते हैं और अगर मौसम और अधिक साफ होता है तो ये ऊंचाई और आकार में बड़े होते जाते हैं।
0: ऐसे बादल ज्यादातर तटीय क्षेत्रों में दिन के समय बनते हैं, क्योंकि समुद्री हवा नम होती है और फिर सतह गर्म हो जाती है।
1: बिल्कुल, ये बात रात में उलट जाती है क्योंकि तब समुद्र भूमि के मुकाबले गर्म हो जाता है और समुद्र के ऊपर ऐसे बादल बनते हैं।
0: इस तरह के बादल हल्की वर्षा करने में भी सक्षम होते हैं। ये तो हुई साफ मौसम की बातें, लेकिन ठंड के दिनों में अक्सर हम देखते हैं कि धुंध छा जाती है, कुछ साफ दिखाई नहीं देता।
1: जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है और वो ऊपर इकट्ठे होकर पानी की छोटी छोटी बूंदें बनाती है।
0: हाँ, पर कभी कभी परिस्थिति वश ये हवा के बिना उठे ही भाप पानी की बूंदों में बदलकर कोहरे का रूप ले लेता है और वायुमंडल में जमीन की सतह से थोड़ा ही ऊपर फैलता रहता है।
1: हाँ हाँ, हमने सर्दी के दिनों में देखा है कि पेड़ पौधों की पत्तियों से पानी की छोटी छोटी बूंदें टपकती रहती हैं।
0: बिल्कुल सही है, पर इस कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है और हम अधिक लंबी दूरी पर नहीं देख पाते। ऐसे में हमें सड़क पर गाड़ी चलाते समय बहुत एहतियात रखना चाहिए, क्योंकि ये दृश्यता कभी कभी कुछ मीटर की ही रहती है।
1: हाँ धरा, ऐसा इसलिए होता है कि आर्द्रता 100% होने के कारण भाप की मात्रा स्थिर हो जाती है। इससे ज्यादा भाप के शामिल होने के कारण या तापमान से कम होने से मौजूद सघन पानी की जो बूंदें हैं वायुमंडल में कोहरे के रूप में फैल जाती हैं।
0: अपने आकार, आकृति और रंग के अनुसार बादल कई प्रकार के होते हैं, जैसे गोलाकार, बेलनाकार, घन के आकार के, कोमल रेशेदार, भूसे के ढेर के समान, काले, हल्के सुरमई, सफेद आदि। ये वायुमंडल के अलग अलग स्तरों पर पाए जाते हैं।
1: ये तो हम जान गए कि जब हवा नम होती है और उसके अंदर भाप होती है तब बादलों का निर्माण होता है। यदि हवा गर्म है तो उसमें अधिक मात्रा में भाप होती है।
0: हाँ, और जब हवा में मौजूद नमी थोड़ी ठंडी हो जाती है तब भाप और बर्फ एक साथ मिलकर बादल बन जाते हैं और तब बारिश, बर्फबारी, ओलों की वर्षा होती है।
1: हाँ धरा, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था।
0: कोई बात नहीं, इस विषय पर आगे और अधिक विस्तार से बात करेंगे, अभी तो बात सिर्फ बादलों की करते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: आपको पता है बादल बादलों को उनकी ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है?
1: हाँ हाँ, मैंने सुना है सबसे ऊंचे बादल लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये पतले और पूरी तरह से बर्फ से बने होते हैं।
0: हाँ, पर ये वर्षा वाले बादल नहीं होते, बल्कि जब ये आसमान में नजर आते हैं तो सही अनुमान होता है कि मौसम अच्छा और साफ रहेगा।
1: जो बादल लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, पानी की बूंदें ठंडी होने के बाद जब जमने लगती हैं, तब उन ठंडी पानी की बूंदों के समूह से इन बादलों का निर्माण होता है।
0: और ऊंचाई पर ही पाए जाने वाले पतले और एक जैसी परत वाले बादल भी होते हैं, जिसके अंदर बर्फ के बहुत सारे टुकड़े होते हैं, परंतु इनको खोजना मुश्किल होता है।
1: और छोटे छोटे आकार के भी बादल होते हैं जो आकाश में हमें ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बह रहे हों। ये होते तो सफेद हैं, परंतु हमें ग्रे रंग के दिखाई देते हैं। कुछ बादलों की ऊंचाई 2000 से 6000 मीटर की होती है। जब ये आसमान में नजर आते हैं तब ये तूफान या भारी वर्षा होने का संकेत देते हैं।
0: इस तरह के बादल हमेशा समूह में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उन दो बादलों के बीच से सूर्य हल्का हल्का दिखाई देता है।
1: और जब तूफान आने वाला होता है या तेज बारिश या फिर बर्फ वाली बारिश होने वाली होती है, तब इस प्रकार के बादल हमें आकाश में दिखाई देते हैं। ये गहरे रंग के होते हैं।
0: बादल फट गया, ये भी आपने सुना होगा।
1: हाँ हाँ धरा, बिल्कुल सुना है, पर ये होता कैसे है ये हम नहीं जानते।
0: पर ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य की गर्मी के कारण झील, तालाब, समुद्र, नदी आदि का पानी सूखता है। पानी के ये छोटे छोटे कण आसमान में इकट्ठे होकर बादलों का रूप ले लेते हैं।
1: बिल्कुल जानते हैं।
0: तो ये बादल पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, और जब ये बादल आपस में टकराते हैं तो गर्जन के साथ ही इनमें प्रकाश होता है और बिजली चमकती है।
1: हाँ हाँ, ये तो अक्सर बारिश के दिनों में जब मूसलाधार बारिश होती है तब तो ऐसा होता ही है।
0: हाँ, जब ये बूंद बूंद करके गिरने वाला पानी इसी तरह तेजी के साथ इकट्ठा आकर धरती पर गिरता है तो उसे ही बादल फटना कहते हैं।
1: इसे हम आसान भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बलून में बारीक बारीक छेद करें और फिर उसमें पूरा पानी भर दें, तो पहले तो पानी बारिश के हल्की बूंदों की तरह धीरे धीरे उन छेदों से बाहर आकर नीचे गिरेगा, है ना?
0: हाँ, पर अगर इन बारीक छेदों को अचानक से झटके से तोड़ दो तो एकदम सारा पानी पूरे वेग से बाहर आकर नीचे गिरेगा, और इसे ही कहा जाता है बादल फटना, या ये स्थिति बादल फटने जैसी होती है।
1: ये बादल हवाओं के दबाव और रास्ते में आने वाली बाधाओं से टकराकर एकदम फट जाते हैं और अपने अंदर भरा सारा पानी उंडेल देते हैं, और बादल फटने से बारिश इतनी तेज होती है कि उसे मापना भी मुश्किल होता है।
0: बादल फटने को वैज्ञानिक जो वजह मानते हैं उसमें जब एक आवेग के बादल आसमान में किसी ऐसी जगह मिलते हैं जहां गर्म और ठंडी हवाएं दोनों एक तरफ से उन पर दबाव डालती हैं, या जब कोई गर्म हवा का झोंका नमी से भरे इन बादलों से टकराता है तो ये बादल फट जाते हैं।
1: और इसी के बीच बिजली चमकने और तेज आंधी के साथ बारिश होती है। ऐसे में एक सीमित इलाके में ही कई लाख लीटर पानी एक साथ धरती पर गिरता है, जिसकी रफ्तार लगभग 36 किलोमीटर प्रति घंटा होती है।
0: हाँ, और कुछ ही मिनटों में 2 से 3 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है, यानी कुछ ही पलों में आसमान से नीचे उतरकर एक पूरी नदी धरती पर आ गिरती है।
1: इससे उस इलाके में तेज बहाव वाली बाढ़ आ जाती है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर वस्तु को नुकसान पहुंचाती है। ऐसा अक्सर पहाड़ों और नदी वाले इलाकों में ज्यादा होता है।
0: हाँ, क्योंकि उस इलाके में गर्म और ठंडी दोनों हवाएं चलती हैं, और वहाँ से गुजरने वाले बादल इनकी चपेट में आ जाते हैं।
1: तब वहाँ भारी बारिश के कारण ग्लेशियर टूटकर गिरने लगते हैं, जमीन खिसकने लगती है, और घर देखते ही देखते टूटकर जमीन पर आकर धसने लगते हैं।
0: बादल फटने की एक वजह और भी है, वैज्ञानिक इसको बताते हैं। वे ये बताते हैं कि बादल काफी मात्रा में नमी या पानी लेकर आसमान में चलते हैं। जब उनके रास्ते में कोई बड़ी बाधा आती है तब उससे टकराकर ये फट जाते हैं।
1: वैज्ञानिक जो भी बादलों के लिए अनुमान लगाएं या शोध कर बताएं, पर बादलों को देखकर मौसम का पूर्वानुमान लगाना सदियों से प्रचलित है।
0: हाँ, ऋग्वेद में बादलों को वर्षा का अश्व माना गया है, और मौसम का अनुमान पूरी दुनिया में बादलों के आधार पर ही लगाया जाता है।
1: हाँ धरा, और हिंदी साहित्य के कवि घाघ और भड्डरी ने क्या खूब ही कहा है, कारा बादल जीडर पावे, भूरा बादल पानी लावे, शुक्रवार की बदरी बिन बरसे ना जाए, जैसी पंक्तियाँ बादलों को लेकर कही हैं।
0: हाँ, और महाकवि कालिदास ने तो अपनी एक पूरी कृति को ही इन्हीं बादलों को समर्पित कर दिया है। ये कृति है मेघदूतम।
1: वाह, हमारे पुराण सैकड़ों सालों से इन्हीं बादलों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें देखकर, इनकी टोह लेकर, इनकी तह तक पहुंचकर बादलों के रूप, रंग और इनके ठौर ठिकानों के आधार पर ही अपने अनुभव को मौसम के अनुमान में ढाला है।
0: पता है, बादल इसी आधार पर उन्हें वर्गीकृत भी किया गया है, जैसे बादलों में सफेद धागों के गुच्छे जैसे दिखाई देने वाले जिनमें रेशम सी चमक होती है, ऐसे बादलों को पक्षाभ मेघ कहा जाता है।
1: अच्छा, इसी तरह ये मेघ सफेद या भूरे रंग के भी होते हैं। हम जब इन्हें देखते हैं तो लगता है जैसे बादलों के छोटे छोटे ढेर इकट्ठा हो गए हैं। रुई के ढेर जैसे नजर आने वाले इन बादलों को कपासी मेघ कहते हैं।
0: बादल चाहे काले हो या सफेद, हमें ये सदा सम्मोहित करते हैं। जब तेज गर्मी से हम हलकान होने लगते हैं, तब आसमान में इन मेघों के आने की प्रतीक्षा करते हैं।
1: हाँ धरा, बिल्कुल सही कहा। और सबसे अधिक कौतूहल तो हमें बादलों के गरजने और बिजली के कड़कने पर होता है। और जब ये बहुत अधिक जोर से गरजते हैं या बिजली कड़कती है, तो मन में अजीब सा भय भी पैदा हो जाता है।
0: आपकी बात सही है। एक लंबे समय तक तो बादलों का गरजना और बिजली का कड़कना सुनकर इसे दिव्य प्रकोप से भी जोड़ा गया।
1: हाँ धरा, जबकि सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग से सिद्ध किया था। उन्होंने बादलों से बिजली भी इकट्ठा की और बताया कि ज्यादातर बादलों में नेगेटिव चार्ज रहता है और पॉजिटिव चार्ज वाले बादलों की संख्या कम होती है।
0: पर बादलों से दोनों ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होते हैं, और दोनों तरह के बादल जब आमने सामने होते हैं तो उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है और उनके बीच की हवा में बिजली उत्पन्न होती है।
1: हाँ, और यही बिजली गर्जना पैदा करती है। तब हमें आसमान में बिजली की चमक

0: तथा पौधों और जानवरों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान करते हैं। यानी बादल हमारी इस पृथ्वी पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: हाँ, और दूसरा तरीका ये है कि बादलों का पृथ्वी के तापमान पर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये पृथ्वी के तापमान को ठंडा और गर्म दोनों करने में सक्षम होते हैं।
0: वो इस तरह के बादल सूर्य से मिलने वाली किरणों की गर्मी और रोशनी दोनों को रोक सकते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान ठंडा हो जाता है। हम सभी जब बादल छा जाते हैं तो इस तरह की ठंडक को महसूस करते हैं।
1: रात में बादल इसी तरह अपना काम करते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये बादल पृथ्वी को एक बड़े कम्बल में लपेट कर उसके तापमान को प्रभावित करते हैं।
0: हाँ, इस तरह हम कह सकते हैं कि बादलों के द्वारा ठंडा और गर्म दोनों प्रभाव होता है। यानी ये भी साबित होता है कि बादल इस कार्य में शक्तिशाली कारक है, जो पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
1: हाँ धरा, हम ये भी कह सकते हैं कि बादल हमें धरती पर एक ठंडी जलवायु देते हैं, जिसका आनंद हम बादलों के बिना नहीं ले सकते।
0: जी हाँ, ये बादल जहाँ अकाल या सूखा पड़ता है वहाँ बरसते हैं, तो मानव नहीं समस्त प्राणियों और वनस्पतियों की रक्षा करते हैं।
1: जहाँ नदियाँ, तालाब, कुएं, जलाशय आदि पानी के स्रोत सूखने की कगार पर आ जाते हैं, तब ये बादल वहाँ बरस कर उनका भी जीर्णोद्धार करते हैं।
0: किसान तो आकाश में उमड़ते घुमड़ते मेघ देखकर खुश हो जाते हैं और बादल बरसने पर उनकी फसलें लहलहा उठती हैं। पृथ्वी हरी भरी दिखाई देने लगती है।
1: हाँ धरा, बिल्कुल, अच्छी फसलें पैदा होने से धन धान्य और संपन्नता आती है। इससे केवल हम मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु और पशु पक्षियों की प्यास मिट जाती है।
0: तो आज के कार्यक्रम में हमने बादलों के महत्व को जाना। अगले कार्यक्रम में हम फिर अपनी धरती को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली और जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम की परिकल्पना की थी अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, लेखन प्रमिला दिवाकर मुंशी,
0: और मैं थी धरा यानी वर्षा,
1: और मैं था आपका दोस्त बादल यानी दीपक।
0: तो इस कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अभी वक्त है आपसे इजाजत लेने का। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए।
2: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, स्पर्श करते हैं, अपना मानते हैं, क्या वास्तव में वैसा ही है जैसा दिखाई देता है, या फिर ये चेतना के आकाश पर उभरती हुई एक ऐसी छवि है जो सत्य का आभास तो देती है पर स्वयं सत्य नहीं है। आदि शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन भी इसी सत्य की ओर संकेत करता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही परम सत्य है, ये जगत मिथ्या है और जीव का वास्तविक स्वरूप भी ब्रह्म ही है। योग वासिष्ठ पर चर्चा करते हुए आज हम उसी बिंदु पर खड़े हैं जहां जगत की भ्रामक सत्ता के पार उस शाश्वत सत्य का साक्षात्कार होता है जो न जन्मता है न मिटता है। और जब दृष्टि बदलती है तो बंधन भी बदल जाता है। देह रहते हुए भी मुक्ति संभव होती है और देह के पार भी मुक्ति का रहस्य उद्घाटित होता है। यानी तब ये बोध होने लगता है कि मुक्ति कहीं बाहर जाने का नाम नहीं बल्कि भीतर के जागने का नाम है। जब मन की भ्रांतियां शांत होती हैं तब वही संसार जो अब तक बंधन प्रतीत होता था आत्मज्ञान की दृष्टि से सत्य के दर्शन कराने लगता है। तो आइए इसी आत्मबोध की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। आज के योग संवाद में प्रवेश करें उस सूक्ष्म और अद्भुत ज्ञान भूमि में जहां चर्चा होगी जगत की भ्रम रूपता, सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति की, और उस आत्म तत्व की जो समस्त दृश्य जगत के पीछे मौन, अचल और शाश्वत रूप से विद्यमान है। बातचीत के लिए हमारे बीच हमेशा की तरह उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग संवाद कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है इन दिनों योग संवाद कार्यक्रम में। योग वासिष्ठ ग्रंथ खुला हुआ है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जगत की भ्रम रूपता के निरूपण की। हमने पिछले अंक में बात की थी कि विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा था कि वो भगवान श्री राम को उपदेश करें, और ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को जो उपदेश किया था वही उपदेश वो करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वही मैं कहता हूँ जो ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि संसार के भ्रम के निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा क्या था, क्या उपदेश किया था?
1: वशिष्ठ जी से ब्रह्मा जी ने कहा था कि यह जगत संकल्प के निर्माण से निर्मित होता है। आप देखें तो मन में असंख्य विचार आते हैं और जब वह विचार व्यक्ति संकल्प के साथ उस विचार को ग्राह्य कर लेता है तो संकल्प के अनुसार फिर उसके जगत का निर्माण हो जाता है।
0: अच्छा।
1: उदाहरण के तौर पर इस जगत में जहां जहां से आपका मैं और मेरेपन का भाव है तो देखें तो वो आपके संकल्प का परिणाम है। अगर
0: अच्छा।
1: विचार करें तो
0: जी,
1: वो संकल्प ने ही उसे आपका अपना कर दिया और आप अपनेपन के भाव से उससे जुड़ गए। अन्यथा वो स्थान, वस्तु, व्यक्ति उस संकल्प के पूर्व आपका नहीं था, संकल्प के बाद आपका हो गया।
0: जी, जी।
1: तो अंततः देखें तो संकल्प के कारण ही तो वो जगत निर्मित हुआ, वो संसार निर्मित हुआ।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: संसार मतलब संबंधों का एक जो जाल है जिसको हम समाज कहते हैं वो संकल्पों पर ही तो आधारित है।
0: जी।
1: तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि ये जो जगत है संकल्पों से निर्मित हुआ है और जैसे मन का राज्य, मनोराज्य का विलास है ये। यानी आप देखें तो इस जगत में मन ही जो है विलास करता है, और जैसे हम स्वप्न में देखे गए नगर का जो अस्तित्व है
0: जी, जी।
1: ऐसे ही इस जगत का भी अस्तित्व है, लेकिन व्यक्ति इस तत्व पर विचार नहीं करता। मैं थोड़ा सा ध्यान अपने श्रोताओं का इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि हम तीन अवस्थाओं के साक्षी हैं।
0: जी।
1: जागृत अवस्था अगर हमारे संकल्पों से निर्मित हुआ है यानी मनोराज्य का विलास है, तो जब हम स्वप्न देखते हैं
0: जी।
1: तो स्वप्न में जागृत अवस्था के तो दृश्य नहीं होते,
0: नहीं होते जी।
1: तो ऐसे में उस स्वप्न को भी हमने देखा, कोई और साक्षी नहीं है
0: जी, जी।
1: आपके स्वप्न का साक्षी आपको छोड़कर के दूसरा नहीं,
0: दूसरा
1: है,
0: दूसरा नहीं है।
1: तो जब दूसरे से आप अपने स्वप्न के बारे में कहेंगे तो कहेगा अरे क्या बात करते हो, आप तो अपने बिस्तर पर मेरे सामने सोए हुए थे, तो ये सब नगर कहां से निर्मित हुआ
0: जी, जी।
1: तो आप कहेंगे कि आपके लिए नहीं हुआ, मैं तो खुद साक्षी रहा हूं, मैं कैसे नकार दूं। यही मिथ्या होने का अर्थ, चूंकि कई बार शब्दों के अर्थ अस्पष्ट होने से या शब्दों के अर्थ में स्पष्टता न होने से हम गलत अर्थ निकाल लेते हैं। मिथ्या का अर्थ नहीं होना नहीं है,
0: नहीं होना नहीं है जी।
1: कहते ना ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जगत को नकार दिया गया। जगत का अस्तित्व जैसे स्वप्नवत आपका उसका अस्तित्व आपको दिखता है,
0: आपके लिए उसका अस्तित्व है,
1: जागने के बाद उसका अस्तित्व मिटता है।
0: जी जी।
1: तो अगर आप स्वप्न के अस्तित्व को जागने के बाद नकार देते हैं तो सोते वक्त स्वप्न देखने के समय क्या जगत का अस्तित्व नकार नहीं दिया जाता? इस पर विचार क्यों नहीं करते? यानी जगत भी एक सपने की तरह ही है, हुआ कि नहीं? अगर जगत अपने अस्तित्व को बनाए रखता तो स्वप्न कैसे देखते आप अपने बिस्तर पर बैठे बैठे और पूरी दुनिया घूम रहे हैं? या स्वप्न में समय की कोई सीमा नहीं होती?
0: जी जी।
1: स्वप्न में मरे हुए लोग भी बात करते हैं और उनके साथ जिया जाता
0: आप
1: है,
0: जीते हैं,
1: जीते हैं। और उस समय सच लगता है कि हाँ वो हमारे साथ मौजूद है।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरीके से देखेंगे तो वो भी एक मन का राज्य है। और एक अवस्था और है जिसको हम कहते हैं निद्रा की अवस्था।
0: जी।
1: निद्रा की अवस्था में किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर तक का ज्ञान नहीं होता। जब शरीर का ज्ञान नहीं होता तो शरीर से संबंधित किसी ज्ञान के होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
0: सवाल ही नहीं होता। जी।
1: तो अब आप देखिए कि हम इन तीन अवस्थाओं का साक्षी होने के बाद भी जगत को ही सत्य मानते हैं और बाकी इन दो अवस्थाओं को जो हम लगातार जी रहे हैं लेकिन उस पर विचार नहीं करते। जबकि हमने एक कहते हैं ना कि सारे जगत का मिट जाना या कह सकते हैं अभाव की सत्ता निद्रा की अवस्था है, जिसमें देह का भी अभाव होता है। तो देह के अभाव को भी हम जानते हैं, स्वप्न को भी हम जानते हैं, जागृत अवस्था को भी हम जानते हैं, लेकिन मानते सिर्फ जागृत अवस्था के सत्य को। तो क्या ये सही ज्ञान है? ये देखें तो एक प्रकार का स्वप्न के नगर जैसा नहीं है। यही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वशिष्ठ जो ज्ञानी लोग होते हैं वो जैसे स्वप्न देखने के बाद स्वप्न का राज्य आपका चला जाए तनिक भी आपको क्षोभ नहीं होता, ऐसे ही जगत के मिटने का भी उन्हें क्षोभ नहीं होता, क्योंकि वो उसी की तरह जगत को भी देखते हैं।
0: तो एक दृष्टि है ये।
1: और एक न एक दिन जगत छूटता ही है, चाहे जगत में कितना बड़ा साम्राज्य किसी का हो, कितना बड़ा पद हो, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा हो, कितना नाम कमाया हो आपने, वो कहते नाम घूम जाएगा है ना, तो घूम जाता है नाम के नहीं घूम जाता है।
0: बिल्कुल,
1: तो अंततः एक सच तो ये है। तो आप कहते हैं जिस दिन घूमेगा उस दिन घूमेगा, आज हम क्यों इस पर विचार करें? आज क्या, मैं कहता हूं रोज घूमता है। जब आप सोते हैं तो आपके जगत का सत्ता कहाँ रहता है? आप जब नींद में जाते हैं तो स्वप्न और जागृत अवस्था दोनों समाप्त हो जाता है।
0: जी जी।
1: तो इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी होने के बाद सिर्फ एक ही अवस्था को सच मानना ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है कि आप समग्र ज्ञान पर विचार करें, मनन करें, उसका निधिध्यासन करें।
0: अच्छा, इसमें इहलोक और परलोक की बात भी आई है।
1: जी।
0: तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि इहलोक और परलोक की जो अवधारणा है वो कहाँ प्रकाशित होती है और क्या है ये?
1: देखिए, इहलोक और परलोक की अवधारणा योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं कि वो हृदयाकाश में प्रकाशित होती है। और इहलोक मतलब इस लोक में जो आप देख रहे हैं, जो जागृत अवस्था में आप देख रहे हैं, वो इस लोक को ठीक करने का जो प्रयास करते हैं, जिसको गीता में भगवान ने कहा है अनन्यास चिंतयन्तो माम यो जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। कि मैं उसके योग और क्षेम का वहन करता हूँ। योग और क्षेम का मतलब क्या हो गया कि जो नहीं है उसको हम इस जगत में पाना चाहते हैं लोक में, और जो है वो बना रहे ये चाहते हैं। जो है वो बना रहे इसको क्षेम कहा गया, और जो नहीं है उसको पाने के लिए प्रयास करना और प्राप्त करना इसे योग कहा गया। तो इन दोनों का वहन मैं करता हूं, लेकिन जो अनन्य भाव से अन्य दूसरा कोई नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान है। योग वासिष्ठ विशुद्ध रूप से ब्रह्म विद्या है, और भारत में जो योग है वो ब्रह्म विद्या ही है योग। तो कह रहे हैं कि जो अन्य भाव से, यानी जो परमात्मा यानी उस साक्षी को जानने के अतिरिक्त और कुछ जानने योग्य नहीं है, यही गेय है। क्या? आपका स्वरूप, आपका आत्मतत्व। तो अगर जिसको आपने जाना और अन्य भाव से आप उसको जानते हैं तो उसके योग क्षेम का उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो मैं ही वहन करता हूं, ऐसा भगवान ने कहा। तो जो आपने इहलोक की बात की तो इहलोक में योग और क्षेम की व्यक्ति चिंता करता है। परलोक की बात हम करें तो जब हम इस लोक में अपने आयु का पूरा भोग कर लेते हैं तो शेष जो हमारी वासनाएं रह जाती हैं, जिसको हम मतलब नहीं जी पाते या नहीं भोग कर पाते, तो उसको हम परलोक में उसकी कल्पना करते हैं, जिसके लिए हम स्वर्ग और नरक की संकल्पना की बात करते हैं। और इस लोक को अनुशासित करने के लिए नर्क की कल्पना की गई, या ऐसा सोचा गया कि नर्क एक ऐसी जगह है जहां अगर आपने शास्त्र विहित सिद्धांतों का पालन नहीं किया तो आप वहां जाएंगे, और अगर शास्त्रानुकूल आप कर्म किए तो स्वर्ग में जाने की बात नहीं, आप यहीं स्वर्ग जैसा सुख महसूस करेंगे।
0: जी जी।
1: तो इहलोक परलोक दोनों को प्रकाशित करने वाला जो हृदय का आकाश है, क्योंकि हृदय भाव का जगत है।
0: जी।
1: और आप देखें तो जगत में बिना भाव के आप जगत से जुड़ते नहीं है, जैसे उदाहरण के तौर पर किसी भूमि के टुकड़े का जब हिस्सा आप अपने नाम करवा लेते हैं तो वो आपकी भूमि हो जाती है, उसके पहले आप वहां से निकलते हैं आते जाते हैं, उस भूमि पर कुछ भी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका वहां भावात्मक लगाव नहीं है।
2: वही बात देश का भी,
1: वही कहा देश का है, वही बात व्यक्तियों का है कि जिनको आप अपना मानते हैं कि हमारे अपने लोग हैं, तो उनके साथ क्या है भावनात्मक संवाद है, भावनात्मक जुड़ाव है। और भाव का स्थान क्या है? हृदय। इसलिए कहा कि ये हृदय आकाश में प्रकाशित होते हैं क्योंकि तभी आप जुड़ोगे किसी चीज से जब आपकी भावना जुड़ेगी,
2: भावना जुड़ेगी। जी।
1: इसको समानुभूति कहा गया, जिसको एम्पैथी अच्छा। कहते हैं। हाँ, हाँ, एम्पैथी और सिंपैथी को लेकर के मैंने देखा है अक्सर लोगों में द्वंद होता है। मैं एक बड़े अच्छे उदाहरण से आपको दूं तो जैसे हम सभी ये जानते हैं कि हमारे श्वास लेने का जो साधन है वो वृक्ष हैं।
2: जी।
1: लेकिन जब वृक्ष कटते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
2: जी।
1: ये जानते तो आप हैं कि वृक्षों से श्वास मिल रहा है, वृक्ष के कटने पर फर्क नहीं पड़ता, तो इसको कह सकते हैं ये आपकी एक प्रकार की वृक्षों के प्रति सिंपैथी है। लेकिन जिस वृक्ष को आपने लगाया हो जब वो कटेगा तो उसके लिए आप अपना अथक प्रयास करेंगे कि इस तरीके से इसको बचा लें, क्योंकि उस वृक्ष के साथ एक अपनापन भाव का जुड़ा हुआ है जिसको एम्पैथी कहते हैं। तो सिंपैथी एम्पैथी ये व्यक्ति को ठीक से समझना चाहिए।
2: जी। ये बताएं कि संसार का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है, क्या बताया गया है योग वासिष्ठ में?
1: योग वासिष्ठ में उन्होंने कहा कि संसार असार है, वासना के भीतर अन्य अनेक शरीर और उनके भीतर भी एक दूसरे शरीर, ये संसार एक केले के वृक्ष की त्वचा के समान है। जैसे आप उतारते जाइए त्वचा, जैसे प्याज के छिलके से भी कहा जाता है, तो आप एक एक छिलके को हटाएंगे तो अंत में प्याज बचेगी ही नहीं। तो ऐसे ही ये संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्थाई है, क्योंकि आप देखें एक बच्चा जब समझदार होता है तो समझदार होने के साथ साथ उसके रिश्ते की परत दर परत उसके जीवन में चढ़ती चली जाती है। फिर वो माता पिता को समझता है, भाई बंधु को समझता है, मित्रों को समझता है, फिर वो योग्य होता है, योग्यता पद, फिर शादी होती है, बच्चे। तो ये सब एक आवरण, एक से एक उपाधियां आपके ऊपर चढ़ती चली जाती है। अगर इन उपाधियों को हटाया जाए तो अंत में आपकी निरुपाधिक सत्ता बचेगी, जिसकी कोई उपाधि ही नहीं है ना, उसका क्या उपाधि है। जी
2: अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि संसार का भ्रम किसे होता है?
1: संसार का भ्रम जीवित और मृत जीवों को संसार का भ्रम होता है।
2: जीवित और मृत जीवों को। अच्छा,
1: जैसे उदाहरण के तौर पर आपने जब कहा कि आचार्य शंकर की बात कही, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या की बात, तो आचार्य शंकर ने जब वेदांत का निरूपण किया या उन्होंने व्याख्या की तो जीव कहा गया कि जब ब्रह्म अविद्या से युक्त हो जाए, यानी उस पर अविद्या का आवरण हो जाए, तो वो जीव बन जाता है। और अविद्या के आवरण से जीव और माया के आवरण से ईश्वर बन जाता है। देखिए तीन स्थिति हो गई, ब्रह्म है तो एक ही ब्रह्म, लेकिन जब ब्रह्म पर माया का आवरण आया तो ईश्वर बन गया। तो कहते हैं कि माया से ये पूरा संसार रचा हुआ है, ठीक है, ये माया का संसार रचने का सामर्थ्य ईश्वर में है। और जीव अविद्या के नाते ब्रह्म है लेकिन वो अपने को जीव मानता है। तो जीवित और मृत की बात यहाँ की गई, इसलिए की गई कि आपको ये शरीर जो मिला है, मतलब ऐसी इच्छाएं, ऐसी वासनाएं जिसकी आपने भोग नहीं की थी, उस वजह से आपको फिर से शरीर मिला भोग के लिए। और फिर आप मर गए, मोक्ष नहीं आपने पाया या उस सत्य का ज्ञान या तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो फिर मरने के बाद भी आप वासना के साथ मरे हैं, इसलिए फिर आपको एक शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए जो भ्रम होता है संसार में वो जीव मृत और जीवित जीवों को होता है। यानी ये जो अज्ञानता से युक्त जो ब्रह्म तत्व है जिस पर अज्ञानता का आवरण लगा हुआ है, उसे ही ये भ्रम होता है, अन्यथा अज्ञान ही भ्रम है। उदाहरण के तौर पर वेदांत ये कहता है कि अज्ञान के हटते ही आप जो हैं वो तो हैं ही, ऐसा नहीं कि आपको ब्रह्म होना है।
2: हाँ,
1: आप ब्रह्म हैं,
2: ठीक
1: है। जैसे रस्सी में सर्प का उदाहरण ये खूब दिया जाता है।
2: जी।
1: आप विचार करिए कि एक व्यक्ति जो सर्प के भय से भयभीत है, वो तभी तक भयभीत है जब तक उसे रस्सी का ज्ञान नहीं है। रस्सी का ज्ञान होते ही सर्प का भय तुरंत समाप्त हो जाता
2: है
1: ना। तो ऐसे ही जैसे ही जीव की अज्ञानता मिटेगी, वो अपने को ब्रह्म जानेगा। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि कोई पढ़ करके समझने का विषय नहीं है, या पढ़ करके समझने और प्रवचन करने से आता भी नहीं है। ये जब अज्ञान का आवरण हटता है तो आप ब्रह्म है, ठीक वैसे ही जैसे बादल के हटते ही सूर्य उगता और डूबता नहीं है,
2: वो तो है,
1: वो है, ठीक है। लेकिन धरती का जो हिस्सा उसके सामने आ गया वहां पर आपने सूर्योदय कह दिया, और जो हिस्सा उससे दूर हो गया या उसके सामने नहीं है उसको आपने सूर्यास्त कह दिया, जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त होता नहीं है।
2: होता नहीं।
1: जी। तो ऐसे ही है ये, क्योंकि सूर्य है, बस आवरण आ गया है बादल का, बादल हटेगा फिर से वो प्रकाशित है।
2: बिल्कुल।
1: तो ऐसे ही आप ब्रह्म हैं, ब्रह्म होने के लिए कुछ करना नहीं है, बस अज्ञान का जो आवरण है, और यही आवरण आपको जीव बना रखा है, और इसी आवरण के नाते जन्म और मृत्यु होती है, इसलिए जीवित और मृत जीवों को भ्रम होता है।
2: बहुत ही सुंदर। अच्छा ये बताएं कि जगत का जो परम सत्य है वो क्या है?
1: परम सत्य परमात्मा है। वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, परमार्थ सत्य परमात्मा रूपी विशाल महासागर में बारंबार वे पुरानी और नई सृष्टि रूप असंख्य तरंगें उठती और विलीन होती रहती हैं। यानी परमात्मा में ही असंख्य तरंगें, परमात्मा की यहां थोड़ा सा महासागर से उपमा उन्होंने दी है कि जैसे महासागर में तरंगें उठती हैं और विलीन होती हैं, ज्वार भाटा जिसे कहते हैं, ठीक है, तो वो उठती विलीन होने से वो सागर नहीं है, ये नहीं कह सकते आप, है तो वो सागर ही, सागर का ही हिस्सा है, तरंगे सागर से अलग नहीं,
2: अलग
1: है,
2: नहीं है।
1: ऐसे ही जो परमार्थ सत्य परमात्मा है उससे अलग यहाँ कुछ भी नहीं है। मुझे कल ही कहीं ये बात आई तो किसी ने मुझसे पूछा कि आत्माएं अनंत हैं, कई लोग इस तरह की भी मान्यताओं के साथ हैं।
2: अच्छा।
1: आत्मा कभी भी अनंत नहीं है, जैसे सागर में जलराशि एक ही है चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन उसमें तरंगों के ऊंचा उठने नीचा गिरने को अगर आप देख रहे हैं तो तरंग के वजह से जलराशि नहीं बदल गई। जैसे सोने से बनाए गए आभूषण विभिन्न नाम और रूप के हो सकते हैं लेकिन उससे सोना नहीं बदला, ऐसे परमात्मा जो चैतन्य है, जो ब्रह्म है, वो एक ही है। इसलिए सर्वम खलविदम ब्रह्म, यही नाते ये भारत का जो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो ये मतलब ऋण है, ये पूरा दुनिया जो है इस बात को आज विज्ञान भी उसी के करीब पहुंच रहा है। क्वांटम फिजिक्स तो कहीं कहीं मतलब देखें तो वेदांत की ही बात करने लगा है कि ब्रह्म जो सत्य है वो एक ही है, वो नहीं अलग अलग है, लेकिन अलग अलग जो ये रूपों में दिखाई दे रहा है वो तरंगों के नाते दिखाई दे रहा है कि तरंगे बन रही हैं बिगड़ रही हैं, लेकिन परमार्थ जो सत्य है परमात्मा, उस महासागर में तरंगे उठती और विलीन होती रहती हैं।
2: अच्छा मैं जब योग वासिष्ठ के पन्ने पलट रही थी तो एक बड़ी रोचक सी बात इसमें दिखी
1: जी।
2: मैं चाहती हूँ कि वो जरूर हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि जब वशिष्ठ जी उपदेश कर रहे थे भगवान श्री राम को उस समय कौन सा युग चल रहा था?
1: आपने ये सुंदर सवाल किया, ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है। योग वासिष्ठ का सौंदर्य ये है कि इसमें कहानियों पर कहानियां निकलती चली
2: जी,
1: जाती
2: जी,
1: हैं।
2: जी।
1: जिस रहस्य को अगर हम नहीं समझे तो बहुत भारी चूक कर देंगे, और मैं समझता हूँ इस नाते ये ग्रंथ जो है आम लोगों का ग्रंथ नहीं बन पाया। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, कह रहे थे जिस समय वशिष्ठ जी राम जी को जब उपदेश कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि इस समय ब्रह्म कल्प का अवयव भूत 72वां त्रेता युग चल रहा है।
2: 72वां
1: त्रेता युग उस समय जब वो कर रहे थे उपदेश, यह पहले भी अनेक बार हो चुका है और आगे भी अनेक बार होता रहेगा। यह वही आने वाला त्रेता युग है और उससे विलक्षण भी है। ये जितने लोग हैं वे पूर्ववत हुए हैं और उनकी अपेक्षा नवीन भी हैं। अब देखिए, पहले भी हैं और उनकी अपेक्षा नवीन भी हैं, ऐसा बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि राम, ऐसा नहीं है कि तुम और मैं इस बार ही आए हैं। वो कहते हैं कि मैं भी कितनी बार वशिष्ठ के रूप में उत्पन्न हो चुका हूं और आगे भी होऊंगा, और तुम भी कितनी बार राम के रूप में अवतीर्ण हो चुके और आगे भी हो गए।
2: अच्छा।
1: लेकिन आम जनता सोचती है कि राम का अवतार एक बार हुआ है, तो यहीं पर ये चूक हो जाती है। और उस ब्रह्म तत्व को समझने के बजाय हम अयोध्या के राजा राम की कथा तक अपने आप को समेट लेते हैं। भारत में तो देखें जब विवाह होता है तो उसमें हम लोग जब वर वधु दोनों को उपमा देते हैं तो लक्ष्मी स्वरूप वधु कहते हैं और विष्णु स्वरूप वर कहते हैं। विष्णु का ही अवतार होता है राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, विभिन्न रूपों में।
2: जी, जी, जी,
1: तो ऐसे में आप देखें कि भारत में ऋषि कितना बड़ा दृष्टा था कि जब भी एक स्त्री पुरुष के मिलन की बात हो विष्णु और लक्ष्मी के मिलन के रूप में देखता था।
2: जी, जी,
1: इसका मतलब ये हुआ, ये बात कही जा रही है कि राम मतलब हर वो व्यक्ति जो मतलब विष्णु स्वरूप है या हर वो स्त्री जो लक्ष्मी स्वरूप है, तो ये बार बार अवतार ले रहे हैं। और ये 72वां जो त्रेता युग है जिसमें अभी आप हमसे योग वासिष्ठ की कथा सुन रहे हैं और इसके पहले भी हम लोग हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, तो कितनी सुंदर बात है ये।
2: बहुत ही सुंदर जी,
1: विचारणीय है।
2: जी जी। अच्छा, मनुष्य संसार में बहुत से प्रयास करता है लेकिन तृप्ति किसी को मिली नहीं, ये चर्चा हमने पहले बहुत बार की
1: जी।
2: तो बताएं आपकी तृप्ति किसे और कैसे मिलती है?
1: देखिए, तृप्ति तभी होगी जब जीव का अविद्या रूपी आवरण जो मिट जाए। सीधी सी बात, जैसे आपने देखा होगा अभी हम लोगों ने चर्चा की है कि भ्रम किसे होता है
2: जी।
1: तो हमने कहा जीवित और मृत जीवों को।
2: हाँ हाँ।
1: तो जीवित और मृत जीव जीव क्यों है? अविद्या के आवरण से। तो अविद्या का आवरण जैसे ही मिटेगा अंतःकरण एकाग्र होगा। अंतःकरण में एकाग्रता इसलिए नहीं होती कि जीव कभी अपने को शिव मानता ही नहीं है। निर्वाण शतकम में आचार्य शंकर कहते हैं चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, तो शिवोहम हम शिव हैं, हाँ शिव हैं, लेकिन हमारा जो जीव भाव है ये इसी अविद्या के आवरण से ढक जाने की वजह से मिट नहीं रहा है और अंतःकरण एकाग्र नहीं हो पाता, क्योंकि जब अविद्या होगी तो अविद्या तो चंचल बनाएगा ही आपको, चित्त कोच की चंचलता। तो कहते हैं जिसके सभी संकल्प विकल्प शांत हो चुके हों, क्योंकि संकल्प से जगत बनेगा, अभी हमने शुरू में देखा है, तो और संकल्प के साथ विकल्प भी आएगा, तो संकल्प विकल्प के शांत हुए बिना आप अपने स्वरूप भूत यानी तत्व को सच्चिदानंद घन परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे, उस चिदानंद घन को नहीं जान पाएंगे। सच्चिदानंद जो हम कहते हैं, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ये तभी हो सकता है जब हमारा संकल्प विकल्प शांत हो, अविद्या का आवरण हट जाए और अंतःकरण एकाग्र हो।
2: क्योंकि सुन तो हम भी रहे हैं, हाँ, हाँ, हम, लेकिन कहाँ हमारा आचरण उस तरह का है,
1: इसलिए कि हम अविद्या को ही जी रहे हैं ना।
2: जी, जी, जी,
1: हम अविद्या से कभी अपने को कहाँ मानते हैं कि हम ब्रह्म हैं, कहाँ मानते हैं कि हम सर्वव्यापी हैं, हम तो अपने को सीमित करते हैं। आप देखिए बुद्धि कभी भी आपकी सर्वव्यापकता को स्वीकार करने की स्थिति में है ही नहीं। मैं कहूँ कि आप वृक्ष में भी हैं, आप आकाश में भी हैं, सब आप ही हैं। जब वो कहते हैं ना, जब विराट रूप दिखाया भगवान ने, तो ऐसे में अर्जुन क्या हुआ, डर गया। तो ऐसे में अगर कोई ज्ञान आपको दे दे या कोई ऐसी दृष्टि दे दे जिसमें पूरे जगत में आप अपने को और जगत को अपने में देखने लगे, तो क्या ये मस्तिष्क उसे बर्दाश्त कर पाएगा, आदमी तो विक्षिप्त हो जाएगा। तो ऐसे में उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, और वो दिव्य दृष्टि ही आपको ब्रह्म तत्व से जोड़ती है या ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत कर देती है।
2: अच्छा शशिकांत जी, एक सवाल मेरे मन में है कि मुक्त महात्मा मुनि की स्थिति कैसी होती है?
1: हाँ, आपने ये सुंदर कहा। कहते हैं कि जब वशिष्ठ जी संबोधित करते हैं राम को, कहते हैं सौम्य श्री राम, समुद्र की जलराशि शांत हो या उत्ताल तरंगों से युक्त, दोनों दिशाओं में उसकी जलरूपता समान ही है, उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। उसी तरह देह में रहते हुए और उसके न रहने पर भी मुक्त महात्मा मुनि की स्थिति एक सी होती है। अब ये देखिए, जो ये तीन उपमा है, मुक्त महात्मा और मुनि, अब देखिए मुक्त कौन है, जो ये जानता हो कि देह के रहने पर और देह के नहीं रहने पर हमारी स्थिति एक सी है, फिर वो देह में कैसे बधेगा, नहीं बधेगा। महात्मा वही है जो आत्म तत्व का साक्षात्कार कर ले या उसी के साक्षात्कार में निरंतर तल्लीन हो, अभ्यासरत हो, उसी का श्रवण मनन ध्यान करता हो, वो महात्मा हो गया। और मुनि भी इसी तत्व का साक्षात्कार करने के लिए लगातार एक ही भाव में रहता है। तो कहते हैं कि इन लोगों को देह के रहने और देह के न रहने पर भी अपनी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन वैसे ही नहीं दिखता जैसे समुद्र की जलराशि के शांत होने या तरंगों में होने पर कोई उनमें अंतर नहीं है, वैसे ही देह के होने या नहीं होने पर इनके पर भी कोई अंतर नहीं है। यानी वो देह में रहते हुए ही जीवन मुक्त है या विदेह मुक्त है।
2: तो यही मैं पूछने जा रही थी कि सदेह और विदेह मुक्ति की बात इसमें आई, क्या तात्पर्य है?
1: आपने बहुत गूढ़ विषयों को उठाना शुरू कर दिया है। तो कहते हैं जिसने सत्य को मानकर भोगों का आस्वाद ही नहीं किया, उस पुरुष में भोगों की अनुभूति कहां से होगी।
2: अच्छा,
1: जिसने मतलब ये जान लिया कि देह के बिना या देह के रहते हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जब भी वो किसी विषय का भोग करेगा तो वो तो ये नहीं मानेगा कि मैं इसका भोगता हूँ, वो तो कहेगा देह भोगता है। उदाहरण के तौर पर आप किसी रस को लेते हैं तो उसका कारण जिह्वा है, तो जिह्वा शरीर का हिस्सा है ना। चेतना को आप भोगता बना दें तो गलत होगा ना, वो तो रस को भी जानता है, स्पर्श को भी जानता है और सबसे मुक्त भी है, तभी वो सबको जानता है, इसीलिए उसको सर्वव्यापी सर्वज्ञाता कहा गया। आप सभी को जानने का सामर्थ्य तभी रख सकते हैं जब आप किसी को जानने का दावा ना करें। आप जब किसी को जानने का दावा करेंगे तो आप एक में सिमट गए। सबको जानने वाला सबसे अलग होगा, है ना, यही मुक्ति है।
2: हाँ हाँ।
1: तो आपने जो सुंदर सवाल किया कि जीवन मुक्त और विदेह मुक्त, ये दोनों में भेद जो है वो मात्र अज्ञान का है। अज्ञान के नाते वो जीव है, ज्ञान हटा तो वो देह में रहते हुए भी ब्रह्म जैसा आचरण करेगा, और देह छूट जाएगा तो फिर देह जिसका छूटा वो तो देही है ही नहीं, देह का तो देह है ही नहीं।
2: जी जी,
1: देह तो अलग है, प्रकृति का है, पंचभूतों का है, पंचभूतों से बना है, पंचभूतों से पोषित होता है और पंचभूतों में ही मिल जाएगा। देह को आप ध्यान से देखें तो पांच तत्वों से ही इसका पोषण होता है, पांच तत्वों में ही इसकी स्थिति है। अगर आपको कोई कहे कि वायु के बिना क्या देह रख पाएंगे,
2: नहीं
1: रख सकते। क्या अन्न के बिना देह रह सकता है, नहीं रहेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि लोग इसी देह को जलाने तपाने में लगे हुए हैं, देह मिला था किस लिए? देह मिला था उस अद्वय को जानने के लिए, लेकिन आपने अद्वय को जानने के बजाय देह पर ही अपनी सारी बुद्धि लगा दी कि कैसे इसको सुखाएं, कैसे इसको पंचाग्नि में तपाएं। कितना बड़ा ये भ्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा। इसी को कबीर साहब कहते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, है ना। देह मिला था एक साधन, और साधन से साध्य को सिद्ध किए बिना आप साधन पर ही अपनी पूरे विवेक को लगा रहे हैं कि कैसे हम साधन को ठीक करें। अरे साधन को कितना भी ठीक कर लो, एक दिन साधन मिट जाएगा जब पांच तत्वों से मिला है और पांच तत्व परिवर्तनशील हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। पर संसार का मतलब है संसरत इति संसारः, जो हर पल संसरण कर रही है, गति कर रही है। तो देह की अवस्था नहीं बदल रही है क्या भाई? हम कहते हैं आप अपनी अवस्थाओं का ज्ञान कर पाए ना कर पाए, लेकिन जागृत स्वप्न और सुषुप्ति जो अभी हमने पहले बात की है, इसका तो परिवर्तन देख ही रहे हैं कि आप राजा होंगे जागते वक्त, लेकिन हो सकता है सपने में भिखारी हो जाए, और निद्रा में तो राजा भिखारी दोनों से मुक्त होंगे।
2: बढ़िया।
1: वहां तो कोई राजा रह के सो नहीं सकता और भिखारी रह के नहीं सो सकता, दोनों वहां विदेह हैं। तो यही जीवन मुक्ति और सदेह मुक्ति और क्या कहते हैं विदेह मुक्ति।
2: जो विदेह मुक्ति की बात आई, तो जैसे जनक जी को विदेह कहा जाता है, तो वही स्थिति होनी चाहिए ये हम
1: बिल्कुल बिल्कुल वो हो सकती है, हो सकती है। ज्ञान वही कहा ना कि दोनों के बीच का भेद अज्ञान है। जनक को ज्ञान, वो कभी भी उनका ज्ञान अज्ञान का आवरण उनको ढका नहीं, इसलिए वो देह में रहते हुए विदेह कहलाए। और बाकी जो लोग हैं, ठीक है, वो देह में रहते हुए हो सकता है कि देह के व्यवहार में कभी कभी आसक्त या विरक्त हो जाते हों, लेकिन जनक की स्थिति विदेह इसलिए कही गई कि उनके ज्ञान का जो तत्व था वो हमेशा, उनका सूर्य हमेशा प्रकाशित रहा, जो आत्मज्ञान, वो इसी को आजकल लोग बड़ा, एक वर्ड बड़ा सुना होगा आपने भी, इनलाइटेंड कहते हैं कि इनलाइटेंड है ये। इनलाइटेंड का मतलब ये हुआ कि जिसका कभी ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के आवरण से ढका ही नहीं। और यहाँ पर मुझे आश्चर्य होता है उन मित्रों को जब मैं देखता हूँ कि वो शरीर के आधार पर ही किसी के प्रकाशित और अप्रकाशित होने का प्रमाण देते हैं, और चेक करते हैं शरीर को देख करके, अच्छा इनका ऐसा व्यवहार है तो ये प्रकाशित है, और ऐसा व्यवहार है तो ये अंधकार में, अज्ञान में। अरे भाई आप किसको देख रहे हो? अष्टावक्र जी ने इसी बात पर तो भरी सभा में अट्ठहास किया था जब उनके शरीर को देखा लोगों ने और हंस पड़े।
2: जी जी जी।
1: तो उन्होंने कहा कि जनक मैंने तो सुना था कि आपने विद्वानों की सभा बुलाई है, लेकिन ये हाड़ मांस के पारखी हो सकते हैं, ये हाड़ मांस देख रहे हैं मेरा। अगर ये अद्वैय ज्ञान देख पाते तो जो जिए हैं वो मैं हूँ, है ना। इनको हंसी नहीं आती, सारे लोग उस पर चुप हो गए। और जनक जी ने कहा कि ये कम उम्र का बालक अद्वैय ज्ञान को जानता है, और बाकी लोग द्वैत में फंसे हुए हैं, देह और आत्मा के द्वैत में।
2: जी जी। अच्छा, बहुत कम समय रह गया है, तो मैं चाहती हूँ बहुत संक्षेप में आप बता दें कि आनंद की प्राप्ति जो कि हर मनुष्य चाहता है कैसे होती है।
1: हाँ, यहाँ पर ये बहुत सुंदर आपने सवाल किया। जैसे हमारे यहाँ एक धारणा ये है कि परमात्मा को हम लोग जब अपने पुरुषार्थ से चीजें अर्जित नहीं कर पाते तो हम दैवधीन कर देते हैं, दैवाधीनम कर देते हैं। यहाँ पर वशिष्ठ जी ने कभी भी इस बात को कहा, ये प्रयत्न साध्य है। अच्छा, गोस्वामी जी ने भी कहा है बड़े सुंदर शब्द में कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कहते हैं देवताओं तक को दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य का तन मिल जाना, इससे बड़ी परमात्मा की और कृपा हो ही नहीं सकती। अगर 84 लाख योनियों की बात हमारे ऋषियों ने गुणियों ने किया है, तो 84 लाख योनि में एकमात्र ऐसी योनि है मनुष्य योनि जो अज्ञान के आवरण को छीन करके अपने आप को प्रकाशित कर सकती है।
2: बिल्कुल।
1: अब वो अज्ञान का आवरण आप सोचोगे कि परमात्मा के अधीन है, वो आपके प्रयत्न के अधीन है। आप बार बार इसका अभ्यास तो करो कि आप ब्रह्म हो। आप तो बार बार अपने जीव होने का अभ्यास करते करते मर जाते हो, और मरने के बाद भी भ्रम में रहते हो। जो अभी उन्होंने पूछा भ्रम किसे है, कहते हैं जीवित और मृत जीवों को। तो जीव भाव से मुक्त हुए बिना शिवत्व की अनुभूति कैसे होगी? और जिसे शिवत्व की अनुभूति होगी वो आचार्य शंकर जैसा गाता रहेगा, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, न बंधन है न मोक्ष है, हम तो शिव रूप हैं, शिवोहम हम ही शिव हैं।
2: बहुत ही सुंदर। तो शशिकांत जी, बहुत सुंदर चर्चा रही आज की, आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।
1: नमस्कार।
2: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की जगत की भ्रम रूपता, सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति की। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

बनारस घराने की कुछ खास कजरी, सावन, झूला, हिंदोला, ये सारी चीज़ें आपको पारंपरिक सुना रहे हैं जो हमको हमारे गुरु विदुषी गिरिजा देवी जी से मिली है। पहले मिश्र पीलू में कहनवा मानो राधा रानी, ये सारी रचनाएं काव्यात्मक दृष्टि से इतनी सुंदर होती हैं, बहुत अलग अलग भाव इसमें पाए जाते हैं। ये सारा हमारे क्या कहते हैं फोक म्यूजिक से आई हुई चीज़ें हैं जिनको उपशास्त्रीय शास्त्रीय संगीत में अपनाया है हम लोग ने, पर इसका मुख्य जो कहते हैं मुख्य गर्भ भाव जो है वो इसका काव्य है। तो राधा रानी से निवेदन किया जा रहा है कि कहनवा मानो राधा रानी, बाहर बहुत तेज़ वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही है, तो आपसे निवेदन है कि आप अंधेरे ही रहें, कृपया बाहर ना जाएं। ये सारे भाव चिरकालीन है, ये आज भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ह्यूमन इमोशंस हैं ये। तो भले ही राधा रानी हो या मेरी 10 साल की बेटी हो, भाव वही रहे कि बारिश में ना खेलो, जल्दी से घर आ। तो राधा रानी से दोनों प्रकार के निवेदन किए जाते हैं। एक हमारे ब्रज में एक रचना गाई जाती है, राधे झूलन पधारो झुकी आई बदरा। तो एक तरफ ये भी निवेदन है कि आ जाओ, बादल आ गए हैं, तुम झूलने को श्री राधे रानी को पधारो, किंतु यहाँ पे निवेदन है कि बाहर मत जाओ क्योंकि बिजली चमक रही है। तो दोनों प्रकार के निवेदन हैं, जाने का भी और न जाने का भी।

आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे रुचिरा केदार और आस्था गोस्वामी की गायन जुगलबंदी। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार ख्वाजा अल्ताफ हुसैन

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद। क्रांति की चिंगारी से स्वतंत्रता का अलख जगाने वाले क्रांति वीरों की यशोगाथा का कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी।
0: याद करो कुर्बानी।
1: आज हम चर्चा करेंगे क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत गोखटे की। महाराष्ट्र के शोलापुर नगर के निवासी एक विचित्र सत्याग्रह के द्वारा शासन की नीति का विरोध कर रहे थे। उन लोगों ने अपने सत्याग्रह को जंगल सत्याग्रह का नाम दिया था। झुंड के झुंड लोग नगर सीमा के बाहर जाते और जंगल से वृक्ष काटकर जुलूस के रूप में नगर भ्रमण करते थे और इसी तरह का एक प्रदर्शन किया गया 1 मई 1930 को। अंग्रेज सरकार अपना अपमान सहन नहीं कर सकी और उसने जंगल सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। कुछ सत्याग्रही गोलियों से मारे गए जिसके कारण जनता और अधिक भड़क उठी। न्यायालय के भवन पर आक्रमण करके उसमें आग लगा दी गई और न्यायालय के अभिलेख जलाकर भस्म कर दिए गए। शोलापुर से अंग्रेज जिलाधीश मिस्टर नाइट ने महाराष्ट्र के गृह सचिव और प्रभावी गवर्नर सर अर्नेस्ट हॉटसन से अनुरोध किया कि शोलापुर में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाए। सर अर्नेस्ट हॉटसन ने शोलापुर में तुरंत ही मार्शल लॉ लागू कर दिया। सरकार को दमन करने की अब खुली छूट मिल गई थी। जनता पर तरह तरह के अत्याचार होने लगे। तभी पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ने वाला एक युवक वासुदेव बलवंत गोखटे ब्रिटिश सरकार के इन अत्याचारों की कथाएं सुनकर विचलित हो उठता था। वो सोचने लगे कि शोलापुर में लगाए गए मार्शल लॉ का विरोध किस प्रकार किया जाए। वो इस परिणाम पर पहुंचे कि मार्शल लॉ लगाने वाले अधिकारी सर अर्नेस्ट हॉटसन को दंडित किया जाए। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक देशभक्ति गीत सुनने का, उसके बाद जानेंगे कि वासुदेव बलवंत गोखटे ने क्या योजना बनाई मार्शल लॉ का विरोध करने के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद और कार्यक्रम है 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी। हम चर्चा कर रहे हैं वासुदेव बलवंत गोखटे की। वासुदेव बलवंत अपने निश्चय को कार्य रूप में परिणित करने के विचार से निजाम हैदराबाद के राज्य में जा पहुंचे। हैदराबाद में उनके भाई डॉक्टर थे। गोखटे ने हैदराबाद की एक दुकान से दो रिवॉल्वर और कुछ कारतूस भी खरीद लिए। जंगल में जाकर निशानेबाजी का अभ्यास भी करने लगे और शीघ्र ही उनका निशाना अच्छा हो गया। लौटकर वो पूना पहुंच गए और सर अर्नेस्ट हॉडसन को मारने के लिए उपयुक्त अवसर की तलाश करने लगे। लेकिन गोखटे को क्या मालूम था कि सर अर्नेस्ट हॉडसन 20 जुलाई 1931 को बंबई विधान परिषद के सत्र का शुभारंभ करेंगे। उन्हें मारने का ये उपयुक्त अवसर समझकर वो बंबई पहुंच गए और एक प्रवेश पत्र का प्रबंध करके परिषद में सीधे पहुंच गए। उन्हें ये जानकर बहुत निराशा हुई कि हॉडसन महोदय उस दिन वहां नहीं पहुंचेंगे और वे निराश होकर पूना लौट आए। गोखटे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हॉडसन महोदय पर हाथ साफ करने का फिर से अप्रत्याशित अवसर उन्हें शीघ्र लग जाएगा और वो भी पूना में। 22 जुलाई 1931 को उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज के फाटक पर एक अंग्रेज सार्जेंट को खड़ा हुआ देखा। वो जानना चाहते थे कि सार्जेंट वहां पर क्यों खड़ा है। उसने अपने साथियों से पूछा भी, लेकिन कोई भी उसे सार्जेंट की उपस्थिति का कारण नहीं बता सका। वो स्वयं उस गोरे सार्जेंट के पास पहुंच गए और विनम्रता के साथ उससे बातें करने लगे। गोरे सार्जेंट ने बताया कि आज ही बंबई प्रांत के प्रभारी गवर्नर सर अर्नेस्ट हॉडसन फर्ग्यूसन कॉलेज का निरीक्षण करने आने वाले हैं। फिर क्या था, गोखटे की तो बाछे खिल गई। वो दौड़े दौड़े अपने घर पहुंचे और अपने दोनों रिवॉल्वर भरकर उन्हें कोट की जेब में रखकर फर्ग्यूसन कॉलेज पहुंच गए। सर हॉडसन की रुचियों के विषय में उसे बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि वे पुस्तक प्रेमी हैं और पुस्तकालयों का निरीक्षण वे अवश्य करेंगे। उसने कॉलेज के वाडिया पुस्तकालय में गवर्नर पर गोली चलाने का निश्चय कर लिया। वाडिया पुस्तकालय की पहली सीट पर बैठकर गोखटे अध्ययन करने का अभिनय करने लगे। उसकी निगाहें दरवाजे की ही ओर थीं। उन्होंने अपने कोट की बाहरी जेब में हॉडसन महोदय का एक फोटो भी इसलिए रख लिया था जिससे वो गलत आदमी पर गोली न चला सके। गोखटे को अपना प्रतीक्षित अवसर शीघ्र ही हाथ भी लग गया। पुस्तकालय भवन के निरीक्षण में गवर्नर महोदय उनके बिल्कुल पास आ गए। उनके साथ वाडिया बंधु भी थे जिनके दान से पुस्तकालय का निर्माण हुआ था। गोखटे गवर्नर महोदय को आदर दिखाने के लिए अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। वो उनके बिल्कुल सामने थे। अवसर का लाभ उठाने की दृष्टि से उसने कोट के अंदर की जेब से अपना रिवॉल्वर निकाला और एक गोली सर हॉडसन की छाती को लक्ष्य करके छोड़ दी। निशाना बिल्कुल ठीक लगा, लेकिन उसे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ना तो खून की एक बूंद निकली, ना हॉडसन महोदय के मुंह से कोई चीख। गोली खाकर हॉडसन महोदय गोखटे पर झपट पड़े और उसे नीचे गिराकर उस पर लेट गए। नीचे पड़े पड़े भी उसने एक गोली और उनकी छाती पर छोड़ दी। इतने पास से छोड़ी गई गोली का भी कोई असर नहीं हुआ। अब तो कई लोग दौड़ पड़े और गोखटे को काबू में करके उससे दोनों रिवॉल्वर छीन लिए गए। देशभक्ति गीत के बाद बताएंगे क्या हुआ गोखटे महोदय का।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद और कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी और हम चर्चा कर रहे हैं क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत गोगटे की। बलवंत वासुदेव ने हॉडसन पर गोली चलाई लेकिन उनको गोली नहीं लगी। गोगटे और हॉडसन फिर आमने सामने खड़े थे। हॉडसन ने पूछा, आपने मुझ पर गोलियां क्यों चलाई? गोगटे का उत्तर था, शोलापुर में मार्शल लॉ लगाकर आपने भारतीय जनता पर जो अत्याचार किए हैं उन्हीं के प्रतिरोध में मैंने आप पर गोलियां चलाई हैं। गिरफ्तार करके गोगटे को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उससे पूछताछ शुरू कर दी गई। उन्होंने कुछ अन्य बातें तो बताई लेकिन ये नहीं बताया कि उसने रिवॉल्वर कहां से खरीदा था। प्रारंभिक जांच करके खान बहादुर कोठाला ने गोगटे को सेशन सुपुर्द कर दिया। न्यायमूर्ति एन जे वाडिया की अदालत में गोगटे का मुकदमा शुरू हो गया। बचाव पक्ष की ओर से प्रसिद्ध वकील एलबी भोपटकर थे। इस घटना से देश भर में सनसनी फैल गई और अदालत में अच्छी खासी भीड़ हमेशा रहती थी। मुकदमे के निर्णय के दिन ज्यूरी ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि अभियुक्त ने हिज एक्सीलेंसी पर दो गोलियां चलाई और अपनी खुशकिस्मती या गोलियों के कमजोर होने के कारण हिज एक्सीलेंसी की जान बच गई। इस वक्तव्य पर गोगटे के वकील श्री भोपटकर ने अस्पष्टता का आरोप लगाया। सेशन जज महोदय ने ज्यूरी से स्पष्ट कथन के लिए कहा और थोड़ी देर के लिए ज्यूरी के सदस्य फिर उठकर चले गए। उन्होंने स्पष्ट वक्तव्य देते हुए ये बात कही, अभियुक्त गोगटे स्पष्ट रूप से अपराधी है। उसने हिज एक्सीलेंसी सर अर्नेस्ट हॉडसन की हत्या का प्रयत्न किया है। चूंकि वो विद्यार्थी है और उसकी उम्र अभी कम है इसलिए हम उसे कम सजा दिए जाने की सिफारिश करते हैं। गोगटे को भारतीय दंड विधान की धारा 307 के अंतर्गत 8 वर्ष के कठोर कारावास का निर्णय सुना दिया गया। अवैध रूप से हथियार रखने के अपराध में भी उन्हें 2 वर्ष के कठोर कारावास का दंड मिला। उनके पक्ष में ये निर्णय भी दिया गया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। सजा भुगतने के लिए गोगटे को पूना के निकट यरवदा के केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया। दोस्तों, वसुदेव बलवंत गोगटे का जन्म 11 अगस्त 1919 को सतारा जिले के मिराज नामक स्थान पर हुआ था और उनके पिता मिराज हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। मिराज से हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद गोगटे फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ने पूना चले गए थे। गोगटे वीर सावरकर के जीवन दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे और वो शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के भी भक्त थे, जिन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी के फंदों पर झुला दिया गया था। मुकदमे के क्रम में गोगटे को बताया गया कि उनकी दोनों गोलियां हॉडसन महोदय के सीने में लगी थीं, लेकिन हॉडसन महोदय अपने शर्ट के नीचे रुपए रखने का एक चमड़े का बटुआ हमेशा रखते थे जिसमें स्टील के बटन लगे थे। स्टील के बटनों में ही गोलियां लगने के कारण हॉडसन महोदय की जान बच गई थी। गोगटे को इस कथन पर विश्वास नहीं हुआ। उनका अनुमान था कि हॉडसन महोदय कपड़ों के अंदर स्टील का जिरह बख्तर पहनकर कॉलेज गए थे, क्योंकि खतरे के उन दिनों में अपने बचाव की सावधानी रखना उनके लिए बिल्कुल ही स्वाभाविक था। गोगटे को यरवदा जेल में रखा गया और उसी जेल में कुछ दिन बाद महात्मा गांधी को भी रखा गया था। जेल के अधिकारियों ने यह ध्यान रखा कि गोगटे और गांधी जी की भेंट ना हो सके। गोगटे की जेल से मुक्ति सन 1937 में हुई और कहा जाता है दोस्तों कि स्वयं सर अर्नेस्ट हॉडसन ने गोगटे की मुक्ति के लिए प्रयत्न किया था। जेल से मुक्ति के बाद गोगटे ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा था। क्या लिखा था उस पत्र में जानेंगे इस देशभक्ति गीत के बाद।

0: क्रांति वीरों की यशोगाथा का कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी, और आज हम चर्चा कर रहे हैं क्रांति वीर वसुदेव बलवंत गोप्टे की। वसुदेव बलवंत गोप्टे को जेल हुई और फिर बाद में महात्मा गांधी को उन्होंने पत्र भी लिखा। गांधी जी ने 24 सितंबर 1937 को वर्धा से गोप्टे के पत्र का उत्तर कुछ इस प्रकार दिया। प्रिय श्री गोप्टे, आपका पत्र पाकर मुझे बहुत हर्ष हुआ। मुझे इस बात का भी हर्ष है कि आप जेल से मुक्त हो गए हैं। यदि आप वर्धा आकर मुझसे मिलेंगे तो मुझे और अधिक हर्ष होगा। जब आप जेल में थे तो मैंने आपसे मिलने का प्रयत्न किया था, लेकिन मैं अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो सका। आपका शुभाकांक्षी मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों, जेल से मुक्त होने के बाद गोप्टे ने सर अर्नेस्ट हॉटसन को भी एक पत्र लिखा था। हॉटसन महोदय ने गोप्टे के पत्र का उत्तर दिया और 100 रुपए का एक चेक भी गोप्टे के पास भेजा था और उस उपहार को स्वीकार करने का अनुरोध भी किया गया। गोप्टे ने उपहार को स्वीकार करते हुए सर अर्नेस्ट हॉटसन को धन्यवाद का पत्र लिखते हुए लिखा था, प्रिय सर हॉटसन महोदय, आपने जो मेरे पास उपहार स्वरूप 100 रुपए का चेक भेजा है उसके लिए मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। मेरा कथन है कि आपने मेरे लिए 100 रुपए के रूप में 100 आशीर्वाद भेजे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके प्रति मेरे दिल में कोई दुर्भावना नहीं है। वो तो उस समय की बात थी जब विशेष परिस्थितियों के कारण मैंने आपको दंड देना चाहा था। वो अध्याय अब समाप्त हो चुका है और अच्छा यही है कि उस घटना पर पर्दा डालकर हम लोग शेष जीवन में अच्छे मित्रों की भांति रहें। आपके प्रति समस्त शुभकामनाओं के साथ आपका वसुदेव बलवंत गोप्टे। अपने शेष जीवन के लिए वसुदेव बलवंत गोप्टे ने वकालत का काम शुरू किया था और उसे उन्होंने जीवन भर निभाया भी। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे क्रांतिवीर वसुदेव बलवंत गोप्टे। आप सुनिए ये देशभक्ति गीत और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: याद करो कुर्बानी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आज हम लेकर आए आपके लिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, और स्वास्थ्य चर्चा में आज जिस विषय पर बात होगी वो विषय है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। और इस विषय पर बात करने के लिए विषय विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, त्रिषा कौशिक जी। त्रिषा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: त्रिषा जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप इस फील्ड में कैसे आई और आपकी पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से आपने पढ़ाई करी, फिर क्यों और कैसे आई इस फील्ड में?
2: मेरा जन्म भोपाल में ही हुआ, मैं भोपाल में ही पली बड़ी हूँ। स्कूलिंग, कॉलेज सब मेरा भोपाल से ही हुआ। मैंने इंजीनियरिंग की NIT भोपाल से, फिर मैं BHEL भोपाल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में कार्यरत थी। वहाँ मैंने लगभग 7 साल काम किया ट्रांसफार्मर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट में। तो इस फील्ड में मैं ऐसे आई कि जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे बहुत हेल्थ इश्यूज थे। हेल्थ इश्यूज पहले से ही थे पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया। कॉलेज में एक बार यहाँ पे एक भोपाल में ही मार्केट है, वहाँ मैं कुछ सामान खरीद के आ रही थी तो मैं बेहोश हो गई। फिर सारे डायग्नोसिस हुए, सब टेस्ट हुए तो पता लगा मेरा हेमोग्लोबिन बहुत कम था, वो लगभग 5 था। तो वहाँ से फिर मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत ट्रिगर हुए। एनीमिया तो था ही, साथ में धीरे धीरे फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज काफ़ी होने लगे, पैनिक डिसऑर्डर होने लगा, सीवियर सोशल एंग्जाइटी। और ये लगभग 8-10 साल, मतलब आप समझिए कि 18-19 साल से लेके लगभग 27-28 साल की उम्र तक ये चलता रहा। और फिर उसका सल्यूशन ढूंढने के लिए मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, जिसको हिंदी में सम्मोहन चिकित्सा बोला जाता है, आई केम अक्रॉस दैट। और उसमें मुझे अपनी जो भी परेशानियां थी उसका सल्यूशन मिलना शुरू हुआ। तो इस तरीके से अपनी ही परेशानियों का सल्यूशन ढूंढते ढूंढते, समाधान ढूंढते ढूंढते मैं इस फील्ड में आ गई।
1: ठीक है, तो जैसे कि टॉपिक है तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है क्या, एक बार आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं।
2: देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का मतलब ये है, पास्ट लाइफ, नाम से ही पता चलता है कि ये पिछले जन्म की कोई बात है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इस जीवन काल में जो हम फेस करते हैं, जो भी हमारे चैलेंजेस होते हैं, जो भी हम कठिनाइयां फेस कर रहे हैं, उसके पीछे हमको बहुत बार लॉजिक नहीं मिल पाता। जैसे आप देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान को शरीर में कुछ तकलीफ होती है, पर वो टेस्ट कराएंगे अगर मेडिकली सारी रिपोर्ट्स क्लियर होती हैं, पर इंसान तब भी तकलीफ में होता है।
1: ठीक है,
2: तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि ये इस जन्म का नहीं है, ये कुछ पहले से आ रहा है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का ये मतलब है कि जो इस जन्म, जैसे अभी का मेरा जन्म है त्रिषा का, उससे पहले मेरे जितने भी जन्म हुए हैं उसमें कहीं कुछ ऐसा हो गया जिसका प्रभाव आज मेरे इस जीवन काल पे आ रहा है। तो हम उस पास्ट लाइफ में जाते हैं, उसमें रिग्रेस पैक करते हैं सेशंस में, और फिर उसका पूरा तरीका होता है कि जो भी वहाँ ट्रॉमा हुआ या जो भी वहाँ पे चीज़ें अधूरी रह गई, जो भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे जिससे आज जीवन पे प्रभाव आ रहा है, उसको हील किया जाता है। इसीलिए ये थेरेपी है।
1: आपने थेरेपी समझाई, तो जब जो लोग इस अवस्था से गुजरते हैं जिन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो रहा होता है, या अगर हम उसके लिए मरीज शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम मानते हैं कि जिस व्यक्ति जो इस से गुजरता है, जिसे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यानी अब मैं इसको थोड़ा मतलब सरल भाषा में कहें, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आप उसे और समझाइएगा कि वो अपने पूर्व जन्म की कुछ घटनाओं को उसके जीवन में पुनर्वृत्ति होती है, इसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहेंगे।
2: रिग्रेशन का मतलब देखिए ये होता है, रिग्रेशन मतलब पीछे जाना।
1: हाँ,
2: तो मतलब जो भी इंसान है जो इस थेरेपी को अंडरगो कर रहे हैं वो अपने पास्ट लाइफ
1: थेरेपी
2: में
1: बात करेंगे। हम पहले ये जानना चाह रहे हैं कि हरे तुरंत तो आदमी थेरेपी पे आया नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ एक सामान्य आदमी जिसके साथ ये होना शुरू हुआ है, तो जब वो आप, चलिए इस बात को ऐसे करते हैं कि जब उस जिस इंसान के साथ कोई भी इस तरह के थॉट्स उसे आ रहे हैं, तो वो स्वयं या उसके परिवार का व्यक्ति, पहली बात तो वो कैसे डायग्नोस करे इस बात को कि उसे आपकी जरूरत है और ये जो हो रहा है उसके पूर्व जन्म के थॉट्स, या जो आप कह रहे हैं कि उसे इस तरह की अवस्था में आ गया, ये आप कैसे डायग्नोस करते हो कि वो इस अवस्था में है?
2: जी, तो देखिए, जब भी कोई परेशानी में होता है, हम सबके जीवन में परेशानियां आती हैं, और हम किसी भी थेरेपिस्ट के पास तभी जाते हैं जब हम उस परेशानी से हम खुद डील नहीं कर पाते। ठीक है, अगर हमारा आज सुबह उठ के सिर दुखा तो हम उठते ही तो डॉक्टर के पास नहीं चले जाते।
1: बिल्कुल,
2: हम पहले खुद कोशिश करते हैं कि डाइट ठीक ले लें, या हम ठीक से नींद नहीं हुई है उससे ठीक हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। वैसे ही अगर कोई भी परेशानी जीवन में है, पहले हम खुद डील करते हैं, जब हमें लगता है वो चीज़ हमारे बस की बाहर हो गई है तब वो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हम बात कर रहे हैं वो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी का ही पार्ट होता है, एक पार्ट है उसका। ठीक है। तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के अनुसार कोई भी इशू लाइफ में, कोई भी समस्या ज़िंदगी में, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो कोई साइकोलॉजिकल इशू हो, या वो कोई रिलेशनशिप इशू हो, या फाइनेंशियल इशू हो, कोई भी समस्या, वो या तो पास्ट लाइफ से आती है या इस जीवन काल के किसी ट्रॉमा से आती है, जिसको टेक्निकली इनर चाइल्ड हीलिंग बोला जाता है, या वो कोई फॉरेन एनर्जी हो सकती है।
1: फॉरेन एनर्जी से क्या मायने आपका?
2: फॉरेन एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो हमसे फॉरेन है, वो हमारी खुद की नहीं है।
1: अच्छा,
2: ठीक है। तो वो किसी जिंदा इंसान या एनिमल की एनर्जी हो सकती है, या वो किसी मरे हुए इंसान या एनिमल की ऊर्जा हो सकती है। वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है।
1: अच्छा,
2: ओके। तो कोई भी समस्या, जैसा मैंने आपको बताया, तो पास्ट लाइफ या करेंट लाइफ ट्रॉमा या फॉरेन एनर्जी हो सकती है, या कोई तीनों हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं, या कोई एक हो सकता है। तो इसको देखने का, इसको चेक करने का तरीका होता है कि जो समस्या किसी इंसान को हो रही है वो पास्ट लाइफ से आ रही है कि नहीं आ रही है, उसको चेक करने का एक तरीका होता है। वो हम थेरेपी में ही चेक करते हैं।
1: अच्छा, मतलब कोई
2: ऐसे देख के मैं नहीं बता सकती कि आपका पास्ट लाइफ इशू है।
1: हाँ, मतलब आप जो भी, आपके जब वो उस अवस्था का मरीज आपके पास पहुँचता है
2: जी,
1: तो आपकी थेरेपी का कोई हिस्सा है जिससे आप ये डायग्नोज कर पाए।
2: बिल्कुल। और उनके ये सबकॉन्शियस माइंड से जाना जाता है, उनके अवचेतन मन से जाना जाता है कि ये इशू पास्ट लाइफ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
1: अच्छा,
2: देर इज़ अ टेक्निक टू इट।
1: ठीक है, ठीक है। वो एक मतलब टेक्निकल बात। तो कोई एग्जाम्पल देके आप, जैसे हम व्यक्ति का नाम नहीं लेते, अगर आप अपना कोई केस याद करें जो आपके पास आए हों
2: जी, जी,
1: तो उनमें क्या आपने सिम्टम्स देखे, या फिर वो थेरेपी में क्या चीज़ें आपके सामने आई तो जिससे आपको पता चला कि ये केस, दिस इज द केस ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन।
2: जी, जैसे मेरे पास एक, मैं आपसे केस शेयर करती हूँ। उनके पास लाइफ में सब कुछ है,
1: हाँ,
2: ठीक है, जो एक बेसिक लाइफ में होना चाहिए। ठीक ठाक पैसा है और ठीक ठाक सेहत है, हम जैसे जिस जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी जिसे बोलेंगे जीना चाहते हैं, वो सब कुछ है। पर फिर भी वो अपनी लाइफ में जो भी प्लेजर्स होते हैं, यानी कि कहीं शॉपिंग करना, मूवी देखना, यू नो, कहीं घूमने जाना, तो वो सब वो इंजॉय नहीं कर पा रही थी ठीक से। तो जब इंजॉय नहीं कर पा रही थी तो एक लेयर उसकी पास्ट लाइफ की निकली, और हमने पास्ट लाइफ में देखा कि वो उस लाइफ टाइम में उनके जो पेरेंट्स थे वो बुद्धिज्म फॉलो करते थे।
1: अच्छा,
2: ठीक है। और पेरेंट्स जो थे वो बहुत रईस परिवार के नहीं थे, मतलब बस चल रहा था जीवन कैसे भी, थोड़ा सा इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं थे। तो ये बच्चे ने डिसाइड किया, अच्छा इस लाइफ टाइम में वो फीमेल है, उस लाइफ टाइम में वो मेल थी।
1: अच्छा,
2: ठीक है। तो वो जो बच्चा था उसको लगा कि मेरे माँ बाप तो इतने स्ट्रगल से निकल रहे, तो बेटर है कि मैं किसी मॉनेस्ट्री में जाके रह लूँ, ताकि खाना पीना सब वहाँ हो जाएगा। तो वो बच्चा मॉनेस्ट्री चला गया अपने माँ बाप को छोड़ के। अब जब वो वहाँ गया तो उसने एक वाव ले लिया, जैसे हम बोलते हैं ना, एक खुद में ही एक शपथ ले ली कि मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करूँगा क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं कर सकते।
1: अच्छा,
2: और ये जैसे चल रहा है ये वैसे ही चलेगी। ठीक है। तो वो क्या हुआ उस लाइफ टाइम में, क्योंकि वो मॉनेस्ट्री चला गया, उसने अपना बहुत आध्यात्मिकली, अपने आप पर बहुत स्पिरिचुअली काम किया, आध्यात्मिक उसमें ये बहुत ऊपर पहुंचे, बट मरते समय उनको एक दुख था कि मैंने स्पिरिचुअली तो बहुत कुछ अचीव कर लिया, पर जो जिंदगी के छोटे मोटे प्लेजर्स भी हैं उसको मैंने एंजॉय नहीं किया, बड़े तो छोड़ दो, मैंने कुछ जिंदगी को ठीक से भोगा नहीं।
1: वो यही थॉट्स उसको अपनी,
2: और वो इसके साथ मर गए।
1: अच्छा, ये पुरानी लाइफ में हुआ।
2: हाँ,
1: ठीक है।
2: अब इसके साथ वो इस सैडनेस के साथ चले गए। अब हुआ क्या था कि उस लाइफ टाइम में उन्होंने एक वाव ले लिया था।
1: वाव यानी शपथ के बारे में बात करें, ऐसा उन्होंने
2: शपथ मतलब किसी और ने नहीं दिलवाई, जैसे हम अपने मन में ही एक
1: तय कर लिया था,
2: खुद तय कर लेते हैं कि मैं नहीं एंजॉय करूंगा क्योंकि मेरे माता पिता भी नहीं कर पा रहे, और उसके साथ वो जीवन खत्म हो गया। अब जब वो जीवन खत्म हो गया तो इस जिंदगी में किसी कारण से वो पास्ट लाइफ एक्टिवेट हो गई।
1: अच्छा,
2: तो देखिए होता क्या है, हमारी जितनी भी पास्ट लाइफ्स होती
1: मतलब है, वर्तमान लाइफ में भी वो उसी अवस्था में आ गए जो पहले था, जब वहां भी उन्होंने माना था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा और एंजॉय नहीं कर पा रहा, और अब भी वैसे ही आ गए।
2: हाँ, पर अभी वैसे क्यों हुए, क्योंकि सबकॉन्शियसली ये पास्ट लाइफ उनकी ट्रिगर हो गई।
1: ठीक है,
2: और ये पास्ट लाइफ एक्टिवेट हो गई।
1: हाँ, हाँ।
2: हमें देखिए ये जानना भी जरूरी है कि हमारी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स होती हैं पर वो सारी एक्टिवेटेड नहीं रहती।
1: ठीक है,
2: किसी कारण से वो इस जीवन काल में पास्ट लाइफ एक्टिवेट हो गई और उनका थॉट प्रोसेस जो है, थॉट प्रोसेस इज नॉट द राइट वर्ड, वो जो पर्सनालिटी थी उस जीवन काल की वो सबकॉन्शियसली प्ले कर रहा था और वो बोल रहा था कि मैं प्लेजर्स ऑफ लाइफ या जीवन में जो भी भोगना है मैं उसको एंजॉय नहीं करूंगा क्योंकि मेरे माता पिता भी नहीं कर पाते। तो वो इस जीवन काल में भी जो कुछ भी अच्छा हो रहा था उसको जी नहीं पा रहे थे वो ठीक से।
1: इसको भी छोड़ दिया अच्छा होते हुए।
2: हाँ
1: अब तो यहाँ तो सब कर सकते हैं, वो जो हो गया वो तो हो गया,
2: करेक्ट।
1: लेकिन अब वर्तमान में कर सकते हैं लेकिन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि दिस इज द केस ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन,
2: करेक्ट। तो वो जैसे ही उनको पता चला जैसी पास्ट लाइफ थी, उन्होंने अब स्वयं से उन्होंने एक अपने
1: फिर मान लिया
2: कि मेरे को ये एंजॉय नहीं करना, तो वो इस जीवन काल को भी ढंग से एंजॉय नहीं कर पा रहे थे।
1: तो फिर वो किसी भी तौर पे आप तक पहुंचे, फिर आपने उनका ट्रीटमेंट शुरू करा होगा।
2: हाँ
1: यहीं से एक बात ये निकल के आती कि ये तो वो केस है जो आपके पास आया था, जैसे कि अपन ने बात करी और आप हमने बात भी की थी कि ऐसा कोई केस बताएं आप जो आपके पास आया हो ऐसा।
2: जी
1: अगर हम नए किसी व्यक्ति की बात करते हैं, अभी मान लीजिए कि मेरे मतलब काफ़ी कम लोग हैं, लेकिन कई लोग कई मरीज ऐसे होते हैं जो डॉक्टर तक पहुँच ही नहीं पाते, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते कोई नया अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ से सफ़र कर रहा हो, तो वो स्वयं या उसका घर का व्यक्ति कब ये तय करे कि उसे आपके पास जाना है? इसके कुछ कुछ सिम्टम्स उन्हें खुद मिलते हैं क्या, या अगर हम अभी बता पाएं अपने कार्यक्रम के माध्यम से
2: जी,
1: अगर वो अपने परिवार में या व्यक्ति में ऐसा कुछ देख रहे हैं तो वो आप तक या आप जैसे किसी क्लिनिकल मतलब थेरेपिस्ट के पास पहुंच सकें?
2: देखिए क्या होता है कि लाइफ में जब भी कोई इशू होता है तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, जिसको हम हिंदी में चेतन मन बोलते हैं, वो उसके पीछे रीजन ढूंढने की कोशिश करता है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है।
1: हाँ
2: ठीक है, मैं इसका एक उदाहरण देके आपको समझाती हूँ कि किसी के पैर बहुत दुख रहे हैं और वो बहुत टाइम से दुख रहे हैं। सब कुछ कर लिया, मालिश करवा ली, सब करवा लिया, पर पैर दुख रहे हैं। अब वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या होगा, डायग्नोसिस होगा और उसके पीछे कुछ ना कुछ एक कारण निकलेगा। तो वो कारण जो समझ में आएगा कि कोई डेफिशिएंसी है बॉडी में, कोई विटामिन कम है, कुछ मिनरल कम है, जो भी है उसके कारण ये तकलीफ हो रही है। तो चेतन मन जो होता है वो हमेशा क्यों का जवाब ढूंढता है। अब लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके पीछे हम कितना भी तर्क लगा लें, लॉजिक लगा लें, हमको क्यों का जवाब नहीं मिलता। तो जब जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है, चैलेंज हो रहा है, जिसके पीछे क्यों का जवाब नहीं मिल पा रहा, एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये पास्ट लाइफ से आ रहा है।
1: इससे एक बात और निकल के आती है त्रिशा जी के, मतलब क्या माने हम के भाई, देखिए जैसे अभी अपन ने बात करी कि कोई ये फील करता है, जैसे आपने बताया कि जब उसको अपने क्यों का उत्तर ना मिल रहा हो, तो सामान्यतः लोग आपके पास ही थेरेपी के लिए आ जाएं पहले, ये बेटर है, या वो साइकेट, क्योंकि लोग साइकेट्रिस्ट को आप जानते हैं, लोग सामान्यतः साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। हम यही जानना चाह रहे हैं कि हमारे सुनने वाली ये समझ पाएं
2: जी जी,
1: वो साइकेट्रिस्ट के पास जाएं इस थॉट्स को लेकर, या पहले किसी थेरेपिस्ट से मिल लें।
2: देखिए ये जो है ये डिसीजन इंसान ही लेगा जिनको तकलीफ हो रही है, पर मैं थोड़ा सा
1: अच्छा, इसको अगर ऐसे बात करें कि इसको आप जैसे आप थेरेपिस्ट हैं तो आप इसे किस श्रेणी में रखते हैं, क्या उन्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, आप उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास भेजेंगे या केवल इसको कैसे मतलब अलग थिन लाइन होगी संभवतः, मैं इसको यूं भी कह लेते हैं कि आपके पास आने वाला जो मरीज है वो और साइकेट्रिस्ट के पास जाने वाला मरीज, इनके बीच में कोई एक थिन लाइन है,
2: पूछिए ना,
1: तो
2: मैं जो जवाब दे सकती हूँ दूंगी आपको,
1: वो बताइए आप क्या अंतर होगा उनमें, कैसे अंतर करें एक सामान्य आदमी और आप।
2: देखिए जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो ब्रेन में काफ़ी चीज़ें देखते हैं कि कौन से हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं या ब्रेन की क्या केमिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट, और वो मेडिसिन भी देते हैं। जो हिप्नोथेरेपी होता है या उसका जो एक पार्ट होता है विच इज़ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, इसमें कोई मेडिकेशन नहीं होता है और इसमें हम ऊर्जाओं पे ज़्यादा काम करते हैं।
1: अच्छा।
2: ऐसा नहीं है कि बॉडी पे काम नहीं होता, बॉडी पे भी काम होता है, पर अब आप मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे या क्वांटम फिजिक्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ऊर्जा होती है वो पदार्थ या मैटर से पहले आती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि हम खुश हैं तो हमारी शक्ल अलग दिखती है,
1: बिल्कुल,
2: हम दुखी होते हैं तो हमारी शक्ल अलग दिखने लगती है। अब शक्ल तो एक ही है,
1: बिल्कुल,
2: पर क्योंकि अंदर ऊर्जा का प्रवाह चेंज हो गया तो उससे जो मैटर है, जो कि हमारा चेहरा है, वो अलग दिखने लगता है। तो हमेशा एनर्जी जो होती है वो मैटर को डिटरमिन करती है। तो ये जो थेरेपी है इसमें हम सारे स्तरों पे काम करते हैं। अच्छा। हम थॉट पे भी काम करते हैं यानी कि मानसिक स्तर पे, हम इमोशंस पे भी काम करते हैं यानी कि भावनात्मक स्तर पे, हम ऊर्जा के स्तर पे भी काम करते हैं जिसको एनर्जी बॉडी या प्राण शरीर बोला जाता है, और हम फिजिकल बॉडी पे भी काम करते हैं। अब देखिए किसके पास जाना चाहिए, ये हमेशा जो इंसान तकलीफ में है ये उनका डिसीजन होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट है तभी वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर उसने रिजल्ट नहीं दिए होते तो वो अभी तक गायब हो गया होता। तो ये निर्भर करता है जो इंसान तकलीफ में है उन पे, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हिप्नोथेरेपी के जो रिजल्ट्स हैं वो अराउंड 93-94% सक्सेस रेट है इस थेरेपी का। अच्छा। लोग अभी भी इसके बारे में बहुत जानते नहीं हैं, पर ये बहुत ही इफेक्टिव
1: थेरेपी है। हम आपसे यही जानना चाहेंगे, अब आप हम एकदम थोड़ा विस्तार से भी कहेंगे आपसे, या जो आपका प्रैक्टिकल तरीका है, आप ऐसे ही बताइए कि जो आपके पास मरीज आता है या आया
2: जी जी,
1: फिर वही किसी वो डिपेंड आप जैसे भी करना चाहें किसी मरीज को ध्यान में रख के कि आपकी जो थेरेपी इसमें क्या क्या, जैसे आप साइकेट्रिस्ट के पास अगर इंसान जाता है
2: अच्छा,
1: तो वो कोई टेस्ट लेते हैं संभवतः और वो मेडिसिन देते हैं, फिर 10 दिन बाद चेक करते हैं, यही एक सामान्य तरीका होता है। वो आपके पास जब कोई आता है तो आपका क्या तरीका होता है, कैसे ट्रीट करते हैं?
2: जो भी हमारे पास तकलीफ लेके आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी उनकी समस्या है वो कहीं से भी आ सकती है, वो पास्ट लाइफ से आ सकती है, इस जीवन काल के किसी ट्रॉमा से आ सकती है, या वो कोई फॉरेन एनर्जी हो सकती है। कभी कभी जो समस्याएं होती हैं वो एंसेस्ट्रली भी आती हैं, जिसको हम आम भाषा में या एक पर्टिकुलर रिलीजन में हम उसको पितृदोष बोलते हैं।
1: अच्छा।
2: तो हम एक एक करके चीज़ों को रूल आउट करते हैं। तो जैसे पहले सेशन में आए तो हम कोई एक चीज़ चेक करेंगे कि ये दिक्कत तो नहीं है उनको, अगर नहीं है तो फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो यूजुअली ये देखा गया है कि किसी भी एक इशू को हील करने के लिए ऑन एन एवरेज 6-8 सेशंस तो लग ही जाते हैं।
1: सेशन की हम वो जानना चाह रहे थे, अगर संभव हो तो आप इसे हमें जितनी सरल भाषा में बता पाएं कि वो सेशन किस तरह का होता है।
2: देखिए, जो सेशन होता है, पहले सेशन में तो मैं पर्सनली जो भी समस्या लेके आते हैं उनके जीवन के बारे में सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है, ताकि पता रहे कि आगे कैसे बढ़ना है। दूसरे सेशन से जब हम सम्मोहन चिकित्सा वाले सेशन शुरू करते हैं या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो उसका पार्ट होता है, हर सेशन जो होता है वो लगभग 1.5-2 घंटे का होता है, और शुरुआत में 15-20 मिनट लगते हैं, जिसमें जो भी इंसान है जिनको तकलीफ है उनको एक सम्मोहन की स्टेट में पहुंचाया जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे हिप्नोसिस के स्टेट में या ट्रांस के स्टेट में पहुंचाया जाता है, जिसमें वो अपने सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन को एक्सेस कर लेते हैं। फिर जो थेरेपिस्ट होते हैं वो कुछ कमांड देते हैं, और जैसे जैसे कमांड दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली अवचेतन मन उससे रिलेटेड चीज़ें सरफेस पे लाने लगता है। तो अगर कमांड दिया कि आपका वो भाग ऊपर आएगा जिसने इस जीवन काल में पहली बार गुस्सा महसूस किया, तो सबकॉन्शियस माइंड इतना प्रिसाइज होता है। अभी मैं आपसे कॉन्शियसली पूछूंगी आपको जिंदगी में पहली बार कब गुस्सा महसूस हुआ, आप बोलोगे मुझे याद नहीं है, पर अवचेतन मन को पता होता है। तो वो 2 साल की उम्र में हुआ, 1 साल की उम्र में हुआ, कि 4 साल की उम्र में हुआ, जब भी पहली बार गुस्सा महसूस हुआ वो सामने आके खड़ा हो जाता है वो पार्ट। तो 2 साल का बच्चा आके खड़ा हो गया सपोज, फिर उसको पूरा हीलिंग करने का प्रोसेस होता है।
1: अच्छा।
2: तो ऐसे एक सेशन जो होता है वो 1.5-2.25 घंटे का होता है। इसमें मन की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कुछ भी दवाइयां नहीं दी जाती, इसमें कुछ भी एनेस्थीशिया नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अवचेतन मन की शक्ति को लेके, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड इज यूज टू हील एनी इशू।
1: अभी जितनी बात हुई उसमें प्रश्न 2 निकल गए आपकी बात से, उसमें पहला प्रश्न मैं आपसे जाना, फिर उस पर दूसरे पाएंगे पितृदोष वाले पे। पहला ये कि जो आपका ये थेरेपी है ये क्या साइंटिफिकली प्रूवन है? अभी
2: देखिए, हिप्नोसिस का जो स्टेट है वो साइंटिफिकली प्रूवन है।
1: अच्छा।
2: तो हिप्नोसिस को हम थोड़ा सा साइंटिफिकली देखें,
1: मतलब मेडिकल साइंस भी उसका पार्ट है, मतलब
2: उसमें ब्रेन वेव्स लोअर फ्रीक्वेंसी की हो जाती है। जैसे जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारी जो ब्रेन वेव्स होती है, ठीक, वो जो होती है वो लोअर फ्रीक्वेंसी की,
1: मतलब साइंटिफिकली प्रूव है। एक तो
2: हिप्नोसिस का स्टेट साइंटिफिकली प्रूवन है। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की अगर बात करेंगे तो उसका पीछे साइंस हम नहीं लगा सकते, पर उसके देखिए उसके क्या प्रूफ आए हैं कि बहुत लोगों ने पास्ट लाइफ में कुछ देखा,
1: ठीक है,
2: और वो जगह उन्होंने करंट लाइफ में नहीं देखी है, ठीक है, वो गए भी नहीं उस जगह पे, पर उन्होंने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो जगह देखी और उन्हें दिखाई दिया कि यहाँ पे एक ऐसा घर है, उसके नीचे ये सामान गड़ा हुआ है, और जब उन्होंने जाके उसको फिजिकली वेरीफाई किया तो वो चीजें एक्चुअली थी। दूसरा, ये बहुत ही आम सवाल होता है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं। देखिए, एज ए थेरेपिस्ट हमारे लिए सबसे बड़ा वैलिडेशन यही होता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बाद अगर जिनको जो समस्या थी वो ठीक हो गई है,
1: सबसे इम्पोर्टेंट,
2: वो सबसे बड़ा प्रूफ,
1: ये सबसे बड़ी सही बात। मतलब एक थेरेपी हमने करी वो खर, वो आपके पॉइंट पे अच्छी बात। दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, पितृदोष का भी आपने जिक्र करा था
2: जी जी,
1: तो आपकी जो थेरेपी है इसमें पितृदोष पर भी आप जब ध्यान देते हैं तो क्या क्या माने ज्योतिष से जुड़ी हुई है आपकी थेरेपी?
2: देखिए, ये ज्योतिष से तो नहीं जुड़ी हुई है, वो अलग ही साइंस है। यहाँ पे हम फिर से अवचेतन मन से देखते हैं कि जो भी समस्या आ रही है उसका कोई एंसेस्ट्रल ओरिजिन तो नहीं है, पितरों से तो नहीं आ रही है, और अगर वो पितरों से आ रही है तो फिर उसको भी हील करने का एक तरीका होता है। पर हम इसमें किसी का नेटल चार्ट या किसी की हम पत्रिका देख के कुछ नहीं देखा जाता है, इसमें अवचेतन मन के जरिए ही पता लगाया जाता है कि ये एंसेस्ट्रली आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
1: मतलब कुल मिला के वो हम अगर सरल भाषा में थोड़ा सा समझें तो ये हमारे श्रोता को ये बात समझ में आ पाए कि वो उनके पेरेंट्स से या पेरेंटल से किस तरह से अगर जुड़ा है तो या नहीं है।
2: जी
1: यही मुझे लगता है इसका, यहाँ
2: पेरेंटल या उनसे भी पहले कोई भी जनरेशन
1: हो जाता है, कभी कभी या दो तीन पीढ़ी या जो भी माने उसे,
2: कभी कभी चौदहवीं पंद्रहवीं जनरेशन पहले से चीजें आती है।
1: एक चीज और, जो आपका ट्रीटमेंट है, जो थेरेपी है, इससे आपने जब देखा होगा आपके पास फर्ज करें 2 सेशन 30 सेशन या आपके पास अलग अलग तरह के लोग आए होंगे जो इससे ग्रसित हैं, तो उनको आपने 6 महीने बाद 4 महीने बाद जब एक्स टाइम के बाद देखा, तो आप देखते हैं कि उनमें परिवर्तन आया, लाभ आया, मतलब जो जिस अवस्था
2: में खुद ही समझ में आ जाता है।
1: अच्छा, ये वो कहते हैं आपसे?
2: हाँ, देखिए ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे वायरल फीवर हो गया।
1: हाँ।
2: हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको दवाई देते हैं।
1: हाँ।
2: 3 दिन का फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक का कोर्स दे दिया। वो बोलते हैं 3 दिन सुबह शाम जो भी दवाइयां हैं वो खा के आना, 3 दिन बाद बताना आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो हमको समझ में आता है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हम डॉक्टर को बताते हैं, फिर डॉक्टर या तो प्रिस्क्रिप्शन चेंज करते हैं या दवाइयां बंद कर देते हैं। तो सेम इस थेरेपी में भी ऐसे ही होता है कि हर सेशन के बाद जिनको जो समस्या थी उनको समझ में आता है कि अब मुझ में क्या इम्प्रूवमेंट आ गया है।
1: अच्छा,
2: तो ये ज्यादा मायने रखता है कि जो थेरेपी ले रहे हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं,
1: बिल्कुल,
2: और थेरेपिस्ट उनके बारे में कैसा फील कर रहा है वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि जो समस्या में थे
1: वो कैसा फील कर रहे हैं,
2: वो कैसा फील कर रहे हैं, वो मेन है,
1: बंद हो गया या कोई वाली बात।
2: करेक्ट।
1: अच्छा, अगर आप कोई ऐसी कोई अपना केस याद करें तो किस कोई मतलब अगर आप एग्जाम्पल देके बता पाए कि परिवर्तन उनमें वो आए हों आपकी थेरेपी लेने के बाद,
2: किस तरीके के परिवर्तन,
1: आप अगर अपना कोई भी व्यक्ति को याद करती हैं कि वो आपके पास आए और आपने उनको 2 या 3 X नंबर ऑफ सेशंस दिए, तो उसके बाद उनमें वो चेंजेस दिखे आपको, तो आप बता पाएंगे कि जब वो पहली दफा आपके पास आए थे तो उनके अंदर ये था और फिर 3 सेशन के बाद ये परिवर्तन आ गया या ये लाभ उनको मिला उस तरह से?
2: ऐसे काफी लोगों के साथ हुआ है, जैसे जब आते हैं तो कुछ होते हैं जो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं।
1: अच्छा।
2: और कुछ सेशंस के बाद देखो तो उनका एक कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि शरीर में कुछ तकलीफ है, पीठ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, और 1-2 सेशंस होते हैं और उसके बाद उनको नी पेन चला गया। एक का तो मैंने देखा था कि 1 सेशन में नी पेन चला गया।
1: अच्छा।
2: एक का देखा था 4 सेशन में लोअर बैक पेन चला गया।
1: अच्छा।
2: तो ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, फेस के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं।
1: कोई ऐसा कोई केस याद करके बताएं आपके, कोई विशेष जिसने आपको बहुत प्रभावित करा हो आज तक के आपने जितने सेशंस लिए, जितने केसेस आपके पास आए, उन केस में कोई स्पेशल केस आपको याद है कि उसमें इस अवस्था से फिर वो बेहतर हुए?
2: जी, ये मैंने काफ़ी जगह शेयर किया है। तो मेरे पास एक आई और उनको बहुत तकलीफ होती थी इस मायने में कि उनका सिर बहुत दुखता था।
1: अच्छा।
2: और फिर उनको एक हाथ बार सीजर्स भी हुए। वो ना बहुत टाइम से इस चीज़ से गुजर रही थी।
1: हाँ।
2: और उन्होंने बहुत जगह दिखाया पर उनको कोई
1: फायदा नहीं हो रहा था।
2: राइट। तो फिर वो आई, उनको लगभग 9 सेशंस लगे और उसके बाद मतलब उनकी एक टाइम पे तो ये स्थिति थी कि वो हॉस्पिटल में 15 दिन रहती थी, 15 दिन बाहर रहती थी, 15 दिन हॉस्पिटल 15 दिन बाहर, ये उनकी स्थिति थी। और वो जहाँ जहाँ दिखा सकती थी भोपाल में बाहर उन्होंने सब जगह दिखाया। फिर बाय गॉड्स ग्रेस ये 9 सेशंस हुए और वो आई भी इसीलिए कि अब कुछ मेरे पास सोल्यूशन नहीं बचा है तो हाँ। चलो ये भी ट्राई कर लो। उनके किसी रिश्तेदार ने उनको बोला कि ट्राई करके देखो और 9 सेशंस के बाद उनकी पूरी तकलीफ ठीक हो गई बाय गॉड्स ग्रेस। और वो इतनी प्रभावित हुई माइंड के पावर से कि उन्होंने अपनी फील्ड ही चेंज कर ली। वो इंजीनियर थी, फिर उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ा और अब वो प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट है।
1: अच्छा, गुड। मतलब ये एक जीवंत एग्जांपल।
2: उन्होंने मुझे बिफोर आफ्टर फोटो भी दिए थे। आप पहले के फोटो जो हैं और जो बाद के फोटो हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। नाउ शी इज एबल टू लिव हर लाइफ। और आप सोचिए ना, किसी को 24/7 सिर दुख रहा है तो वो कैसे काम करेंगे। फिर एक और मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। एक और थी जो बहुत टाइम से कंसीव नहीं कर पा रही थी और जब ये थेरेपी हुई जिस दिन खत्म हुई उसके 3-4 महीने बाद उनका मेरे पास मैसेज आया कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया है।
1: गुड।
2: एंड उनके कुछ ट्रीटमेंट्स थे, IVF थे, IUI थे, वो भी कॉन्स्टेंटली फेल हो रहे थे और इसके बाद शी वॉज एबल टू कंसीव। तो माइंड का इतना पावर होता है। हम सब बचपन से सुनते आते हैं कि मन में बड़ी शक्ति है, मन में बड़ी शक्ति है, पर जब प्रैक्टिकली मैंने अपने जीवन में ये देखा है अपने साथ और इतने लोग जो आते हैं कि मन की क्या शक्ति होती है, वो मुझे एक्चुअली सामने सेशंस में दिखाई देता है. कि ये सुनना अलग बात है और उसको जब एक्सपीरियंस करो तो समझ में आता है कि क्या पावर है हमारे मन का.
1: लोगों को इस चीज़ को लेके ये जो ये समस्या है या इसका ट्रीटमेंट, दोनों की बताइएगा आप, कि कुछ भ्रांतियाँ भी हैं तो अगर हैं तो आम भ्रांतियाँ क्या हैं.
2: पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को लेके सबसे बड़े भ्रांति, सबसे बड़ा क्वेश्चन रादर ये होता है, उन्हें लगता है हम पास्ट लाइफ में तो अटक के नहीं रह जाएंगे. पर ऐसा नहीं होता.
1: अच्छा,
2: आज हम बैठे हैं और मेरे साथ 15 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जिसको मैं याद करके आज भी रो रही हूँ. तो मैं क्या 15 साल की उम्र में अटक के तो नहीं रह गई, मैं फिजिकली तो यही हूँ. तो वैसे ही जो माइंड होता है वो थोड़ा और पीछे चला जाता है, पास्ट लाइफ में चला जाता है. तो उनका मन ही बस ट्रैवल कर रहा है, फिजिकली तो वो यही है, तो वो वापस फिजिकल बॉडी में ही आएंगे. तो पास्ट लाइफ में कोई भी अटक के नहीं रहता है.
1: ठीक है,
2: ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है. दूसरा ये होता है कि पास्ट लाइफ सही में होती है क्या. बहुत बार ऐसा होता है कि थेरेपी के बाद लोग उठ के बोलते हैं ये हमारा इमेजिनेशन तो नहीं था, हमारी कल्पना तो नहीं थी. तो मैं उनको बोलती हूँ कि इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपको लगता भी है कि आपका इमेजिनेशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हीलिंग पूरी सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से हो रही है और सबकॉन्शियस माइंड के लिए रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं होता.
1: अच्छा,
2: इसलिए आप जब इसके थोड़ी और डिटेल में जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि कुछ विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, लोग विजुअलाइज करते हैं जिंदगी में कोई चीज पाने के लिए, वो कभी कभी काम कर जाती है. क्यों काम करती है?
1: इसी का हिस्सा हो गई वो,
2: क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो सबकॉन्शियस माइंड को लग रहा है वो अभी एक्चुअल में है और वो उसको ले आता है फिर आपके जीवन में.
1: कई बार कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि वो इंसान को लगता है कि ये तो मेरे साथ पहले भी हुआ है.
2: हाँ,
1: रीजन ही निकाल पाता उसे होता अचानक. जैसे अपन एग्जांपल दे कि अभी मान लीजिए मुझे या आप में, हम दोनों में से किसी को थॉट आए कि मैंने तो ये इंटरव्यू पहले करा है या हम इसी तरह बैठे थे.
2: बिल्कुल,
1: ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं सामान्यतः सबके साथ.
2: डेजा वू बोला जाता है.
1: हाँ, उसका आपने साइंटिफिक, हम तो ये मानते हैं पता नहीं क्यों हो रहा है ये
2: जी,
1: ऐसे ही आता है. आज आपसे बात करने से ये बात समझ में आएगी, नहीं ऐसा कुछ सभी के साथ होता है. जब मुझे लगता हुआ कि मेरे साथ होता है या हमारे सुनने वाले होता है, लगता हुआ शायद उनके साथ होता अकेले.
2: जी
1: ठीक है, एक बार और के जो श्रोता हमारे अभी पहली बार सुन रहे हैं इस टॉपिक को या अभी इसके, कई सारे ऐसे हमारा मानना ऐसे लोग होंगे जो उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस या इसको एक इस सब्जेक्ट के तौर पे नहीं सुन पाए हों, उन्हें आप क्या सलाह देंगी?
2: मैं ये सलाह दूंगी कि अपने जीवन को अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ जीना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब हम जागरूकता के साथ अपने जीवन को जीने लगते हैं तो हमको समझ में आने लगता है कि हमारे अंदर क्या क्या खामियां हैं. ठीक है, या हमारे जीवन में क्या क्या तकलीफें हैं. और वो जागरूकता अगर मेंटेन रहती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम सुबह सो के उठे या रात को, जब हम वो एक स्टेट होता है जब हम पूरे सोए भी नहीं है, हम पूरे उठे भी नहीं है, तो हमको ना एकदम से क्लिक करता है कि हमारे जीवन में जो तकलीफ हो रही है उसमें हमको ये चीजें अप्लाई करनी चाहिए. और हम वो अप्लाई करते हैं तो हमें सोल्यूशन भी मिलता है. पर ये सब तभी पॉसिबल हो पाता है कि हम जब अपनी जिंदगी को अवेयरनेस के साथ जीते हैं तो हमें समझ में आता है हम क्या हैं, क्या नहीं है, हमारे क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है. हम जैसे हम फॉरेन एनर्जी की बात कर रहे थे, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बिहेवियर होते हैं जो हम खुद नहीं है, वो कुछ और हमारे अंदर से एक्ट कर रहे हैं. तो ये तभी पकड़ में आता है जब हम अवेयर है. तो
1: मैं ये थेरेपिस्ट के पास पहुंच जाए ऐसा कह सकते हैं.
2: देखिए, थेरेपिस्ट के पास भी हम तभी पहुंचेंगे जब हम अपनी परेशानी को लेके अवेयर होंगे.
1: अब देखिए, अवेयर होने वाली बात है, ये तो खुद इंसान
2: मुझे पता होना चाहिए ना मेरा सिर दुख रहा है, तब तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी. अगर मैं उसको इग्नोर करती रहूं, आप समझ रहे हैं?
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल.
2: तो पहले अपनी तकलीफ तो पकड़ में आनी चाहिए ना, वो भी तभी है कि जब आप जागरूक हैं. अब देखिए, पैर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, बहुत फिजिकल है,
1: दिख भी रहा है,
2: पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. ये गुस्सा जो है इसको आप मेजर नहीं कर सकते.
1: इसको मेजर नहीं कर,
2: मुझे दूसरों से बहुत जलन है. या मैं अपने जीवन में, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो सो कॉल्ड फ्रेंड्स सब ऐसे हैं.
1: वो जैसे आपने सबसे पहले केस की बात कही थी, आपने बताया था कि वो इंसान ने खुद ही वाव ले लिया, खुद ही ने शब मान लिया कि मैं तो अब खुश रह नहीं सकता हूँ, उस तरह की बात.
2: बिल्कुल. तो अगर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और सब बस मतलब से ही दोस्ती रखे हुए हैं, तो मेरे को पहले तो पता चलना चाहिए ना कि मेरे जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मेरा फायदा उठा रहे हैं. और वो कैसे पता चलेगा? जब हम जागरूक होंगे.
1: बिल्कुल, मतलब अभी तक का जो चर्चा हुई आपसे, ये हमारा टॉपिक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, अपने आप में एक तो वास्ट टॉपिक है.
2: काफी
1: फिर उसको समझना और फिर उसको इतनी सरल भाषा में हमने प्रयास पूरा करा और हमें आपका सहयोग मिला कि आपने उसको हमें समझाया कि क्योंकि इसको पहले तो समझ नहीं बड़ा मुश्किल है, फिर लग भी रहा था कि इस पर क्या ही बात होगी, लेकिन जो आपसे बात हुई अभी तक की उससे मुझे लगता है कि हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी ये काफ़ी हद तक समझ में आया होगा कि इस तरह की समस्या होती है। क्योंकि अभी जो आपसे बात करी इसके पहले हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता होगा, आपसे बातचीत होने के बाद समझ में आया कि ये तो बड़े आम मतलब आम सी चीज़ें हैं, आम सी समस्याएं हैं जो लगभग लोगों के साथ होती है और लोग खुद ही उसको कहीं ना कहीं सुलझा भी लेते हैं, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहां उन्हें थेरेपिस्ट तक जाने की आवश्यकता पड़ती है। और अब उस थेरेपी में हिप्नोटिज्म कहेंगे ना, वो एक उसका ही हिस्सा है,
2: हिप्नोथेरेपी का हिस्सा है, रिग्रेशन थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन,
1: तो वो एक थेरेपी का ये हिस्सा है, उस तरह से ट्रीट करा जा सकता है, अलग अलग सेशन से करा जा सकता है और आदमी सामान्य जीवन वापस से जी सकता है। ये कोई बहुत बड़ी ऐसी बीमारी नहीं है या सिर्फ परेशानी के साथ ही इसके साथ अपना समय गुजारा जाए, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, एक थेरेपिस्ट के पास उसकी मदद ली जाए।
2: बिल्कुल
1: बिल्कुल तुषार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कोशिश करेंगे आगे भी इस तरह के टॉपिक्स, इस तरह के विषय हम अपने कार्यक्रम में लेकर आते रहेंगे और इस विषय पर भी आगे भी हम प्रयास करेंगे कि और जितनी रोशनी डाल सकें, चाहे तुषार जी की मदद से और इनकी तरह के और भी कई थेरेपिस्ट की तरफ से, इसको और विस्तार से भी आगे प्रयास करते रहेंगे। तो ये था हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आज हमने बात करी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी पर। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग था कार्यक्रम में सतीश बाथम का और मैं हूँ आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी आपके साथ। और अब मुझे और त्रिषा जी को दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: आपने अब तक जाना कि कैसे काशीपुर का घर छोड़ने पर सुरेंद्रनाथ मित्र महाशय की सहायता से नरेंद्रनाथ को बरहापुर का एक टूटा फूटा घर मिला और वहीं उन्होंने प्रथम रामकृष्ण मठ की स्थापना की। कई तरुण सन्यासी उनके साथ आए और जब तब के दिन बिताने लगे। वे दिन उन सभी के लिए बेहद कष्टप्रद थे। कई युवक परिवार के लोगों को ताड़ना से घर लौटना पड़ा। नरेंद्र पहले तो अपने घर के मामलों को लेकर के बहुत व्यस्त थे। ज्यों ही उन्होंने थोड़ी फुर्सत पाई और सन्यास का आदर्श पालन करने के लिए स्वयं को मुक्त अनुभव किया, उस समय जो युवक अपने घर लौट करके पढ़ने लिखने में लग गए थे, उन्हें वरानगर ले जाने के लिए, उनके मन में वैराग्य जगाने के लिए वे कटिबद्ध हो गए। घंटों उनके साथ वे तर्क वितर्क में रत रहकर अपने उद्देश्य को सिद्ध करना चाहते थे।
1: नरेंद्र नाथ की उद्दीपनकारी वाक पटुता से उनके गुरु भाइयों के मन में पहले की बात जल उठती और उस समय के लिए सांसारिक वासना प्रभावहीन हो उठती। कोई कोई नरेंद्र की पुकार पर अध्ययन आदि छोड़कर वराहनगर जाते, किंतु व्यथित नहीं थे। घर लौटकर नरेंद्रनाथ के फिर आने के भय से जब वे सब बंद कमरे में अध्ययन में निहित रहते, तभी नरेंद्रनाथ अचानक आंधी की तरह उपस्थित होकर घर के दरवाजे को हाथ से थपथपाकर दरवाजा खुलवाते और गुरु भाई को राजमार्ग पर खींचकर अभिभावक के पीछे अग्निमयी वाणी का स्रोत बहा देते। वे कब किसके घर उपस्थित होते, इसका कोई ठिकाना नहीं था।
0: आठपुर के बाद त्याग की आकांक्षा तीव्र होकर स्थिति दूसरी तरह हो गई। क्रमशः शशि, निरंजन, राखाल, शरद, शारदा और सुबोध मठ में ही रहने लगे। कुछ महीने बाद ही वृंदावन से लौटकर लाटू ने भी योगदान किया। हरि के आने में भी देर नहीं हुई। श्री माँ के वृंदावन से लौट आने पर योगेंद्र का भी मठ जीवन शुरू हो गया। गंगाधर सन 1887 ईस्वी के फरवरी महीने में गृह त्याग कर हिमालय और तिब्बत का भ्रमण करने निकले। इसलिए वे स्थायी रूप से मठ में 1890 ईस्वी के मध्य में आए और सबके अंत में स्वामी विवेकानंद के अमेरिका से लौटने के बाद हरिप्रसन्न आए थे। एक और व्यक्ति का नाम लेना आवश्यक है, वे हैं तुलसी। ये श्री रामकृष्ण को एकाधिक बार देखने पर भी उनसे घनिष्ठ रूप से नहीं मिले और इसलिए अपने को श्री रामकृष्ण का शिष्य नहीं कहकर स्वामी विवेकानंद के शिष्य के रूप में अपना परिचय देने में ही गर्व का अनुभव करते थे।
1: समाज उन दिनों शंकराचार्य द्वारा अनुमोदित वैदिक संन्यास और अद्वैत वेदांत से भलीभांति परिचित नहीं था। वे लोग महाप्रभु श्री चैतन्य द्वारा प्रवर्तित श्रेवस्थारी बैरागी संप्रदाय को जानते थे। गंगा सागर के यात्री या जगन्नाथ के यात्री जटाजूटधारी नागाओं अथवा सामान्य गेरुआ वस्त्रधारी दो चार सन्यासियों को उन्होंने देखा था। चैत्र संक्रांति के मेले के सन्यासी और विरल मुट्ठी भर कॉल सन्यासियों को वे पहचानते थे, किंतु शिक्षित मध्य वर्गीय परिवार के युवक वृंद दल के माता पिता को रुलाकर और सांसारिक संपन्नता को ठुकराकर संघबद्ध रूप से मठ जीवन यापन करेंगे तथा अनुष्ठान के रूप में एकमात्र गुरु पूजा के सहारे वेदांत सम्मत साधना मार्ग में अग्रसर होंगे। ये एक नई बात थी। इस धारा की पुष्टि होने में समाज का कल्याण होने के बदले अकल्याण होने की आशंका थी। इसीलिए पहली अवस्था में श्री रामकृष्ण मठ लोकप्रिय नहीं हुआ।
0: मोहल्ले के लोग उन दिनों मठ के विरोध में थे, झूठी निंदाएं किया करते थे। जब साधुगण गंगा स्नान करने जाते तो दुष्ट लड़के बगुले दिखाते और कहते, अरे सब राजहंस जा रहे हैं। मोहल्ले के लोगों का संदेह कितना प्रबल और अश्लील था, इसका परिचय एक घटना से मिलता है। स्वामी विवेकानंद के गले की आवाज नारियों की भांति कोमल थी। वे जब गाते तो दूर से सहसा नारी के स्वर का भ्रम होता। एक रात वे मठ में गाना गा रहे थे। उसी समय मोहल्ले के कुछ लोग यह निश्चय कर बैठे कि निश्चित ही मठ में किसी स्त्री का आगमन हुआ है। ऐसे भ्रष्टाचारों को हाथों हाथ प्रमाणित कर भ्रष्ट साधुओं को समुचित दंड देने की मंशा से कुछ लोग इस प्रयास में अग्रसर हुए और बाहरी दरवाजा बंद रहने के कारण दीवार फांदकर संगीत सभा में अचानक उपस्थित हो गए। किंतु उन्होंने देखा कि ये तो नारी नहीं पुरुष है। इसके बाद स्वयं ही पराजित होकर सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा याचना की। कहने की आवश्यकता नहीं है कि साधुओं ने लेश मात्र क्रोध या शोक प्रकट किए बिना उन लोगों को हंसते हुए विदा की।
1: नरेंद्र नाथ और उनके साथी इन घटनाओं से विचलित नहीं होते थे। वे अपने अपने कामों में व्यस्त रहते और वक्त मिलते ही दानव कमरे में इकट्ठा होकर नरेंद्र रचित भजन गाते।
0: हम पहले भी जान चुके हैं कि मठ में सन्यासी कितनी तकलीफ और भुखमरी सहते थे। भिक्षा के सहारे भोजन मिलता था, वह भी 1 जून का। सन 1890 ईस्वी के 13 अप्रैल को बलराम बाबू को और 25 मई को सुरेंद्र बाबू के देहांत पर स्थिति अत्यंत संकटजनक हो गई थी। ऐसी कि एक बार मठ के खर्च के लिए शशि को शिक्षक का कार्य करना पड़ा था। हाँ, यह कुछ ही दिनों तक करना पड़ा था। विपत्ति के उन दिनों में गिरीश बाबू ने निसंकोच भाव से दान दिया था।
1: वराह नगर की दरिद्रता को नरेंद्र सहन नहीं कर पाते थे। कभी कभी तो शशि से झगड़ा भी हो जाता था।
2: शशि, मुझसे ये दुर्दशा और देखी नहीं जाती। छोटे छोटे सन्यासियों को हम भरपेट खाना भी नहीं दे पाते।
3: आप नाहक परेशान हो रहे हैं। किसी ने कुछ कहा क्या?
2: कोई कहेगा तब मुझे मालूम पड़ेगा। अंधा तो नहीं हूं मैं। दिनों दिन बेचारे नमक और चावल खा रहे हैं।
3: क्यों? कभी कभी कुंदरू के उबले हुए पत्ते भी तो मिल जाते हैं।
2: कुंदरू के पत्ते, वे बेल भी तो बाकी नहीं बचे, सब तो हम खा गए। ऐसे बोल रहे हो जैसे रोज उन्हें राजभोग परोसा जाता है।
3: सन्यासी हैं, थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा ना।
2: पहले जिंदा तो रहें, फिर कष्ट भोग लेंगे। नहीं नहीं शशि, ऐसा ज्यादा दिन नहीं चल सकता। ये आश्रम बंद कर दो।
3: परेशान ना हो भाई, सब ठीक हो जाएगा।
0: सुरेंद्र नाथ जब तक थे तब तक वे मठ की खोज खबर रखते थे। असल बात यह थी कि सभी सन्यासी भद्र संतान थे। अपने अभाव की बात दूसरों से कहना उनके लिए लज्जा की बात थी। और श्री रामकृष्ण के नाम पर जिन्होंने गृह त्याग किया है, वे क्या इतना भी उनके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते? भगवान ने तो स्वयं ही गीता में प्रतिज्ञा की है, योग क्षेम वहाम्यहम्। फिर भी सुरेंद्र नाथ सामर्थ्य के अनुसार खोज खबर रखते और व्यवस्था भी करते। दूर रहने के कारण सर्वदा आना जाना उनके लिए संभव नहीं था। दूसरी ओर रोग से शैयाग्रस्त हो जाने के कारण वह असंभव हो गया था।
1: सब सोचकर उन्होंने छोटे गोपाल को ये कहकर मठ में रहने के लिए राजी करा लिया था। मैंने तुम्हारे परिवार के सारे खर्चे अपने कंधे पर ले लिए हैं। तुम मठ में रहकर घर के कार्य आदि करना और नित्य या एक दिन के बाद मेरे पास आकर मठ के भाइयों का समाचार देना। खासकर ये ध्यान रखना कि ज्यों ही उन लोगों के भोजन आदि का अभाव देखो त्यों ही मुझे ये मालूम हो जाए। गोपाल ने परमहंस देव का सानिध्य पाया था एवं सन्यास ग्रहण करने की भी उन्हें इच्छा थी, किंतु दो छोटे छोटे भाइयों और विधवा माता के भोजन वस्त्र का भार कंधे पर रहने के कारण वो नहीं हो पाया। अब भोजन वस्त्र की दूसरे प्रकार से व्यवस्था होगी और वे सभी साधु रूप में मठ में रहने का सुयोग पाएंगे। ये देखकर गोपाल सुरेंद्र बाबू के प्रस्ताव से सहमत हुए थे।
0: मठ में जो ही अभाव या अनाहार की स्थिति होती, वे सुरेंद्र बाबू को सूचित कर देते और सुरेंद्र बाबू भी उन्हें तभी आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपए दे देते। साथ साथ सतर्क कर देते कि उनका नाम प्रकट ना होने पाए, क्योंकि वे जानते थे कि बात फैल जाने पर मठ के भाईगण उनकी सहायता लेने में संकोच करेंगे। गोपाल उन वस्तुओं को मठ में ले जाते और साधुओं के पूछने पर कहते कि यह सब एक भद्र व्यक्ति ने भेज दिया है, मैं तो किसी तरह नहीं लेता। किंतु वे बहुत अनुरोध करने लगे, क्या करता, इसी से लेना पड़ा।
1: और दूसरे मददगार थे श्री बलराम बसु। वे एक दिन अचानक मठ में आ अपनी आंखों से साधुओं के उपवास का हाल देखकर इतने मर्माहत हुए कि घर लौटकर उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि वे उस दिन कुंदरू के पत्ते के सुक्तो यानी एक तरह का व्यंजन जो बंगाल में प्रचलित है उसे छोड़कर कुछ नहीं खाएंगे। पत्नी ने सोचा ये तो पेट के मरीज हैं, संभव था आज रोग बढ़ गया है, किंतु बाद में ये जानकारी मिली कि मठ के भाइयों की दुरावस्था देखने के बाद उन्हें और खाने में रुचि नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसके बाद बलराम बाबू सुविधानुसार बीच में कुछ साग सब्जी और भोजन की सामग्री आदि मठ में भेज दिया करते थे।
0: अभाव के इन दिनों में एक तीसरे मित्र का भी आगमन हुआ था। उनका नाम था योगेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। वे बहुत फुर्तीले थे और बहुत कहानियां जानते थे। काफी उदार स्वभाव था, खाने और खिलाने में प्रेम था। लोग कहते कि वे खा खा कर दरिद्र हो गए थे। मठ के सभी लोगों से वे प्रेम करते थे। आगे चलकर जब कई अवसरों पर मठ में खाने के लिए प्राय कुछ भी नहीं रहता तो यह जान लेने पर बाजार से स्वयं सामान खरीद कर ला देते थे।
1: मठ में वस्त्र आदि भी अत्यंत दरिद्र के समान थे। पहनने के लिए प्रत्येक को मिला एक कौपीन और एक गेरुआ चादर। बाहर जाने के समय आवश्यक होने के कारण सबके लिए एक मात्र उजली धोती और एक उजली चादर दीवार पर टंगी रहती थी, जिसको जब जरूरत होती वे उसे ले जाते। गृह सज्जा के उपकरणों में प्रत्येक के लिए एक चटाई पर बिछी चादर, कुछ जप मालाएं, दीवार पर लगी कुछ श्री राम कृष्ण और देवताओं की तस्वीरें और मित्रों के द्वारा दी गई प्रायः 100 के लगभग बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी की पुस्तकें थी। ये व्यवस्था बहुत दिनों तक बनी रही थी। सन्यासी मठ में केवल कौपीन पहनते, बाहर जाने के समय चादर धारण करते, महीने में एक बार सिर, मूछ और दाढ़ी मुंडवाते। सबके जो थोड़े बहुत कपड़े लत्ते थे फिर रस्सी की अरगनी पर लटकते रहते। कोई बक्सा नहीं था। विवेकानंद ने लिखा है,
2: श्री राम कृष्ण के देह त्याग के बाद हम वराहनगर के मठ में कितना जप ध्यान किया करते थे। सुबह 3 बजे सब जाग उठते थे। शौच आदि के बाद कोई स्नान करके और कोई कपड़े बदलकर मंदिर में जाकर जप ध्यान में डूब जाया करता था। उस समय हम लोगों में क्या वैराग्य का भाव था, दुनिया है या नहीं इसका पता ही न था। शशि 24 घंटे श्री राम कृष्ण की सेवा करता रहता था, घर की गृहिणी की तरह। भिक्षा मांगकर श्री राम कृष्ण के भोग आदि की और हम लोगों के खिलाने पिलाने की सारी व्यवस्था वो स्वयं करता था। ऐसे भी दिन गए हैं जब सवेरे से 4-5 बजे शाम तक जप ध्यान चलता रहता था। शशि फिर खाना लेकर बहुत देर तक बैठा रहता और अंत में किसी तरह से घसीटकर हमें जप ध्यान से उठा दिया करता था। आहा, शशि की कैसी निष्ठा देखी है।
0: हाँ, यह बात निश्चित ही स्वीकार करने योग्य है कि श्री रामकृष्ण संघ की स्थापना के पीछे गुरु भाइयों का सम्मिलित प्रयास तो था ही, प्रत्येक की निजी देन भी थी। उस प्रारंभिक अवस्था में शशि की निपुणता अपूर्व थी। हमने देखा है कि नरेंद्रनाथ ने भी इसे स्वीकार किया है और एक बार उन्होंने अमेरिका में लिखा था,
2: आहा, शशि ने मठ को कैसा जागृत बना रखा है। उसकी निष्ठा एक बहुत सुदृढ़ आधार है। मठ के भाईगण जब ईश्वर प्राप्ति की आकुल आकांक्षा से इधर उधर तीर्थ दर्शन को जाते या दूर दूरांतर में तपस्या में लीन रहते, तब शशि ही मठ की ठाकुर पूजा आदि को लेकर अटल अचल सुमेरु की भांति वराहनगर में रहा करते। अभाव के दिनों में सन्यासी गण भिक्षा के लिए बाहर निकलते, किसी दिन केवल थोड़ा सान्न लेकर या किसी दिन खाली हाथ लौटते। ऐसे में एक दिन 4 साधु लौटकर जब श्री राम कृष्ण के भोग के लिए कुछ नहीं दे पाए, तब निश्चय किया गया कि उस दिन भूखे रहकर दिन भर भजन किया जाएगा, जैसी बात वैसा कार्य। किंतु श्री रामकृष्ण के भोग की व्यवस्था नहीं कर पाने से शशि को तो शांति नहीं थी। दूसरों को बिना बताए वे एक परिचित पड़ोसी के घर गए। उस घर के अन्य सब लोग मठ के विरोधी थे, अतः उस पड़ोसी मित्र ने शशि का वृतांत सुनकर खिड़की से एक पाव चावल, कुछ आलू और थोड़ा सा घृत दिया। उस दिन उसी से श्री रामकृष्ण को भोग दिया गया। अंत में प्रसाद के कुछ पिंड बनाकर शशि ने दानवों के घर में प्रवेश किया और भजन में निरत साधुओं में से प्रत्येक के मुख में एक एक पिंड घुसा दिया। साधुओं ने खाकर आनंद पूर्वक पूछा, ये अमृत तुझे कहां मिला शशि भाई? वे मानो मटकी मां थे। सबको सुख सुविधा देना, सभी विषयों की देखभाल करना और सारे सामानों को ठीक से रखना उनका स्वेच्छा से स्वीकृत कर्तव्य था और श्री रामकृष्ण की सेवा का प्रत्येक अंग जिससे त्रुटिहीन रूप से संपन्न हो उस ओर भी उनकी तीक्ष्ण दृष्टि रहती थी।
1: पैसे के अभाव के कारण नौकर रखना संभव नहीं था, इसी से गृहस्थी के सारे कार्य उन लोगों को अपने हाथों से करना होता था। झाड़ू लगाना, पाखाना साफ करना, बर्तन मलना, पानी ढोना, यहाँ तक कि बीच बीच में रसोई आदि भी बनानी होती थी। नरेंद्र नाथ को तनिक भी अवकाश ना था। वे ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग कर गुरु गंभीर ध्वनि से गुरु भाइयों को पुकार कर कहते, हे अमृत के पुत्रगण, अमृत का पान करने के लिए जागो, जागो। फिर जप ध्यान आदि समाप्त कर वे सब एक कमरे में सम्मिलित हो जाते। नरेंद्र

0: कामिनी कंचन का त्याग, त्याग ही गीता का आदर्श है।
1: इसके बाद दोपहर दैनिक कार्य, जप, ध्यान, सत्संग आदि में बिता देने पर तीसरे पहर में शशि उन लोगों को खींचकर भोजन करने के लिए बिठा देते। थोड़ा विश्राम करने के बाद फिर शाम तक इसी प्रकार 2 घंटों तक चलने वाली श्री रामकृष्ण की आरती शुरू होती और सभी उसमें सम्मिलित होते। आरती के समाप्त होने पर छत पर बैठकर देर रात तक सीताराम नाम गान या दूसरे प्रकार के भजन आदि चलते रहते।
2: सभी समान भाव से सभी कार्यों में सहयोग करते, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई एक अध्ययन आदि में ही प्रायः सारा समय बिता देते। और घर के कामों में असुविधा होते देखकर जब आलोचना काफी मुखर हो जाती, तब नरेंद्र नाथ ने एक दिन क्षुब्ध होकर कहा,
0: तुम्हारा एक भाई यदि पढ़ने में ही मन लगा रहा है तो इतनी जलन क्यों? लाओ तुम्हारे सारे बर्तन, मैं अकेला मांज दूं।
2: व्यक्तिगत आलोचना भी बंद हो गई।
1: नरेंद्र नाथ के संगीत प्रेम की बात हम पहले भी कह चुके हैं। उनका उत्साह दूसरों में भी संचारित होता। शरद उनसे संगीत सीखते और काली सीखते वाद्य वादन, और उनके संगीत और संगत साथी अन्य कई लोग होते, खासकर बूढ़े गोपाल और तारकनाथ। गोपाल दादा बाजा तबला बजाते। पखावज बजाने वाले की कमी दूर करने के लिए काली ने उस्ताद की सहायता से यह विद्या थोड़ी बहुत सीख ली थी। बीच बीच में भक्तों के घर पर भी नरेंद्र नाथ के गाने की मजलिस लगती है।

0: भूतों का कमरा कभी कभी देश विदेश की अनेक विचारधाराओं के विवेचन, विश्लेषण, ग्रहण, त्याग, तुलना इत्यादि से झूम उठता। कांट, हेगेल, स्पेंसर आदि दार्शनिक गण, यहाँ तक कि नास्तिक भौतिकवादी और अज्ञेयवादी भी इस वाद विवाद से नहीं बचते। गीता, उपनिषद, तंत्र, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध मत, वैष्णव मत, शैव मत आदि अनेक विषय इस सभा के विवेचन प्रसंग में आ जाते थे। वस्तुतः वो घर एक शिक्षा केंद्र या महाविद्यालय में परिणित हो गया था और इस केंद्र के मध्य मणि थे नरेंद्रनाथ। विवेचना शुरू करने पर वे इस प्रकार किसी एक पक्ष में झुकाव दिखाते कि प्रायः अन्य सभी प्रतिपक्ष अविलंबन करने को विवश हो जाते। वे भी तर्क प्रस्तुत कर उन लोगों के मत का खंडन करते। फिर जब वे सब तर्क नहीं ढूंढ पाते तब उन लोगों के पक्ष को ही अपने मत से काट कर छिन्न छिन्न कर देते।
1: यदि यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर है कि नहीं, तो नरेंद्रनाथ पूर्व पक्ष ग्रहण कर लेते और कहते ईश्वर नहीं है, वह मन की कल्पना मात्र है। फिर वे ही बाद में प्रमाणित करते कि ईश्वर ही एकमात्र वस्तु है। इस प्रकार शंकर का दर्शन कभी नरेंद्र के पूर्व पक्ष के आघात से मिट्टी में मिल जाता और दूसरे ही क्षण उसके उत्तर के पक्ष में तर्क बल से खड़ा हो जाता था। साख्य, योग्य, न्याय, वैश्विक, मीमांसा और वेदांता, इस षट दर्शन में नरेंद्र विलक्षण पंडित तो दिखते ही साथ साथ दूसरों का ज्ञान भंडार भी समृद्ध करते। फिर हिंदू धर्म के विभिन्न शाखाओं की रीति रिवाज, पूजा साधना आदि की भी चर्चा करते।
0: हीन यान और महायान, इन दोनों संप्रदायों की नव प्रकाशित अनेक पुस्तकों का उस अध्ययन कक्ष में अध्ययन और विवेचन होता। भारत के मध्यकालीन धार्मिक नेताओं के जीवन और उपदेशों से वहाँ घनिष्ठ परिचय प्राप्त हुआ। तदुपरांत ही ईसा मसीह ने उन लोगों के हृदय को आकृष्ट किया। साथ साथ बाइबल और ईशानुसरण आदि ग्रंथों का भी उन लोगों ने भली भांति अध्ययन कर लिया। आनुषंगिक रूप से ईसाई धर्म के विभिन्न संप्रदायों के प्रवर्तक सेंट फ्रांसिस, इग्नेसियस लायला आदि संतों के

0: जीवन और उपदेश का पूर्ण परिचय प्राप्त हुआ। उन दिनों नरेंद्र नाथ ने प्रमदा बाबू को जाकर सारे पत्र लिखे थे। उससे ज्ञात होता है कि संस्कृत भाषा विशेषकर वैदिक शिक्षा के प्रति भी उन दिनों उन लोगों में विशेष आग्रह था।
1: नरेंद्र बीच बीच में भारतीय इतिहास अथवा समाज व्यवस्था की विवेचना से भी उन्मुख हो जाते। भारतीय सभ्यता की एकता कहाँ है? श्री रामचंद्र से लेकर के सम्राट अकबर तक भारत की संततियों ने किस प्रकार भारतीय संस्कृति को संपुष्ट किया है आदि विषयों के विचार में वे दिनों दिन निरत रहते। विदेशों का इतिहास, जैसे गिबन की रोम साम्राज्य के अधपतन की कहानी, कालाइन का फ्रांस की क्रांति का इतिहास, उन लोगों की विवेचना में एक विशिष्ट स्थान पाता। जॉन ऑफ आर्क की जीवनी की वे विवेचना करते और फिर भारतीय वीरांगना झांसी की रानी का भी वे अत्यधिक सम्मान करते।
0: उस समय विभिन्न धर्मों के बड़े बड़े पर्वों को सादर मनाया जाता, जैसे बड़े दिन की रात में धूनी के चारों ओर अधलेटी अवस्था में ईसा मसीह के अविर्भाव और उपदेशों के प्रचार का प्रसंग चलता। एक दिन गुड फ्राइडे के उपलक्ष में उन लोगों ने सारा दिन उपवास कर व्यतीत किया। उसी समय दरवाजे पर एक यूरोपीय अतिथि का कंठ स्वर सुनाई पड़ा, कौन है ईसा की दुहाई, दरवाजा खोलो। तभी द्वार खोलकर सभी उन्हें घेर कर बैठ गए। इस शुभ दिन में एक ईसाई के मुंह से ईसा मसीह की कहानी सुनेंगे, किंतु उस व्यक्ति ने कहा कि वे सिलेक्शन आर्मी का सदस्य है और वो सब मात्र दो पर्वों को मनाते हैं, ईसा मसीह और जनरल बूथ का जन्मदिन। गुड फ्राइडे आदि के संबंध में वे कुछ ना कह सकेगा। सन्यासियों ने आश्चर्यचकित होकर कहा,
2: ये क्या, जिस दिन आपके भगवान ने क्रूस पे धोकर शरीर त्याग किया उस दिन की कहानी भी नहीं जानते?
0: और वे विदेशी लज्जित होकर जल्दी से चला गया।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।